1947 के आषाढ़ माह की 9वीं तिथि तदनुसार मंगलवार दिनांक 30 जून 2026 है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 48 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शक संवत 1998।

0: ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के शुरुआत में लीजिए सुनिए ये देश गान समूह स्वर में।

अभी आपने सुना ये देश गान समूह स्वर में, और अब लीजिए सुनिए अरुण कुमार दाधीच और तृप्ति शाक्या की आवाज़ में खाटू श्याम की ये भजन।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव भजन।

इस शिव भजन के बाद अब लीजिए सुनिए हरिओम शरण की आवाज में राम भजन।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना के अंत में हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरिहरन के स्वर में हनुमान जी की आरती।

इसी हनुमान जी की आरती के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। अभी प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय है उम्मीद। संकलन और वाचन स्वर है शबनम खानम का।

उम्मीद यानी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब शायद इसकी अहमियत ज्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन जब हालात जरा से डगमगाने लगते हैं, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब रास्ते धुंधले नजर आते हैं और जब मन हार मानने लगता है, तब उम्मीद ही वो आवाज़ बनकर उभरती है जो कहती है, थोड़ा और सब्र करो, अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। आज के दौर में जब लोग तनाव, चिंता और भागदौड़ से घिरे हुए हैं, तब उम्मीद की अहमियत और बढ़ जाती है। उम्मीद हमें सकारात्मक सोच देती है, हिम्मत देती है और ये एहसास कराती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती।

0: मिलती। इसमें सुख भी आते हैं और दुख भी, सफलता भी मिलती है और असफलता भी। लेकिन जो चीज़ इंसान को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है वो है उम्मीद। उम्मीद हमें ये यकीन दिलाती है कि आज का संघर्ष कल की सफलता का रास्ता बन सकता है। कई बार हम देखते हैं कि एक किसान तपती धूप में मेहनत करता है, उसे नहीं पता कि मौसम कैसा रहेगा, लेकिन फिर भी वो बीज बोता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक विद्यार्थी घंटों पढ़ाई करता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसका भविष्य उज्ज्वल होगा। एक रोगी दवा खाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है, उसे विश्वास होता है कि वो स्वस्थ हो जाएगा। वास्तव में उम्मीद ही वो अदृश्य शक्ति है जो जीवन को गति देती है। उम्मीद का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि ये इंसान को टूटने नहीं देती। जब सारी दुनिया किसी व्यक्ति से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी उम्मीद उसके कानों में धीरे से कहती है, एक बार और कोशिश करो। और कई बार वही एक कोशिश जीवन बदल देती है। लेकिन उम्मीद का मतलब केवल इंतजार करना नहीं होता, उम्मीद के साथ मेहनत, धैर्य और विश्वास भी जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ बैठकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहें तो उम्मीद अधूरी रह जाएगी। उम्मीद तब सबसे अधिक सुंदर लगती है जब उसके साथ कर्म जुड़े हों। जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, लेकिन याद रखिए, सबसे घना अंधेरा भी सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह कोई भी कठिनाई उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसके दिल में उम्मीद जिंदा हो। उम्मीद वो पुल है जो आज की मुश्किलों को कल की खुशियों से जोड़ता है। उम्मीद वो रोशनी है जो तब भी दिखाई देती है जब चारों ओर अंधेरा हो। उम्मीद हार और जीत के बीच खड़ी वो ताकत है जो इंसान को दोबारा खड़े होने का साहस देती है। जिसके पास उम्मीद है उसके पास आगे बढ़ने का कारण है। किसी ने बहुत सही कहा है, कभी भी अपनी उम्मीदों का दामन मत छोड़िए। हो सकता है कि मंजिल देर से मिले, लेकिन अगर हौसले जिंदा हैं और उम्मीद कायम है तो सफर कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसके बाद सुबह ही ना आए। उम्मीद दरअसल दिल की वो खिड़की है जिससे रोशनी हमेशा भीतर आती रहती है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने दिल की इस खिड़की को कभी बंद मत होने दीजिए। किसी ने ये बात भी बहुत सही कही है कि उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि चमत्कार अक्सर आखिरी कोशिश के बाद ही होते हैं। जहां उम्मीद होती है वहां रास्ते भी निकल आते हैं। उम्मीद इंसान को गिरकर फिर उठना सिखाती है, क्योंकि उम्मीद जिंदा हो तो इंसान थक सकता है, रुक सकता है, मगर हार नहीं सकता।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु में आज का आलेख। विषय था उम्मीद। संकलन और वाचन स्वर था शबनम खानम का। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर है सुरेश वाडकर के और संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया।

अगवानी करने वालों को अयोध्या से आई बारात जब जनकपुर के निकट दिखाई दी तो हृदय में उमड़ते आनंद से उनके शरीर रोमांचित हो उठे। धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। राजा जनक ने बारातियों के लिए दूध, ठंडे शरबत, जल आदि तथा भांति भांति के पकवानों से सजे थाल परात भिजवाए। वस्त्राभूषणों तथा बहुमूल्य मणिमाणिकों से लदे पशु पक्षी घोड़े हाथी भी भिजवाए गए। अगवानी करने वाले और बाराती नगर के बाहर इस प्रकार मिल रहे हैं मानो आनंद के दो सागरों का मिलन हो रहा हो। देव सुंदरियां फूलों की वर्षा करती हुई मंगलाचार कर रही हैं। देवता आनंद मग्न होकर नगाड़े बजा रहे हैं। बारात को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाए गए सभी सुविधाओं वाले जनवासे ले जाया गया। बारात के जनकपुर पहुंचने का संवाद सुनकर अंतःपुर में सीता जी ने मन ही मन सभी सिद्धियों का स्मरण किया और उन्हें बारात के स्वागत सत्कार के लिए भेजा।

0: अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायन स्वर थे सुरेश वाडकर के और संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय है करेले की लाभकारी खेती।
1: किसान भाइयों, बेल वर्गीय सब्जियों में करेला का प्रमुख स्थान है। करेला की खेती विश्व की उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत के लगभग सभी प्रांतों में इसकी खेती की जाती है। करेला औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से लोहा, फास्फोरस, विटामिन ए तथा सी अधिक पाया जाता है। करेला पेट जनित रोग के लिए विशेष लाभकारी है तथा बवासीर एवं मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान है। करेला को वर्ष में मुख्य रूप से वर्षा एवं ग्रीष्म मौसम में लगाया जाता है तथा फसल अवधि किस्मों के अनुसार 60 से 90 दिनों तक की होती है। छत्तीसगढ़ में करेला की सब्जी चाव से खाई जाती है। आइए जानते हैं करेले के उत्पादन के लिए क्या क्या करना होगा। भूमि एवं जलवायु। किसान भाइयों, करेला को सभी प्रकार के भूमि में लगाया जा सकता है, परंतु पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए अच्छी जल निकास वाली बालू एवं दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना उत्तम होता है। करेला मुख्य रूप से गर्म जलवायु की फसल है, परंतु थोड़ा ठंड भी सह लेती है, लेकिन अधिक ठंड से पाला की संभावना भी रहती है। करेले की अनेक उन्नत किस्में विकसित की जा चुकी है। इनमें पूसा 2 मौसमी, पूसा शंकर 1, कोयम्बटूर लॉन्ग व कल्याणपुर 12 मासी प्रमुख है। बुआई बोने का समय। किसान भाइयों, करेला की बुआई का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहां पर उगाया जा रहा है। दक्षिण भारत में जून, जुलाई और दिसंबर, जनवरी, जबकि उत्तर भारत

0: में फरवरी मार्च में उगाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से जून में भी लगाया जाता है। बीज की मात्रा, करेला की बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे उगाया जा रहा है। यदि इसे पौध तैयार करके उगाया गया है तो उस स्थिति में 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है, परंतु जब खेत में इसकी सीधे बुआई की जाती है तो उस स्थिति में 4.5 से 3 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज उपचार, बीज बोने से पूर्व फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करके ही बोनी करनी चाहिए। इसके लिए डायथेन M45 दवा की 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से उपचारित करके बोनी करें। कतार से कतार की दूरी, ग्रीष्म ऋतु में 1 से 1 मीटर कतार और बीज की दूरी वर्षा ऋतु में 1.5 से 1 मीटर कतार से बीज की दूरी होनी चाहिए। बीज बोने की विधि, 2 या 3 बार कल्टीवेटर चलाकर जुताई करें तथा पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरी कर लें तथा 30 बाई 30 बाई 30 सेंटीमीटर गहराई लंबाई चौड़ाई के गड्ढे तैयार कर लें तथा इन गड्ढों में गोबर की खाद 5,710 किलोग्राम प्रति गड्ढे का मान से डालें। इसके पश्चात आधार खाद के लिए अनुशासित स्फूर एवं पोटास की पूरी मात्रा थालों में डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। 374 बीज प्रति थाले के हिसाब से डालें। जब बीज अंकुरित हो जाए तो 2 स्वस्थ पौधे छोड़कर बाकी पौधों को उखाड़ देना चाहिए। खाद, उर्वरक और सिंचाई, किसान भाइयों 100 क्विंटल गोबर की खाद, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के मान से डालना चाहिए। गोबर खाद एवं स्फूर तथा पोटास को आधार खाद के रूप में देवें तथा नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटकर प्रथम अंकुरण पश्चात, द्वितीय जब बेल के 1 मीटर ऊंचाई के होने पर तथा फूल आते समय तीसरी मात्रा आवश्यक रूप से डालें तथा गुड़ाई करके भूमि में अच्छी तरह मिलाएं। सिंचाई, सिंचाई मौसम एवं भूमि के अनुसार करना चाहिए। साधारणतः 4 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई नालियों से ही सिंचाई करनी चाहिए और थालों में जल देना चाहिए। पादप नियंत्रण का उपयोग, करेला के पुष्प से मादा अधिक लाने के लिए मोलिक हाइड्रोजन या टीबा 50 ppm 50 किलोग्राम प्रति लीटर पानी के मान से 2 से 4 पत्तियों वाले पौधे में छिड़कने से मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है तथा उपज में वृद्धि देखी गई है। पादप संरक्षण, कीट लांड्री रेड पंपकिन बीटिल, यह कीट लाल रंग होता है जो 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, फसल पत्तियों के बीच के भाग को खाता है जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां छलनी जैसी दिखाई पड़ती हैं। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल खत्म होने पर बेलों को खेत से हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। फसल की अगेती बुआई से कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संतरी रंग के भृंग को सुबह के समय इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर या इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC 1 मिलीलीटर प्रति 2 लीटर का छिड़काव करना चाहिए। भूमिगत शिशुओं के लिए क्लोरोपायरीफास 20 EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर हल्की सिंचाई के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। फल मक्खी फ्रूट फ्लाई, इस कीट की मक्खी फलों में अंडे देती हैं और शिशु अंडे से निकलने के तुरंत बाद फल के गुदे को भीतर खाकर सुरंग बना देते हैं। इसके लिए खेत की निराई करके प्यूपा को नष्ट कर देना चाहिए। ग्रसित फलों को भी एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात में सामयिक सुझाव। जानकारी का विषय था करेले की लाभकारी खेती। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी कार्यक्रम विवरण में।

सुबह 7 बजे लोक गीतों के कार्यक्रम गूंजे जंगल में आप सुनिएगा सेतलाल एक्का और साथी, जोहन लकड़ा और साथी, स्तुति केरकेट्टा और साथियों के स्वर में सादरी लोक गीत। सुबह 7:15 पर चंद गज़लों के कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनिएगा चंद गज़लें। सुबह 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 8:30 पर आप सुनिएगा छत्तीसगढ़ी समन्वित कार्यक्रम मोर भुइयां। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रस्त

0: प्रसारित करेंगे। सुबह 9 बजे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन प्रस्तुत किया जाएगा। सुबह 9:55 पर और सुबह 11:55 पर प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 10 बजे आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर। सुबह 10:30 पर हम आपको बताएंगे तापमान की सूचना, उसके बाद कार्यक्रम विवरण, फिर हम आपको बताएंगे, उसके बाद आप सुनिएगा नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। सुबह 11:05 पर कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 12 बजे सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम चयन का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं। दिन में 1:10 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनेंगे क्रम बातचीत, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित क्रम आईना और क्रम घर आंगन मेल और कुछ गीत संगीत। दिन में 1:40 पर और रात 10 बजे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुनेंगे। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनिएगा शाम 5:05 पर। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में युवा साथी आज सुनेंगे क्रम युवा सोच और क्रम युवा कलाकार का प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम गोधूली में हम आपको सुनाएंगे अमृत मिंज और साथी और तिलन साहित्यिका और साथियों के स्वर में सादरी लोक गीत। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। शाम 7:30 पर सुनिएगा क्रम हेलो किसानवाड़ी, मंडी भाव, मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब हम संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां राष्ट्रपतिभवने ह्यः 26,000 द्वितीय रक्षा अलंकरण समारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। शौर्य पुरस्काराः रक्षा सैन्य बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, केन्द्र शासित आरक्षकाणां, कार्मिकाणां च कृते प्रदीयन्ते। एते पुरस्काराः सशस्त्र बलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलानां, अन्य सुरक्षा अभिकरणानां च कार्मिकाणां असाधारण शौर्य कार्यान् उद्दिश्य प्रदीयन्ते। राष्ट्रपतिना समारोहे 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 30 परम विशिष्ट सेवा पदकानि, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदकानि, 50 अतिविशिष्ट सेवा पदकानि च वितरितानि। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाः अधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः मुर्मुः वर्या इतः पूर्वम् अस्मिन् मासे 8 दिनांके राष्ट्रपति भवने रक्षा अलंकरण समारोहे प्रथम चरणस्य शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः अवदत् यत् तस्य सेशेल्स देशस्य यात्रा महत्वपूर्णैः परिणामैः पूरितम् आसीत्, येन भारत सेशेल्स देशयोः मैत्री प्रवर्धिता भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे प्रधानमन्त्री अवदत् यत् विगत 15 वर्षेषु उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सुदृढविश्वासेन संयुक्तप्रगतिना च चिह्नितः अस्ति। यदा तु आगामि 50 वर्षाणि नवान्वेषणेन सुस्थिरतया संयुक्तसमृद्ध्या च निर्धारिताः भविष्यन्ति। सः सेशेल्स देशस्य स्वातन्त्र्यस्य 50 वर्षे राष्ट्रियदिवसस्य समारोहे भागग्रहणाय हर्षं प्रकटितवान्। श्रीमोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपत्ये डॉ. पैट्रिक हर्मिनी इत्यस्मै सेशेल्स देशस्य सर्वकाराय जनानां च स्नेहाय धन्यवादम् अददात्। राष्ट्रिय निवेशावसंरचना कोषस्य नीफ इत्यस्य कृते सर्वकारस्य समग्र प्रतिबद्धता अधुना 60,000 कोटि रूप्यकाणि अभवत्। एतत् उपक्रमं मूलसौकर्याणां कृते अन्येषु राष्ट्रिय महत्वपूर्णेषु क्षेत्रेषु च केन्द्रस्य निवेशप्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन गतसप्ताहे आधारभूत संरचना निवेशस्य गतिं वर्धयितुं देशे संस्थागत मूलधनम् उत्प्रेरयितुं च निधौ 30,000 कोटि रूप्यकाणां अतिरिक्त निवेश प्रतिबद्धतानुमोदिता। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अद्य आरभ्य पूर्वोत्तरस्य द्विदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्री चौहानः असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरे उच्चस्तरीय समीक्षा सभायाः आयोजनं करिष्यति। सभायां असम राज्यस्य समीपस्थेषु क्षेत्रेषु सस्येषु ग्रामेषु महत्वपूर्ण जलसंरचनायां च जलप्लावस्य प्रभावस्य समीक्षा भविष्यति। वर्तमान साहाय्योद्धार कार्याणां प्रगतेः समीक्षापि भवितुं शक्नोति। असम राज्यस्य समीक्षायाः अनन्तरं श्री चौहानः श्वः अरुणाचल प्रदेशस्य जलप्लावित क्षेत्राणां निरीक्षणं विधास्यति। सः जलप्लावितानां ग्रामाणां कृषिक्षेत्राणां साहाय्योद्धार शिबिराणां च स्थित्याः मूल्यांकनं कर्तुं वायुमार्गेण भूमार्गेण च सर्वेक्षणं करिष्यति। जुलाई मासस्य तृतीय दिनांकादारभ्यमानस्य 57 दिवसात्मिकायाः वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः प्राक् सुरक्षा संस्थाः पंजाबतः जम्मू कश्मीर पर्यन्तं तीर्थयात्रा मार्गे सज्जतां तीव्रीकृतवन्तः। मोक ड्रिल इति आचरन्ति, निरीक्षण प्रणालीं सक्रियं कुर्वन्ति, सहस्रशः तीर्थयात्रिणां सुरक्षित गमनागमनं सुनिश्चेतुं अन्ता संस्था समन्वयं सुदृढं कुर्वन्ति च इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए लोक गीतों का कार्यक्रम गूंजे जंगल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सेतलाल एक्का और साथी, जोहन लकड़ा और साथी, और स्तुति क्रिकेट्टा और साथियों के स्वर में सादरी लोक गीत। कार्यक्रम के शुरुआत में लीजिए सुनिए सेतलाल एक्का और साथियों के स्वर में कर्मा गीत।

अभी आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए स्तुति केरकेट्टा और साथियों के स्वर में अधरतिया कर्मा गीत।

अभी आपने सुना स्तुति केरकेट्टा और साथियों के स्वर में अधरतिया कर्मा गीत, और इसी गीत के साथ ही आज का लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त होता है। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चंद गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत में चंद गज़लें। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में अनवर की लिखी ये गज़ल। संगीत है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन का। बिछड़ कर भी तेरा एहसास बाकी है, दिल के हर कोने में तेरा नाम बाकी है। लोग कहते हैं वक्त सब भुला देता है, मगर मेरी धड़कनों में तेरा इंतजार बाकी है।

अब लीजिए सुनिए मेहदी हसन की आवाज़ में खुर्शीद हल्लौरी की लिखी ये गज़ल। इसे हमने लिया है एहसास एल्बम से।

0: इसी गज़ल के साथ ही आज का चंद गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। सुबह के 7:30 हुए हैं, अब लीजिए सुनिए जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज के नमस्कार सरगुजा के अंक में। आपके साथ मैं हूं विजय कुमार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फ़ोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के अनुसार

के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और श्रोताओं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत तलत महमूद की आवाज़ में। गीतकार हैं सत्येंद्र अथैया और संगीत है रोशन का, और फिल्म का नाम है अनहोनी।

श्रोताओं, अब हम आपको बता दें, जनसंपर्क विभाग सरगुजा से प्राप्त सूचनाएं। मन की बात बना जनसंवाद और जन प्रेरणा का सशक्त मंच। रामगढ़ उदयपुर में सामूहिक श्रवण। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रधानमंत्री के विचारों को बताया राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने प्रधानमंत्री के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सहभागिता रही। सभी ने प्रधानमंत्री के विचारों को ध्यानपूर्वक सुना और राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी की भावना को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों से प्रधानमंत्री का आत्मीय संवाद है। ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच, जनभागीदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण की भावना को निरंतर सशक्त करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे प्रेरणादायी प्रयासों, नवाचारों, जनसेवा के उत्कृष्ट कार्यों और सामान्य नागरिकों की असाधारण उपलब्धियों को सामने लाकर पूरे देश को प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी विचार प्रत्येक नागरिक को समाज हित और राष्ट्र हित में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। मन की बात के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, युवा नवाचार, आत्मनिर्भर भारत, स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन और जन कल्याण से जुड़े अनेक विषयों पर सकारात्मक संदेश पूरे देश तक पहुँचते हैं। इससे समाज में जागरूकता बढ़ती है और आम जन विकास यात्रा के सहभागी बनते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। प्रधानमंत्री का यह संवाद समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रेरणा देने के साथ साथ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य बोध को भी मजबूत करता है और इस जानकारी के बाद अब लीजिए सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में फिल्म तराना का गीत। गीतकार हैं तिलक राज थापर और संगीत है राम लक्ष्मण का।

आषाढ़ के प्रथम दिवस पर 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने किया उद्घाटन। रामगढ़ सरगुजा अंचल की ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक धरोहर है। समापन समारोह में मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि। आषाढ़ मास के प्रथम दिवस पर सरगुजा अंचल की गौरवशाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत के प्रतीक 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 का शुभारंभ सोमवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने किया। पारंपरिक गरिमा, सांस्कृतिक उल्लास और ऐतिहासिक चेतना से ओतप्रोत इस आयोजन में लोक संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व और पर्यटन का अद्भुत संगम देखने को मिला। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। वहीं नई दिल्ली से आए कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भव्य रामलीला ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर सांसद महाराज, लुंड्रा विधायक, जिला एवं जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि, साहित्यकार, इतिहासकार, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ महोत्सव प्रदेश की समृद्ध लोक संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य और पर्यटन का अद्भुत संगम है, जो आने वाली पीढ़ियों को अपनी गौरवशाली विरासत से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। मंत्री ने रामगढ़ महोत्सव के 50 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। रामगढ़ महोत्सव में रामलीला कवि सम्मेलन और जटायु मोक्ष की प्रस्तुति ने बांधा समा। नई दिल्ली के ख्याति प्राप्त कलाकारों की रामलीला, कस्तूरबा विद्यालय की बालिकाओं की मनमोहक प्रस्तुति और कवियों की ओजस्वी रचनाओं ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। सरगुजा अंचल की ऐतिहासिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विरासत को समर्पित 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 के प्रथम दिवस में संस्कृति, साहित्य और लोक कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। महोत्सव में प्रस्तुत विविध सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। नई दिल्ली के ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भव्य रामलीला, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उदयपुर की छात्राओं द्वारा जटायु मोक्ष की भावपूर्ण नृत्य नाटिका तथा कवि सम्मेलन कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहे। नई दिल्ली से आए ख्याति प्राप्त कलाकारों ने भगवान श्री राम के जीवन प्रसंगों का अत्यंत प्रभावशाली मंचन कर दर्शकों को त्रेता युग की अनुभूति कराई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श जीवन, धर्म, सत्य, त्याग एवं कर्तव्य परायणता को सशक्त अभिनय, प्रभावी संवाद, आकर्षक वेशभूषा, भव्य मंच सज्जा और मधुर संगीत के माध्यम से जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुति के दौरान पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और दर्शक कलाकारों के अभिनय से अभिभूत नजर आए। इसी क्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय उदयपुर की बालिकाओं ने जटायु मोक्ष पर आधारित मनमोहक नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर सभी को भाव विभोर कर दिया। भगवान श्री राम और जटायु के प्रसंग को बालिकाओं ने अत्यंत संवेदनशील और प्रभावशाली अभिनय तथा नृत्य के माध्यम से साकार किया। भावपूर्ण अभिव्यक्ति, उत्कृष्ट मंच संचालन, पारंपरिक वेशभूषा और सुमधुर संगीत के समन्वय से प्रस्तुति को अत्यंत जीवंत बना दिया गया। बालिकाओं की इस प्रस्तुति ने उपस्थित दर्शकों की आंखें नम कर दीं और पूरा सभागार देर तक तालियों की गूंज से गूंजता रहा। उनकी

प्रतिभा और आत्मविश्वास ने सभी का मन मोह लिया। इसके अतिरिक्त लोकगीत, सरगुजिया लोक नृत्य, कर्मा नृत्य, स्वागत गीत और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने महोत्सव को भव्यता प्रदान की। स्थानीय और क्षेत्रीय कलाकारों ने सरगुजा की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अपनी कला का उत्कृष्ट परिचय दिया। रामगढ़ महोत्सव का उद्देश्य सरगुजा अंचल की ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत और साहित्यिक परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाना और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध संस्कृति से जोड़ना है। प्रथम दिवस के भव्य और सफल आयोजन ने इस उद्देश्य को सार्थक रूप से अभिव्यक्त किया। और अब हम आपको सुना रहे हैं ये अगला गीत मुकेश की आवाज़ में। फिल्म का नाम है संबंध, गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत है ओमकार प्रसाद नैयर का।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: इन्फ्लुएंसर मीट से छत्तीसगढ़ पर्यटन को मिलेगी वैश्विक पहचान। डिजिटल मंचों पर गूंजेगी प्रदेश की खूबसूरती। 5 दिवसीय फेम टूर में मैनपाट सतरेंगा और रामगढ़ महोत्सव का अनुभव ले रहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। करोड़ों दर्शकों तक पहुंचेगा छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक, सांस्कृतिक और जनजातीय वैभव। डिजिटल माध्यमों के जरिए छत्तीसगढ़ पर्यटन को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा 26 जून से 30 जून 2026 तक 5 दिवसीय इन्फ्लुएंसर्स मीट एवं फेम टूर का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल के तहत राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित प्रमुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है, ताकि उनके माध्यम से प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार देश और दुनिया तक पहुंच सके। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मैनपाट, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सतरेंगा और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के रामगढ़ महोत्सव का भ्रमण कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान इन्फ्लुएंसर्स प्राकृतिक छटा, जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक लोक कलाओं, पर्यटन सुविधाओं और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही वे विभिन्न डिजिटल मंचों के लिए आकर्षक फोटो, वीडियो और रचनात्मक सामग्री तैयार कर रहे हैं, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की विशेषताएं लाखों दर्शकों तक पहुंचेगी। मैनपाट अपनी मनोहारी वादियों, तिब्बती संस्कृति, झरनों और प्राकृतिक आकर्षणों के कारण प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से विशेष स्थान रखता है। वहीं सतरेंगा इको टूरिज्म के क्षेत्र में तेजी से उभरता हुआ गंतव्य है, जहां विशाल जलाशय, प्राकृतिक वातावरण और रोमांचक गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसके साथ ही रामगढ़ महोत्सव के माध्यम से प्रतिभागी छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कलाओं और ऐतिहासिक विरासत से भी रूबरू हो रहे हैं। ये आयोजन पर्यटन

0: एवं संस्कृति मंत्री के मार्गदर्शन, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व, प्रबंध संचालक के सक्षम संचालन और उप महाप्रबंधक के निर्देशन में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की टीम द्वारा सुव्यवस्थित रूप से संचालित किया जा रहा है। आयोजन का अंतिम दिन 30 जून को निर्धारित है। डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर्यटन प्रचार का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। ऐसे में इस इन्फ्लुएंसर मीट के माध्यम से तैयार की जा रही डिजिटल सामग्री छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों को देश और दुनिया के करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे प्रदेश के पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता और दृश्यता बढ़ेगी, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, हस्तशिल्प, लोक कला, ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई प्रगति मिलेगी। इस प्रकार के नवाचार आधारित प्रचार अभियान राज्य को देश के अग्रणी पर्यटन गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आगामी समय में भी पर्यटन के प्रभावी प्रचार प्रसार के लिए ऐसे अभिनव प्रयास निरंतर किए जाते रहेंगे। अंबिकापुर में बिरसा मुंडा जयंती और हुल क्रांति दिवस पर 30 जून से 2 दिवसीय कार्यक्रम। आदिम जाति विकास विभाग अंबिकापुर जिला सरगुजा द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती एवं हुल क्रांति दिवस के अवसर पर 30 जून और 1 जुलाई 2026 को 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और श्रोताओं, इसी जानकारी के साथ ही आज का नमस्कार सरगुजा का ये अंक यहीं समाप्त होता है।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर
0: सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब हम समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
3: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त

0: सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय आदिवासियों कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
2: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
3: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
1: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की

0: कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र बिहार कोंकण गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मध्य प्रदेश विदर्भ छत्तीसगढ़ तेलंगाना तमिलनाडु पुदुचेरी और कारिक्काल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर पूर्वी राजस्थान गुजरात मराठवाड़ा आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है। ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल हैं, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
0: धन्यवाद सर फिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थायी प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपये तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Center to withdraw temporary restrictions on sale and distribution of petrol and diesel from the 1st of July. West Bengal government to implement uniform civil code in the state, says Chief Minister Shubhendu Adhikari. Information and Broadcasting Ministry announces major decisions to boost Indian film industry. Delhi government clears electric vehicle policy, cars under 30 lakh rupees to be exempted from road tax and registration fees. India strongly condemns Pakistan airstrikes in residential areas of Afghanistan that killed 36 civilians and injured 163 others. US and Iran to hold talks in Qatar's capital Doha today to resolve their dispute over Strait of Hormuz. And in football, Brazil enter round of 16 at the FIFA World Cup after 2-1 victory over Japan in Houston, US. The government has decided to withdraw the temporary regulatory measures governing the sale and distribution of petrol and diesel. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that with effect from the 1st of July, that is tomorrow, the temporary measures will be lifted from motor spirit and high-speed diesel through retail outlets of public sector oil marketing companies. We have more from a correspondent.
5: According to the statement, during the period of disruptions arising from the West Asia crisis, the government continued to shield retail consumers from the sharp increase in the international fuel prices by maintaining stable retail prices of petrol and diesel. This led to a significant price difference between retail fuel prices and those applicable to bulk consumers. The ministry said that to address this situation, the temporary regulatory measures introduced on 12th of this month prescribed a temporary limit of 200 liters of high-speed diesel per consumer or vehicle per day at retail outlets and required industrial, institutional and commercial consumers. The measures were aimed at preventing black marketing, hoarding and diversion of fuel while ensuring uninterrupted availability of petrol and diesel to retail consumers. Following a review of the supply situation of petroleum products in the country, the government has concluded that the temporary regulatory measures are no longer required in the public interest. The temporary measures help ensure adequate availability of petrol and diesels across the country while safeguarding the interest of retail consumers. There will withdrawals reflects the improvement in the supply situation and the restoration of normal supply arrangement.

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइयां के आज के अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम, महेंद्र साहू कोतिले। श्रोता साथी हो, आज के कार्यक्रम में आप मन ला सुनवात हन एक गोट बात, जेकर विषय हवे 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा। ये कार्यक्रम के संचालन करत हैं डॉक्टर राजन यादव।
1: 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ ही भाषा, ये वार्ता में हमार संग प्रसिद्ध कहानीकार, उपन्यासकार, गद्य रचनाकार आदरणीय बहन जी सरला शर्मा जी हैं और शैक्षणिक परिषद की ओर से राजकाज से जुड़े हुए, शोध कार्य से जुड़े हुए डॉक्टर बी रघु कुमार जी, आप मन के स्वागत है। हमार छत्तीसगढ़ ही भाषा के लंबा इतिहास है, पर हम जब देखथन के 25 बरस के छत्तीसगढ़ में हमार छत्तीसगढ़ी भाषा कहाँ तक पहुँची है। अज्ञे जैसे बड़े बड़े साहित्यकार मन कहे हैं कि भाषा कल्प वृक्ष होते, भाषा ला हमन नहीं बनान, भाषा हमन ला बनाते। तो गौरव की बात है कि आज हमार छत्तीसगढ़ी राजभाषा के रूप में हमार छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित है। तो राजकाज के भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी के का स्थिति है डॉक्टर बी रघु कुमार जी?
2: धन्यवाद आदरणीय। अभी वर्तमान में राजकाज में स्थापित तो नहीं हुए हैं छत्तीसगढ़ी है, जब से छत्तीसगढ़ बने हैं वहाँ से लेके एखर बर कुछ तैयारी हुए है। राजभाषा आयोग घलो करीन और हमारे साहित्यकार मन और भाषा के विशेषज्ञ मन घलो के मा काम करे है। कुछ पुस्तिका निर्देशिका छत्तीसगढ़ी में राजकाज में उपयोगी जिन हो सकत है वो विषय लेके कुछ पुस्तिका वगैरह हो, इस प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित करे गए है मंत्रालय स्तर पर और विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यालय मन में। योजना ये भी रही से कि जिला स्तर मन के कार्यालय मन में भी प्रशासकीय कार्य के समय राजकाज में

0: छत्तीसगढ़ी भाषा के बने उपयोग होए करके प्रयास तो होए है, लेकिन ये कहे जा सकते है कि अभी औ कुछ प्रयास करे की आवश्यकता है आने वाले समय में, औ एकर कैसे विस्तार हो सकत है तो एकर बारे में भी औ हमला प्रयास करे की आवश्यकता है।
1: हाँ बढ़िया। हरि ठाकुर कहे है कि भाषा श्रवण कुमार से ही होते, लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक साहित्य, लोक कला, लोक भाषा अपन खान हम लेके चलते हैं सब ला। तो हमारे यहाँ लेखन के भी बड़ा काम होते, अभी गद्य के बढ़िया रचना थे, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी उपन्यास के समीक्षक, छत्तीसगढ़ी साहित्य के समीक्षक, गद्यकार, कहानीकार आदरणीय सरला जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कहानी लेखन द्वारा छत्तीसगढ़ी के कैसे फैलाव होवत है?
2: आज कहानी हर वाचिक परंपरा ले बहुत आगू निकल गए है, और ए दिशा में हम देखा थन कि छत्तीसगढ़ राज बने के बाद कहानी लेखन है सिर्फ प्रेम दाम्पत्य एकर ऊपर आधारित नहीं रह गए है। आज के कहानीकार, आज के जो प्रमुख विषय है, मैंने सियान सियानीन मन काकर कर रही, भविष्य के पेट भरे के चिंता कौन करही, तो वृद्धाश्रम बनत है का, वृद्धाश्रम में वो सियान सियानीन मन सुरक्षित हैं, संतुष्ट हैं, ए विषय ला ले करके कहानी लिखे गई गरु बुढ़ापा जेकर लेखिका है सरला शर्मा। आउ थोड़कन आगे आइन, आज के दिन में महात्मा गांधी घर कतका कन प्रासंगिक रही गए, अहिंसा के सदुपयोग या दुरुपयोग समाज में कौन तरह से हुआ थे, समाज के पिछड़े वर्ग ला कतका आगू आए के मौका मिला थे, माने महात्मा गांधी ला आज हमन व्यावहारिक रूप से कौन रूप में देखा थन, अतका ज्वलंत प्रश्न लेकर के उपस्थित हो हैं चंद्रहास साहू, और उनकर कहानी के नाम है गांधी चौरा। गांधी चौरा ला पढ़े के बाद हमन ला एक बार फिर सोचे बर पड़ जाते कि का महात्मा गांधी के अहिंसा हर, जैन धर्म के अहिंसा परमो धर्म हर, और बौद्ध धर्म के प्राणी मात्राणी दयालु भाव हर आज प्रासंगिक रह गए। एकर मतलब होइस कि आज के कहानीकार मन आज के समस्या ला अपन विषय वस्तु बनावत हैं, और यह बहुत खुशी की बात है।
1: अच्छा बताया आपने, जैसे परदेसी राम वर्मा की मरिया बहुत कहानी संग्रह दौरान आई सभी, बिहारी लाल साहू के सूरज पोटारी संध्यार, पीसी लाल यादव की नियाव, सुधा वर्मा के धन बहार के छाँव माँ, चोवा राम बादल, रामनाथ साहू, सुशील कुमार भोले, गया प्रसाद साहू, डॉक्टर उर्मिला जी, कमलेश प्रसाद जी, चंद्रहास, आप स्वयं सरला शर्मा जी, और जो चंद्रहास जी के याद करे हो, गांधी चौरा, मंगरोहन, करिया अंग्रेज, गजब के उखर कहानी संग्रह भी आते हैं। तो कहानी के माध्यम से कहे जाते कि भाषा ला पुष्ट गद्य के द्वारा करे जा सकते है, तो गद्य में बढ़िया रचना हो थे, पर केवल रचना से ही काम नहीं चला है, हमार पठन पाठन में भी वो आए चाहिए, तो स्कूली शिक्षा में छत्तीसगढ़ ही कैसे विकसित हुआ थे? डॉक्टर रघु जी,
0: आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं जानकारी ये दे दूं कि शासन स्तर पे खासकर स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में कहीं कहीं पे पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला जो है ना अंश बनाए गए हैं। जैसे 2019-20 में एक प्रयोग हो इसकी, जैसे छत्तीसगढ़ है बहुभाषी परिवेश के हवे, स्थानीय आदिवासी मन के घलोक भाषा है, तो वह मन ला महत्व देते हुए छत्तीसगढ़ी ला भी शामिल करके, तो कक्षा एक और दो के लइका मन पर द्विभाषिक पुस्तक बनाए गए हैं, माने वो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी में हिंदी और हल्बी गोंडी ऐसे टाइप के, तो ये एक प्रयोग है बहुत सार्थक रहीस। आज के तारीख में पहली कक्षा दूसरी कक्षा के लइका मन ला जेखर मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है, जेखर पर सुगम छत्तीसगढ़ी भाषा हवे, वो लइका मन ला काफ़ी सहायता मिलीस। बाद में कक्षा 3-4-5 में भी करीब करीब 20-25% पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला रखे गिरी से, ओखर बाद 9वीं-10वीं में घलोक लगभग 20-25% हिस्सा छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित विषय वस्तु रखे गिरे से। लेकिन अभी 2 साल हो गए एनसीईआरटी के पुस्तक मान ला एडाप्ट करे के खातिर।

0: अब यह नंद आगे 3, 4, 5 में या 9वीं 10वीं के किताब मन में जिन छत्तीसगढ़ी के अंश रही से वो नंद आगे है। एक प्रयास और चलत है अभी छत्तीसगढ़ी पर केंद्रित करते हुए सहायक वाचन के निर्माण करे जाते हैं माँ, तो संभवतः ये सत्र में प्रकाशित हो जाही या लागू हो जाही ऐसे उम्मीद करे जाते। कहना ये चाहता हूँ मैं है कि अभी पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी ला जतका हिस्सेदारी होना रही से वतका संतोषजनक नहीं है, लेकिन प्रयास है चलत है शासन स्तर पे। तकनीकी कुछ कुछ दिक्कत आवत है शायद एकर से थोड़ा से आगे हो सकत।
1: भाषा वैज्ञानिक बहुत बड़े हुई हमारी हर रमेश चंद महरोत्रा जी, उखर पंक्ति है, अब सुनिहा दीदी हमारे एक ठन गोठ हो, छत्तीसगढ़ ही कहत माँ उघरय सब लैकन के होठ हो। याने हम दूध भाषा जो कथन वो माता से जब शुरुआत हो वो यदि हो जाए तो जो अच्छा बात बताया आप मन कि स्कूल शिक्षा में ओह जुड़ गए हैं। हमारे यहाँ कहानी के बाद गद्य के बात करी तो उपन्यास में भी बहुत बढ़िया अब रचना चले आते उपन्यास कला में। मणिराम साहू मितान, चोवाराम बादल ये महाकाव्य भी लिखे हैं। चंद्रशेखर चकोर जी ये उपन्यास में है। रामनाथ साहू, परदेशी राम वर्मा, स्वयं सरला जी के मितान उपन्यास, तो उपन्यास विपुल मात्रा में बात है कहानी के बाद दमदार जुन विधा है। तो मैं जानना चाहा सरला जी से कि छत्तीसगढ़ी में उपन्यास लेखन के द्वारा हमारे ये भाषा के कत का विस्तार होवत है।
2: मैं एक बात आप श्रोता करवाना चाहिए हाँ कि कहानी हर जीवन के एक अंश मात्र है और उपन्यास हर संपूर्ण जीवन है।
1: जीवन है
2: एमा एक चीज और जोड़ना चाहिए हाँ कि वो हर समस्ती चेतना ला उद्घाटित करते, मतलब आम आदमी के समस्या मन ला संग में लेके चलते तव हर उपन्यास कहा थे। ये विषय में जैसे आप अभिनाम ले वो परदेशी राम वर्मा, परदेशी राम वर्मा के आवा ला जब हम देखथन तो आवा उपन्यास में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगे हुए जो इलाका है तो उन इलाका के जनजीवन के थोरकुन हमला दर्शन मिलते, परंतु मूलतः आवा उपन्यास हर जगन्नाथपुरी पर आधारित और जनजीवन प्रभावित दिखते। एक आगू हम चलत हन तो सन 2006 में एक उपन्यास आईस माटी के मितान, वो उपन्यास और आईस तब छत्तीसगढ़ बने के पर प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई से। वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के का प्रभाव समाज में पड़ीस, जगह जगह ग्राम पंचायत मन में महिला मन के पढ़े लिखे बर रात्रि पाठशाला, लड़की मन के कन्याशाला स्कूल और अटल सड़क योजना के द्वारा गांव गांव ला सड़क ले जोड़ना और एकर अलावा भी जैसे ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत गुड़ी के गोठ ला चौपाल से लेकर के साहित्य तक पहुँचाए के काम ए समय होइस। ऐसे समय में जब राज्य के चहुमुखी विकास होत रही से तो ये विकास ला के धारा ला आम जनजीवन से जोड़ते हुए और गड़रिया कथरी सिलवैया डंगचघा ए मन ला के जीवन ला प्रदर्शित करते हुए उपन्यास आईस, तेकरे बाद वो उपन्यास के नाम पड़ीस माटी के मितान। अब आओ आगे चलिन 10 साल आओ आगे चलिन तो एक नाम अभी आप ले रामनाथ साहू। रामनाथ साहू के उपन्यास है पथरा ले उठत आगी,
1: आगी।
2: ये उपन्यास हर गुफा मानव हर जे दिन पहली बार आगी के उपयोग देखिस सीखिस नहीं देखिस वहाँ से लेकर के आज माचिस के डिबिया में बंद आगी तक, चूल्हा बारे के झंझट ले मुक्ति पा करके गैस सिलेंडर तक जो परिवर्तन समाज में आईस और माई लोगन मन ला चूल्हा चौका के झंझट ले उबर के पढ़े लिखे के जौन समय मिलिस, समाज हर माई लोगन मन के शिक्षा ऊपर जौन ध्यान दिस यह बहुत बढ़िया ढंग से इतिहास और के संगे संग सभ्यता और संस्कृति के विकास ला प्रदर्शित करत उपन्यास है। ओकर नाम है पथरा ले उठत आगी। यह बहुत सशक्त उपन्यास है रामनाथ साहू के।
1: जैसे स्कूल शिक्षा के बात होइस, हमारे यहाँ उच्च शिक्षा में भी कॉलेज और विश्वविद्यालय में

0: पाठ्यक्रम के रूप में होए चाहे शोध कार्य के रूप में है, हमार राजभाषा छत्तीसगढ़ी के का स्थिति है रघु जी?
1: उच्च शिक्षा में घलोक छत्तीसगढ़ी पर काफ़ी कुछ हुए है, जैसे स्नातकोत्तर में एमए में छत्तीसगढ़ी साहित्य भी रखे गए है। ओखर बाद सबसे जिन बढ़िया काम उच्च शिक्षा में जिन हुआ थे विश्वविद्यालयीन स्तर पे महाविद्यालयीन स्तर पे, भाखा ला केंद्रित करते हुए लघु शोध क्रियात्मक शोध और शोध पीएचडी के इमा छत्तीसगढ़ी के अलग अलग आयाम ला स्पर्श करते हुए बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। बस मोला एक ठन मने इमा लगते विषय है कि साहित्य ला केंद्रित तो हुआ थे, अब्बड़ अकन काम हुआ थे साहित्य ला केंद्रित हुए, भाखा ला केंद्रित करते हुए ये काम मल्ला यदि केंद्रित करे जाए तो औ हमार भाषा समृद्ध हो ही, ऐसे मोर मानना है।
0: हाँ, जैसे बताए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में वहाँ एमए के

0: जिन हुआ थे विश्वविद्यालयीन स्तर पे, महाविद्यालयीन स्तर पे, भाखाला केंद्रित करते हुए लघु शोध, क्रियात्मक शोध और शोध पीएचडी के इमा छत्तीसगढ़ी के अलग अलग आयाम ला स्पर्श करते हुए बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। बस मोला एक ठन मने इमा लगते विषय है कि साहित्य ला केंद्रित तो हुआ थे, अब्बड़ अकन काम हुआ थे साहित्य ला केंद्रित हुए, भाखा ला केंद्रित करते हुए ये काम मल्ला यदि केंद्रित करे जाए तो औ हमार भाषा हाँ समृद्ध हो ही, ऐसे मोर मानना है।
1: हाँ, जैसे बताए पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में वहाँ एमए के स्वतंत्र जब पढ़ाई होते तो भाषा विज्ञान है
0: जी।
1: पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, एक दो यूनिवर्सिटी में औ वैष्णव चलत है
0: जी।
1: दूसरिया बात, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में तो भाषा लेके चलत है, पर दूसर जगह जहाँ साहित्य लेके चलत है तो ओमा एक दो पाठ एकाग दो अंश भाषा ला भी लेके प्रयास होते है, पर जवाब जैसे कहा था वो हो ही चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ जैसे अभी एक शोध कार्य पूरा होते इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी के खंड काव्य, वो मतलब कहानी पर होते 2000 के बाद वाले खंड काव्य में जब हो है तो जैसे मनीलाल कटकवार के नागेश्वर कन्या, ये 2002 की ना, मेहता राम साहू के रतन बपरी, डॉक्टर प्रभंजन शास्त्री, डॉक्टर पंच राम सोनी, हरि ठाकुर सहित वीर नारायण सिंह, डॉक्टर निरुपमा शर्मा, अमर चिन्हारी, ये खंड काव्यिक हर गणेश यदु, भूमकाल, बुधराम यादव, हेमनाथ यदु, कपिलनाथ कश्यप, डॉक्टर दशरथ लाल निषाद, तीमन खंड काव्य की जो रचना करे है तो ओमा अच्छा ढंग से वो भाषा है। मैं जीवन यदि सुशील कुमार यदु जी के रचना एक पढ़ाते रहे हूँ, ओमा छत्तीसगढ़ के अमर सेनानी करके, तो ओखर जो मैं एक पढ़े और रचना तो ओमा लगीस के भाषा ला बढ़िया अच्छा अतका ढंग से रखे है कि हिंदी और दूसर भाषा के रचना के टक्कर से कम नहीं है, ओखर मुकाबला के है। यहू याद रखबे भुलाझन तो जाबे, कफन बांध के मुड़ का टायन कभू हम, हो इसका के भिनसरहा पायन न पायन, लहू के तो लाली वो गायन कभू हम, कोनो जानिन पहचानिन एकरो न मतलब, वतन गीत मस्ती म गायन कभू हम। शहीदी लहू एक दिन सिर चढ़ के कही कि दहकत अंगारा धध कायन कभू हम, कफन बांध के मूड़ कटायन कभू हम। तो कोनो भाषा के आप स्वतंत्रता सेनानी पंक्ति के मुकाबला हम खड़ा कर सकत हो, तो भाषा में वो जोन मार्दव चाहिए, जोन ओज चाहिए, जोन अर्थ गंभीरता चाहिए तो छत्तीसगढ़ी में है, पर ओला रचना करैया मन केवल दीदी अक्सर कथे लिख के रख दे काम नहीं चलाए। एक तुलसीदास जी जैसे और जायसी जैसे सामर्थ्यवान कबील पाके अवधि दंदनात ऊपर चढ़ गए, सूरदास जी से कबील पाके ब्रजभाषा कहाँ पहुँच गए, तो मात्रा नहीं गुणवत्ता पे ध्यान होना चाहिए। तो एक दमदार हमारी यहाँ एक ठन विधा है और ओमा बढ़िया रचना आते छत्तीसगढ़ी निबंध मा नाटक मा इखर कैसे बढ़िया प्रयोग होते और का आशाजनक है। आदरणीय सरला जी में प्रकाश डाली।
2: आज हम जो चर्चा करा थन छत्तीसगढ़ी के 25 साल, बढ़िया विषय बहुत बढ़िया है। आप मन अभी अभी डॉक्टर राजन यादव से सुशील यदु के कविता के एक अंश ल सुने, आप मन ध्यान दे, भाषा है कतका उदार हो गए है कफन। और भी एक ठन उदाहरण रहे हैं, अन्य अन्य भाषा मन के शब्द मन ल बहुत उदारता पूर्वक आजकल हमन छत्तीसगढ़ी में निभाथन, और एक सबसे बढ़िया उदाहरण यह निबंध में पड़ते, ओकर नाम ही निबंध, जेकर कोई बंधन नहीं है तो भाषा के बंधन घलाह तो टूटिस न। तो थोड़ी कन अपन मन ध्यान देवो एमेर कि भाषा के बंधन है टूटी से, थोड़ी कन विषय अंतर अगर नहीं हो बताना चाहिए हाँ। अभी मैं आकाशवाणी निकला तरह तो मोर बाई है मोला कहिस, गांव जात हूँ मैडम, संडे के आ गाड़ी लेट नहीं रही तो टाइम में आ जाओ। ध्यान दे आप मन, संडे के वह जाही और ट्रेन है लेट नहीं रही ना, ट्रेन लेट तो वह टाइम पहुंच जाए, पैठन शब्द अंग्रेजी की हुई। ए हरे आज के छत्तीसगढ़ी, और मोर ये कहना है कि जौन भाषा हर जतके ज्यादा अन्य भाषा मन के शब्द मन ला आत्मसात कर ही अपन में मिला ही, डरावा झन अरे दूध

0: मो कतको पानी मिला रहा दे रही तो वह दूध है पानी तो नहीं हो जाए। तो उसने छत्तीसगढ़ी है छत्तीसगढ़ी रही। दूसर एक बात, आज के निबंध जो लिखे जाते हैं तो उन निबंध मन ल पढ़ के हमन ल ये मालूम होते कि हमन ये छत्तीसगढ़ी के 25 साल में हमन सबसे बड़े काम जो करे हैं हमन 52 अक्षर ला शहर अपना ले हैं। आज हमार भाषा में हमार लेखन में हमार बोली बतरा में हमन 52 अक्षर के प्रयोग करत हन। एक बात और ध्यान दीन ना भाई कि हमार छत्तीसगढ़ी की लिपि है तो देवनागरी चेना जौन देवनागरी संस्कृत और हिंदी के है। तो जब हम हिंदी और संस्कृत के देवनागरी ला अपना ले हैं 52 अक्षर ला अपना ले हैं तो हमन रास्ता ला रद्दा काबर कहबो। एक बात और दूसर बात, आज के निबंध है आज के समस्या मन ऊपर नहीं लिखी ही, आज के लड़का मन के ऊपर भविष्य के ऊपर चिंता नहीं करी कैसे बने। तभी तो सरला शर्मा एक ठन निबंध लिखते मोर करण फूल मोबाइल। काबर ये मोबाइल है सही में करण फूल हो गए है और कतका कन एक्सीडेंट करावत है लड़का मन के पढ़े लिखे में चेत नहीं कि लड़का मन के ऊपर भविष्य के ऊपर चिंता नहीं करी कैसे बने। ये हर निबंध के बारे में हो। अब एकांकी और नाटक।
1: जी जी,
0: नाटक हर समय ज़्यादा लेते एकांकी है कम। तो एकांकी घलाव हर समाज ल चित्रित करते, नाटक घलाव हर समाज के समस्या मन ल चित्रित करते। आज के छत्तीसगढ़ी नाटक हर एक बहुत बड़े समस्या समेट के चले है। आप मन ल चलो बिलासपुर ले चलत हो नंद किशोर तिवारी के अंगना में, तो उन्हें एक क्षण लिखे हैं कहाँ गंवा गए मोर कुआ। काबर हल्का पटवारी नंबर खेत नंबर वहाँ टोडर मल के जमाना ले चलत आवत है भूमि संबंधी दस्तावेज मन के। ओ सब माँ पटवारी हर एक ठन जमीन ले बता दी सोमा कुआं खना गिस कुआं खनाए के पैसा ले लीन कुआं कहाँ गंवा गए जी। अरे वो जमीन ही नहीं है तो कुआं कहाँ रहे। अतका बड़े व्यंग और अतका बड़े सामाजिक विसंगति ला अगर कोई एकांकी या नाटक हर दर्शात है तो मैं सोचता हूँ कि पिछले 25 साल में छत्तीसगढ़ी गद्य ला संभारे में व्हाट्सएप ग्रुप के जो लोकाक्षर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप है वो है बहुत बढ़िया काम कर
1: रहा है। बीच बीच में
0: लोकाक्षर अच्छा ग्रुप में आखर के अरघ नाम के जो निबंध संग्रह है जेमा गद्य के 16 भाग संस्मरण निबंध कहानी सब वो 16 कला के एक एक दिन उदाहरण सहित प्रशिक्षण दे गए इस लोकाक्षर में। और यह छत्तीसगढ़ी गद्य के उज्जवल भविष्य ल दिखाते।
1: आप मन जो चिंता करे हो भाषा कैसे एक बारगी खोजेल पर जथे छत्तीसगढ़ी ल, हरि ठाकुर बढ़िया बात करे हैं। छत्तीसगढ़ी कविता नाम कुंकर कविता है धान के कटोरा संग्रह में। भाषा हा सर्वन सही होते जब कांवर ल उतार के यति वोती होते तहाँ ले शब्द भेदी बान हा हर लेते वो कर प्राण ला। शब्द भेदी बान ले अपन भाषा ला बचाए बर होए त खांध ले कांवर ल उतारो झन बोहे रहो और काल खंड ला खंड खंड करके रेंगते रहो सजग रहिल पढ़ी। हमन देखे हन के अब राजभाषा बन गए छत्तीसगढ़ी पर सरकारी कार्यालय मन मा ऑफिस मन मा बोलचाल के रूप मा छत्तीसगढ़ी भाषा हमार गोठ बात मा कतका प्रयोग मा आते। डॉक्टर रघु जी
2: एखर चर्चा शुरू करे पहली मैं अभी थोड़ी देर पहली दीदी है जिन उदाहरण दिस भाषा के प्रयोग के संबंध में वही चीज ला महू है बहुत दिन से निहारा था जाना था महू बा। एक बार हमार साथी मन खैरागढ़ डाइट के हमार साथी मन एक लघु शोध करीन और भाका के एक कतका का स्थिति है एकर बारे में चर्चा करके मने मन शोध लघु शोध करी नुमा उमा राह चलने वाले मन से सब्जी बेचैया मन से रिक्शा चलैया से सबसे बात करीन। और उमा दीदी जैन उदाहरण दीस न वही स्थिति रही से 1500 शब्द में करीब करीब 450 शब्द उमन अंग्रेजी शब्द मन के उपयोग करते स्वाभाविक रूप से ये स्थिति रही से। तो अभी जिन आप जानना चाहते हो प्रश्न हो इसकी शासकीय कार्यालय मन में दैनिक वार्तालाप मन में का स्थिति है ये है बहुत संतोषजनक तो नहीं है। ये है ऐसे चीज़ें मातृभाषा या हमारे

0: बाकाला, स्वतः यदि हम प्रयोग नहीं करबो संवाद में तो दूसर आदमी है वो कहां ले सुनी जानी।
1: हाँ, अपन बोली तो, भाषा में गर्व तो करना चाहिए,
0: करना चाहिए तो, वो मा कार्यालय मन में जावे तो हिंदी हो अंग्रेजी
1: नहीं। मैं तो लड़का मन ला विश्वविद्यालय में पढ़ात रहो तो कथो कोई विषय पूछतो प्रश्न छत्तीसगढ़ी में बोल पावे तो छत्तीसगढ़ी में बोल, या जौन प्रांत ले आए जो भाषा में बोल, हिंदी में नहीं आए तो मैं बोल बोल तो
0: नहीं।
1: तो ये उत्साह वर्धन करना चाहिए। और यदि हम जानत हन छत्तीसगढ़ी तो सामने वाले छत्तीसगढ़ी भाषा भाषी तुम्हार से बात करना चाहिए। भाषा ला पोठ करेल है तो गद्य के एक से एक रचना आना चाहिए, पर सबसे ज्यादा लिखे कविता जाते। तो अभी जो छंदोबद्ध रचना करत हैं, बढ़िया बढ़िया शब्द के प्रयोग होते, तो हमारे जो नवा कवि जी घर चर्चा करत रही हैं दीदी मन कि डॉक्टर सेवाराम पांडे जी, प्रभंजन शास्त्री जी, ये मैं 2000 के बाद के रचनाकार मन रचना जो आए उखर अनुसार बताता हूँ। मणिराम साहू मितान महाकाव्य ही घर, रामेश्वर शर्मा, बुधराम यादव, मणि मनेश्वर, डॉक्टर पीसी लाल यादव, धनेश्वरी गुल, आशा देशमुख, संगीता वर्मा, राम कुमार चंद्रवंशी, बलदाऊ साहू, चंद्रशेखर यादव, बंधु राजेश्वर खरे, चोवाराम बादल, भगत सिंह सोनी, संतराम देशमुख, राजन प्रसाद सिन्हा, रमेश सोनी, पंचराम सोनी और सुखदेव सिंह, डुमन लाल भाई, डॉक्टर रमाकांत जी, पुरुषोत्तम ठेठवार, राजकुमार चौधरी, शशिभूषण, अजय अमृतांश, मणि मनेश्वर, त्रुपति साहू, विजेंद्र कुमार, अशोक पटेल, उर्मिला शुक्ल, ऐसे बहुत हमार युवा जो रचनाकार हैं, स्थापित रचनाकार है, उखर रचना अब आते। तो कविता के संग संग गद्य की ओर भी आगे आए। मैं आपसे दीदी एक प्रश्न करी हूँ कि आप मन संगोष्ठी सभा सोसाइटी में बहुत आज जात रहा, तो संगोष्ठी सम्मेलन और दूसर साहित्यिक आयोजन में छत्तीसगढ़ी के कतका भागीदारी होते?
2: छत्तीसगढ़ी के भागीदारी में मोला कोई संशय नहीं है
1: जी,
2: बहुत हुआ थे, पर वही मैं पहली कहे ना कि कविता के क्षेत्र में हुआ थे। अभी कविता में का हुआ थे कि लोगन करा अतका समय नहीं है कवि सम्मेलन रात भर जाग के सुने के, उन मोबाइल में मगन है, उन और कुछ मगन है। और दूसर बात कि कविता में छंदबद्ध रचना पढ़ाइया मन के संख्या क्रमशः कम हो जात है, सबो जन लक्ष्मण मस्तूरिया नहीं हो भाई
1: जी जी जी।
2: और तहत में पढ़ाइया जब कवि मन है, कवि कवियत्री मन है, ओ मन जनता के श्रुति मधुर शब्द दे नहीं पावे, काबर के उनकर पास लय और अभाव हो जाते। तीसर जो सबसे जरूरी बात जो आग है, अभी छत्तीसगढ़ी के 25 साल ला देखत खानी हमें ला एहू बात ऊपर ध्यान रखना पड़ी कि आज के जो कवि है तो उन्हें सोशल मीडिया कति मुड़ गए है
1: जी जी।
2: आज वो कवि है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तब रील बना के, तब अपन यूट्यूब में अपन कविता मन ला पढ़ के सुना के प्रचार प्रसार कर लेते हैं। दूसर बात, छत्तीसगढ़ी कविता सुनैया रात रात भर जाग के ओमन के अभाव गांव में भी देखे बर मिलत है, तो ओकर कारण भी हमन ये देखा थन कवि सम्मेलन मन के आयोजन में थोड़कन कमी आई से। दूसर एक कारण और मोला लगत है कि ये जो अभी सोशल मीडिया में जो हमन प्रस्तुत करा थन, चाहे छत्तीसगढ़ी गद्य हो पन, तो एहू है तो एक छत्तीसगढ़ी के बहुत बड़े सुखद पक्ष है ना भाई।
1: विशेषकर हमन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हमन देखे हैं कि हमार सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, श्लोक उत्सव हो, ओमा तो बढ़िया प्रभाव पड़ी से। नंद कुमार साहू जी राम कथा के माध्यम से बहुत बड़े काम करे, तो लोकाक्षर के जब आप नाम करे नंद किशोर तिवारी, स्थापित अखबार मन तको आजकल हफ्ता में एक ठन पेपर एक पन्ना जरूर छत्तीसगढ़ी का छापत हैं। तो हमन आशा करत हन कि छत्तीसगढ़ी भाषा विकास के पथ में बने आगे बढ़त हैं। ये 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाषा की जब हम बात करी तो हमन आशा के अनुकूल चलत हन, अपन पांव जमात जाते। और अंत में मैं यही फिर कही हूँ, आप मन बढ़िया बतायो जौन जौन दिशा में छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार हो सकत है, काम करे जा सकत है। फिर वही हमार बहुत बढ़िया कवि हरि ठाकुर की बात लेके कि अपन भाषा है बाँचे रही तो हमार पहचान है घलो बाँचे रही, नहीं तो हमू मन कचरा में मिझरा जाबो, जर जाबो भूंजा जाबो, अब एक दिन राख बन के सिरा जाबो, लोकमान्य तिलक

0: रही से कि भाषा मा स्वतंत्रता के बीज होते, तो अपन भाषा ला बचाए रही, बनाए रखी और बढ़िया प्रयास करी। आप दोनों जन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बढ़िया विचार आप मन रखे हो, धन्यवाद।
1: 25 बरस के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी भाखा एक विषय में अभी अपन गोट बात सुनत रहा और गोट बात में भाग लेवत रहीन श्रीमती सरला शर्मा, डॉक्टर राजन यादव और डॉक्टर बी रघु कुमार। अब ये कार्यक्रम के संचालन करत रहीन डॉक्टर राजन यादव। अब एक संग आज के ये कार्यक्रम ले मोला यह विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। संपादक और प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र साहू। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ी समन्वित कार्यक्रम मोर भुइयां। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब लीजिए सुनिए बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

स्वागत है श्रोताओं आप सभी का आज की बातों और गीतों के कार्यक्रम गुंजन में। आज के सफर में आपके साथ मैं हूं आपका हमराही विजय। साथियों, अनंत आकाश में टिमटिमाते असंख्य तारों के बीच कुछ ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो न केवल वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय है बल्कि पूरी मानवता की सुरक्षा से भी जुड़े हैं। इन्हीं में से एक हैं क्षुद्र ग्रह। साथियों, हर साल 30 जून को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह यानी इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाती है। ये दिवस हमें अंतरिक्ष की विशाल दुनिया से परिचित कराता है और ये भी बताता है कि पृथ्वी की सुरक्षा केवल धरती तक सीमित नहीं है बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों पर भी हमारी सतर्क निगाह होना चाहिए। जब भी हम रात के समय खुले आकाश की ओर देखते हैं तो अनगिनत तारे हमारी कल्पनाओं को पंख देते हैं, लेकिन इन्हीं तारों और ग्रहों के बीच करोड़ों चट्टानी पिंड भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड कहा जाता है। ये हमारे सौर मंडल के निर्माण के समय बची हुई चट्टानी सामग्री के अवशेष हैं और लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराने माने जाते हैं दोस्तों। तो इससे जुड़ी बातें आगे और करेंगे, आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: साथियों, 30 जून 1908 को रूस के साइबेरिया क्षेत्र के तुंगुस्का में एक विशाल अंतरिक्षीय पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में विस्फोटित हुआ। इस विस्फोट की शक्ति इतनी अधिक थी कि लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले लाखों पेड़ पल भर में धराशायी हो गए। सौभाग्य से वो इलाका आबादी से दूर था, इसलिए जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि ऐसा विस्फोट किसी बड़े शहर के ऊपर होता तो परिणाम कितने भयावह होते। इसी ऐतिहासिक घटना की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2016 में 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस घोषित किया। दोस्तों, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले चट्टानी और धात्विक पिंड है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह घेरे में पाए जाते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा बदलकर पृथ्वी के निकट भी आ जाते हैं। इन्हें नियर अर्थ एस्टेरॉइड कहा जाता है। हालांकि अधिकांश क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से बहुत दूर रहते हैं और किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं करते, लेकिन कुछ बड़े क्षुद्र ग्रह यदि पृथ्वी से टकरा जाएं, तो वे व्यापक विनाश का कारण बन सकते हैं। साथियों, अक्सर लोग क्षुद्र ग्रह उल्का और उल्का पिंड को एक ही मान लेते हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में घूमने वाला चट्टानी पिंड है। जब उसका कोई छोटा भाग पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जलने लगता है तो उसे उल्का कहा जाता है। यदि उसका कोई हिस्सा जलने के बाद भी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाए तब वो उल्का पिंड कहलाता है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रतिदिन हजारों छोटे अंतरिक्षीय कण पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हैं। इनमें से अधिकांश वायुमंडल में जलकर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यदि कोई बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो उसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। इससे भूकंप, सुनामी, बड़े पैमाने पर जंगलों में आग, जलवायु परिवर्तन और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए विश्व की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियाँ ऐसे क्षुद्र ग्रहों की लगातार निगरानी करती हैं और बातचीत को थोड़ा विराम देते हैं और लीजिए सुनिए गुंजन कार्यक्रम का ये अगला गीत, अमित कुमार और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं अनवर सागर ने और धुन तैयार की है राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम है किशन कन्हैया।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: साथियों, आज आधुनिक दूरबीनों, कृत्रिम उपग्रहों और कंप्यूटर तकनीक की सहायता से वैज्ञानिक हजारों क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन कर रहे हैं। उनकी गति, दिशा और भविष्य की कक्षा का सटीक अनुमान लगाया जाता है। वर्ष 2022 में नासा ने डार्ट मिशन के माध्यम से पहली बार एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर एक क्षुद्र ग्रह से टकराया। इसका उद्देश्य ये जानना था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी खतरनाक क्षुद्र ग्रह की दिशा बदली जा सकती है या नहीं। ये मिशन सफल रहा और मानवता की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ। साथियों, हमारा देश भी अंतरिक्ष अनुसंधान में निरंतर नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। इसरो के चंद्रयान, मंगलयान और आदित्य L1 जैसे मिशनों ने पूरी दुनिया में भारत की वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया। भविष्य में भारत भी क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन और ग्रहों की सुरक्षा से जुड़े अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस केवल वैज्ञानिकों का दिवस नहीं है, ये विद्यार्थियों और युवाओं को विज्ञान के प्रति प्रेरित करने का अवसर भी है। दोस्तों, विद्यालयों में इस अवसर पर निबंध, भाषण, विज्ञान प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी और तारामंडल भ्रमण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इससे नई पीढ़ी में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा का विकास होता है। दोस्तों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, ये ब्रह्मांड के विशाल सागर में एक छोटी सी नाव की तरह है। उसकी सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में होने वाली गतिविधियों की समझ और वैज्ञानिक अनुसंधान से भी जुड़ी हुई है। विज्ञान हमें भयभीत नहीं करता, बल्कि चुनौतियों का समाधान खोजने की शक्ति देता है। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में फिल्म जीना तेरी गली में का ये गीत। गीत रविंद्र रावल का है और संगीत है बाबुल बोस का।

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सबे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसान वाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू हो ही।
1: चौपाल।

0: फरमाइश।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और आपके साथ मैं हूं आपका हमराही विजय कुमार। और आज के गुंजन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस पर। महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसी वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा के साथ हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को समझना है और पृथ्वी को सुरक्षित बनाने के प्रयासों में अपना योगदान देना है। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस हमें ये संदेश देता है कि विज्ञान और मानवता का भविष्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अंतरिक्ष के रहस्यों को समझना केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना भी है। इसी संदेश के साथ आइए हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का सम्मान करने का संकल्प लें। और अब हम आपको सुना रहे हैं फिल्म तेजाब का गीत, अनुराधा पौडवाल, अमित कुमार और साथियों के स्वर में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और

0: कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: साथियों, संगीत वह भाषा है जिसे हर दिल समझता है, और जब बात हिंदी फिल्म संगीत की हो तो कुछ नाम ऐसे हैं जो समय के साथ और भी अधिक सम्मानित होते चले जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है कल्याण जी वीर जी शाह का, जिनकी आज जयंती है। साथियों, हर वर्ष 30 जून को मनाई जाती है इनकी जयंती। उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर कल्याण जी आनंद जी की प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी बनाई और हिंदी सिनेमा को ऐसी अनगिनत धुनें दी जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। साथियों, आज के गुंजन कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस महान संगीतकार को, जिसने अपनी सादगी, प्रतिभा और संगीत के प्रति समर्पण से फिल्म जगत में एक अमिट पहचान बनाई। उनकी धुनों में भारतीय लोक संगीत की मिठास थी, शास्त्रीय संगीत की गरिमा और आधुनिक संगीत का आकर्षक स्पर्श भी। साथियों, कल्याण जी वीर जी शाह का जन्म 30 जून 1928 को गुजरात के कच्छ जिले के कुंदरोडी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। परिवार बाद में मुंबई आकर बस गया और आर्थिक परिस्थितियां बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन संगीत के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही स्पष्ट दिखाई देता था। यही प्रेम उन्हें फिल्म संगीत की दुनिया तक ले आया। उन्होंने वाद्य यंत्रों की बारीकियों को समझा और संगीत की नई नई संभावनाओं पर काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और लगन ने जल्द ही उन्हें फिल्म उद्योग में पहचान दिला दी। साथियों, कल्याण जी को पहली बड़ी पहचान वर्ष 1954 की फिल्म नागिन में प्रसिद्ध बीन की धुन तैयार करने से मिली। इस धुन ने पूरे देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दौर में ये संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे वर्षों तक गुनगुनाते रहे। तो आइए हम भी आपको सुनाते हैं यही गीत, और इस गीत के बाद आगे बातें करेंगे। तो लीजिए सुनिए फिल्म नागिन का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत है रवि और कल्याण जी का।

साथियों, कल्याण जी ने आगे चलकर अपने छोटे भाई आनंद जी के साथ मिलकर संगीत निर्देशन शुरू किया। दोनों भाइयों की जोड़ी ने आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिख दिया। 60 और 70 का दशक हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम काल माना जाता है और इस दौर में कल्याण जी आनंद जी की धुनों ने हर वर्ग के श्रोताओं का दिल जीता है। उन्होंने रोमांटिक गीत दिए, देशभक्ति के गीत दिए, भजन दिए, गजलें और जोशीले गीत भी रचे। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें दूसरे संगीतकारों से अलग बनाती थी। उनके संगीत में भारतीय संस्कृति की खुशबू थी। वे धुन बनाते समय गीत के भाव, कहानी और पात्र की मनः स्थिति का विशेष ध्यान रखते थे। शायद यही कारण है कि उनके गीत केवल लोकप्रिय नहीं हुए बल्कि अमर हो गए। इनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दशकों बाद भी इन्हें सुनने पर वही ताजगी और वही भावनाएं महसूस होती हैं। कल्याण जी आनंद जी ने लगभग हर बड़े गायक के साथ काम किया। स्वर समरागी लता मंगेशकर, स्वर कोकिला आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर कुमार, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और हेमलता जैसे महान गायकों ने उनकी धुनों को अपनी आवाज़ से अमर बना दिया। मुकेश और महेंद्र कपूर के साथ उनका विशेष तालमेल देखने को मिला। फिल्म उपकार का मेरे देश की धरती आज भी देशभक्ति का पर्याय माना जाता है। कल्याण जी आनंद जी ने आनंद बख्शी, गुलशन बावरा, इंदिवर, कमर जलालाबादी, वर्मा मलिक और अनजान जैसे श्रेष्ठ गीतकारों के साथ मिलकर अनगिनत यादगार गीत रचे। जब श्रेष्ठ गीतकारों के शब्द और कल्याण जी आनंद जी का संगीत मिलता था तब एक ऐसा गीत जन्म लेता था जो सीधे श्रोताओं के दिल तक पहुंच जाता था। तो दोस्तों, लीजिए सुनिए गुंजन कार्यक्रम का ये अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: साथियों, भारतीय फिल्म संगीत में कल्याण जी के अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान मिले। वर्ष 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई फिल्म पुरस्कारों और संगीत सम्मानों से भी नवाजा गया, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार हमेशा श्रोताओं का प्रेम रहा। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद कल्याण जी अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे मानते थे कि संगीत ईश्वर की देन है और कलाकार केवल उसका माध्यम होता है। शायद यही विनम्रता उनके व्यक्तित्व को और भी महान बनाती थी। साथियों, 30 जून केवल एक महान संगीतकार का जन्मदिन नहीं बल्कि भारतीय संगीत की उस विरासत को याद करने का अवसर है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को सुरों में महका दिया है। कल्याण जी वीर जी शाह ने ये सिद्ध कर दिया कि अच्छा संगीत कभी पुराना नहीं होता, वो पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके अमर गीत संगीत को नमन करते हैं। आइए इस अवसर पर उनकी धुनों को फिर से सुने और गुनगुनाएं और नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, ताकि भारतीय फिल्म संगीत की ये अनमोल विरासत सदैव जीवित रहे। और इसी भावना के साथ लीजिए सुनिए फिल्म डॉन का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में गीतकार हैं अनजान और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: और साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन अब यहीं समाप्त होता है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब हम प्रादेशिक समाचार,
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। प्रदेश के पात्र किसानों को इस वर्ष भी पिछले खरीफ सीजन के बराबर यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार यूरिया का वितरण किया जाएगा। यदि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तो किसानों को एकमुश्त यूरिया दिया जाएगा। वहीं स्टॉक सीमित होने की स्थिति में उपलब्ध मात्रा पहले वितरित की जाएगी और शेष यूरिया बाद में स्टॉक पहुंचते ही संबंधित किसान को उपलब्ध कराया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि डीएपी उर्वरक के वितरण की पूर्व व्यवस्था यथावत लागू रहेगी, जबकि संशोधित निर्देश केवल यूरिया वितरण के लिए प्रभावी होंगे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इससे पहले राज्यपाल श्री डेका ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। यह सूची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडे ने जारी की है। हेमलता चंद्राकर को रायपुर संभाग का प्रभारी और सुषमा खलको को सहप्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार शीतल नायक को दुर्ग संभाग का प्रभारी और वर्षा सिंह को सहप्रभारी, रंजिता रंधावा को बस्तर संभाग का प्रभारी और जानकी कोरसा को सहप्रभारी, फुलेश्वरी पैकरा को बिलासपुर संभाग का प्रभारी और किरण साहू को सहप्रभारी, किरण मरकाम को सरगुजा संभाग का प्रभारी और रजनी तिवारी को सहप्रभारी बनाया गया है। सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के मासूम समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में यह ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया एलटीटी हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ से इस

0: इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज पर गए हुए थे। इनमें से 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और भाजपा महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ धान की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ के धान की बेहतरीन किस्में देश विदेश में विख्यात हैं। धान की हरी भरी फसल जब लहलहाती है तो ऐसा लगता है जैसे छत्तीसगढ़ महतारी ने धानी चुनर ओढ़ ली हो। इसी दिलकश नजारे की वजह से ही तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है धान का कटोरा। हरियाली से भरे पूरे छत्तीसगढ़ में पहले पारंपरिक ढंग से खेती होती थी, लेकिन अब यहाँ के किसान उन्नत तरीके से खेती करने लगे हैं। वैज्ञानिक खेती ने भरपूर उत्पादन के द्वार अवश्य खोले, लेकिन रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी को प्रदूषित कर दिया। कृषि वैज्ञानिकों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और किसानों को नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जैसे असरदार उर्वरकों से परिचित कराया। कम खाद में ज्यादा उत्पादन के इस तरीके को किसानों ने हाथों हाथ लिया और इसे अपनाकर अपनी खेती को भरपूर मुनाफे के सौदे में बदल दिया। इस बारे में कृषि विकास और किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय में कृषि उत्पाद आयुक्त और सचिव सुशील शहला निगार का कहना है,
1: एक उर्वरक जो बहुत महत्वपूर्ण होता है

है किसानों के लिए बेसल डोज के रूप में रूट के ग्रोथ के लिए और शुरुआती में वो डालते हैं, तो उसका वो है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। पर यूरिया के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो तीन चरणों में किसान यूज करते हैं, शुरू में भी करते हैं, फिर बीच में कुछ समय बाद करते हैं धान की बोनी के, किंतु डीएपी का उपयोग शुरू में ही करते हैं। डीएपी हमारे पास 35-36% है सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को मिला करके, तो डीएपी के विकल्प के रूप में एक हम नैनो डीएपी को ले रहे हैं जो तरल फॉर्म में रहता है। ये जो हम जिस खाद की बात करते हैं वो ग्रैन्युलर फॉर्म में रहता है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो। नैनो डीएपी जो है या नैनो यूरिया, वो जो है उसकी एफिशिएंसी अधिक होती है और इसका 500 लीटर एक बैग को रिप्लेस करता है। विगत वर्ष भी कुछ उठाव हुआ था और इस वर्ष हम लोग बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नैनो डीएपी का उपयोग करें ताकि वो जो ग्रैन्युलर फॉर्म में जो कमी है उसका प्रतिस्थापन किया जा सके। सो इस तरीके से हम लोगों ने जिलेवार एक रणनीति बनाई है कि जहां पर जितना भंडारण है और जो जिले की कंजम्पशन है उसको प्रतिस्थापित किया जाए इन खादों से। इसके अतिरिक्त हम लोग बायो फर्टिलाइजर को भी प्रमोट कर रहे हैं। ये चुनौती एक अवसर के रूप में भी सामने है, जो सस्टेनेबल कृषि की हम लोग बात करते हैं या भारत सरकार के द्वारा प्राकृतिक खेती मिशन चल रहा है और पूर्व से ही हमारे राज्य में जैविक खेती मिशन भी चल रहा है राज्य पोषित योजना के रूप में। तो जो प्राकृतिक खेती मिशन है वो बिल्कुल परंपरागत पद्धति है और उसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। इन सारी चीजों को भी हमने क्लस्टर के फॉर्म में राज्य ने लिया हुआ है विगत वर्ष से। तो इस चुनौती को हमने किसानों से ये अपील की है कि हम इसको एक अवसर की तरह देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो मिट्टी है इतनी उपजाऊ है, इतना बेहतर यहाँ का क्लाइमेट है, तो हम क्यों ना सस्टेनेबल कृषि की ओर जाते हुए बायो फर्टिलाइजर का यूज करें और जो प्राकृतिक पद्धतियां हैं परंपरागत उनका भी उपयोग करें।

0: नैनो यूरिया और नैनो डीएपी इफको द्वारा विकसित एक तरल उर्वरक हैं। ये किसानों के लिए एक सौगात भी हैं। पारंपरिक खाद यानी यूरिया और डीएपी के प्रभावी विकल्प के रूप में इससे किसानों को खाद के भारी भरकम बोरों से छुटकारा मिला है और अब वे छोटी छोटी बोतलों में बंद पोषक तत्वों के चमत्कार से खूब खुश हो रहे हैं। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी को लाना, रखना और इस्तेमाल करना अब बेहद आसान जो हो गया है। नैनो डीएपी के इस्तेमाल के बारे में ग्राम पटेवा के किसान मोहन साहू ने बताया।
1: और अभी फिर डलवाया हूँ, अभी पीठ वाले स्प्रे में डलवा, लेकिन दोनों में भी बराबर सेम टू सेम है, मतलब चना में बहुत ज्यादा ग्रोथ है भी। तो नैनो डीपी से मतलब बहुत ज्यादा फायदा मिला था। और पर साल जैसे मैं पता है ना करण भाव, जैसे बूट वाला चना है मोर, तो मोर चना पहली बिके मार्केट में, तो ये मोर चना 25 रुपए किलो बिके, सामने वाला के 20 रुपए, मतलब ए अंतर इसे, मतलब ऐसे फायदा इसे एक सत्य मैं कहा था कि मोर अनुभव के हिसाब से हर किसान मतलब नैनो डीपी नैनो यूरिया अपनाना चाहिए।

0: दरअसल नैनो यूरिया के तरल नाइट्रोजन उर्वरक हैं। ये पौधों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है और पत्तियों को बढ़ने में मदद करता है। पौधों के लिए पारंपरिक यूरिया सिर्फ 30-50% तक ही उपयोगी होता है, जबकि नैनो यूरिया पौधों को 80% तक पोषण देते हैं। इसकी 500 मिलीलीटर की एक बोतल दानेदार यूरिया के एक 45 किलोग्राम के बोरे के बराबर होती है। यही वजह है कि पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में नैनो उत्पाद काफी किफायती हैं। इफ्को के उप महाप्रबंधक श्री दिनेश गांधी इस विषय में और जानकारी दे रहे हैं।
1: नैनो उर्वरक जो है वो अभी आज के खेती की नई तकनीक है, जिसमें हम नैनो तकनीक का इस्तेमाल करके जो हमारे दानेदार खाद है, जैसे यूरिया है, डीएपी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम उसकी जो दक्षता है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे जो एक यूरिया का दाना है वो 1-2 मिलीमीटर का होता है, उसको हम नैनो तकनीक से 55,000 टुकड़ों में तोड़ते हैं और उसका जो एक टुकड़ा है वो एक नैनो का कण होता है जो कि 50-100 नैनोमीटर का होता है, जिसका और इसकी जो क्षमता है वो 10 इसकी जो सतही क्षेत्रफल है वो 10,000 गुना अधिक होता है। तो इससे उसकी जो कार्य दक्षता है वो बढ़ जाती है। फिर ये नैनो पार्टिकल्स जब हम पौधे के ऊपर छिड़काव करते हैं तो पत्ती के माध्यम से उसमें जो स्टोमेटा होता है उससे पौधे के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां जाके वो अपना काम चालू करता है, चाहे वो नाइट्रोजन के कण हो या फास्फोरस के कण हो। तो ये जब पौधे के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे पौधे अपनी जरूरत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं और बाकी का जो नैनो जो उर्वरक है वो पौधे के अंदर रहता है, तो ये अपनी आवश्यकता के अनुसार से पौधे इसका इस्तेमाल कर पाते हैं और इसकी जो उपयोग दक्षता है वो 90% से अधिक होती है। जबकि जो दानेदार खाद है उसका दानेदार यूरिया का 25-30% हिस्सा ही पौधा उपयोग करता है तथा दानेदार डीएपी का 30-35% ही पौधा इस्तेमाल करता है, बाकी जो है या तो जमीन में पड़ा रहता है या पानी या हवा के साथ में वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से नैनो यूरिया के इस्तेमाल से हम न सिर्फ हमारी जमीन को, पानी को और हवा को सुरक्षित करते हैं बल्कि हम अपने स्वास्थ्य को भी सुरक्षित करते हैं। इसके अलावा ये जो नैनो उर्वरक है इसकी कीमतें जो हैं वो दानेदार उर्वरक से काफी कम है, किसानों के लागत में भी, खेती की लागत में कमी आती है। इसके अलावा सरकार जो रासायनिक उर्वरकों के ऊपर भारी भरकम अनुदान देती है वो भी इसमें बचत होती है सरकार की। इसका छिड़काव करना काफी आसान है, किसान भाई अगर कोई कीटनाशक दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ भी मिला के इसका छिड़काव कर सकते हैं, अलग से उनको लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा इफ्को जो है वो ड्रोन भी किसान भाइयों को उपलब्ध करवा रही है, जिसमें 10 लीटर पानी की जरूरत होती है एक एकड़ के लिए और 5-7 मिनट में वो जो आधा लीटर नैनो उर्वरक है उसका घोल बना के हम 5-7 मिनट में एक एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं। तो काफी आसान है और इफ्को जो है इसको 300 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को चार्ज करती है उसको इस्तेमाल करने के लिए। इसके अलावा जो है नैनो उर्वरक जो है अब आगे श्रृंखला के रूप में नैनो जिंक और नैनो कापर भी इफ्को लेके आई है, जिसको हम खेती में बेहतरी के लिए और अपनी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो रासायनिक उर्वरक है उसका बेहतर विकल्प के रूप में आया है और इसकी मात्रा को हम, इसके उपयोग से रासायनिक खाद की मात्रा को हम कम कर सकते हैं। तो ये आज के युग का खाद है, इसका एक किसानों के लिए वरदान के रूप में आया है, क्योंकि अब जब रासायनिक खाद की हमको कमी हो पड़ी है, विदेशों से आयात कम हो पा रही है, उपलब्धता इसकी कम हो गई है, तो ऐसे में अगर हम नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी खेती को बचा सकते हैं, हम अपने फसल की गुणवत्ता को बचा सकते हैं, हम अपनी लागत को बचा सकते हैं और

0: हम खेती को और बेहतर की ओर ले जा सकते हैं। नैनो डीएपी जो है उसको हम बीज उपचार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो बीज के ऊपर जो आवरण होता है उसके माध्यम से वो नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस कण है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब बीज उसमें अंकुरण होता है और उसमें जब जड़े बननी चालू होती है तो ये नैनो फास्फोरस कण उसी समय पौधे को प्राप्त होते हैं, उसकी जड़ों में पहुंच जाते हैं, तो उससे उसके जड़ के बढ़वार में मदद मिलती है, उसकी संख्या अधिक बढ़ती है और पौधा मजबूत बनता है। तो ये एक तरीके से ये नैनो उर्वरक जो है वो उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसकी कंसे बढ़ाने में और उसकी उपज को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे अभी नैनो उर्वरक की बात हो रही इनकी लागत को लेके, तो ये जो नैनो उर्वरक है वास्तव में देखें अगर हम तो दानेदार जो उर्वरक हम लोग विदेशों से आयात करते हैं तो इसकी कीमतें जो है हमको डॉलर में देनी होती है, जो इसके जो भुगतान होते हैं, और इसकी कीमत जो होती है वो एक बोरी की अगर यूरिया की बात करें तो इसकी कीमत आज के समय में 5,000 रुपए तक है, जबकि किसान भाइयों से सरकार जो है 267.50 रुपए ही चार्ज करती है, तो बाकी का जो राशि है वो भारत सरकार अनुदान के रूप में देती है। उसी तरीके से अगर हम डीएपी की बात करें तो एक बोरी डीएपी जो 50 किलो का होता है वो भी आज 5,000 से 6,000 रुपए उसकी लागत हो गई है, तो किसानों से 1,350 रुपए सरकार लेती है, बाकी उसको अनुदान के रूप में देती है। तो इस तरीके से 2,00,00,000 करोड़ रुपए सालाना जो है भारत सरकार रासायनिक उर्वरक के अनुदान के रूप में खर्च करती है, जबकि जो नैनो उर्वरक है उसी के बेहतर विकल्प के रूप में है। इसकी जो कीमतें हैं वो दानेदार खाद से भी कम है, जो नैनो यूरिया है आधा लीटर का बॉटल है वो उसकी एक एकड़ के लिए पर्याप्त है, उसकी कीमत मात्र 225 रुपए है, जबकि नैनो डीएपी जो है उसके आधा लीटर की बॉटल जो एक एकड़ के लिए पर्याप्त है उसकी कीमत 600 रुपए है, जबकि इसके ऊपर भारत सरकार कोई अनुदान नहीं देता है, ये बिल्कुल अनुदान रहित है और सीधे किसानों को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से न सिर्फ किसान के स्तर पर इसकी लागतें कम है बल्कि भारत सरकार के ऊपर भी कोई बोझ नहीं पड़ता है, तो ये एकदम खेती के लिए बहुत ही लाभकारी उत्पाद है।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: एक तरल फास्फोरस और नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जिसे इफको ने विशेष रूप से पौधों की जड़ों के विकास और मजबूती के लिए तैयार किया है। ये फसल को शुरुआती दिनों में अच्छा पोषण प्रदान करता है जिससे पौधे मजबूत होते हैं और उनकी शाखाओं में अच्छे दाने भरते हैं। नैनो डीएपी की 500 मिलीलीटर की एक बोतल पारंपरिक डीएपी के 50 किलोग्राम बोरे के बराबर काम करती है। इसका मतलब किसान भाई परिवहन, भंडारण और छिड़काव के कई झंझटों से मुक्त हो जाते हैं।
1: मोर नाम ताराचंद साहू है। मैं ग्राम सोनेसिली के किसान हूँ और पिछले पूर्वज मन जैसे करत रहे वैसन खेती महू करत रहे हम, लेकिन पिछले साल से मुला अपन खुद के अनुभव कि मोर धान हाँ 5 एकड़ में बोरे हम मर गए। गांव के हैंडपंप जवाब दे दिस कि पानी के बहुत बिकराल समस्या हुई। वो स्थिति में ये निर्मित हुई कि भविष्य में सोचो कि अगर हम तो आज पानी के मतलब उपलब्ध है, हमार आने वाला भविष्य जो हमारे छोटे बच्चे है ओकर मन के बिना पानी के भविष्य कैसे नहीं। तो ये में ना मैं अभी चना लगा हूँ। चना में नैनो डीएपी के पहली उपयोग करे मैं ओकर पहली नैनो डीपी का हर मोल मालूम ही नहीं रही। 80% आदमी धान निभो है, दलहनी तिलहनी के उपयोग करे है और फसल है बहुत बढ़िया।

0: नैनो उर्वरकों के आसान इस्तेमाल की सलाह के लिए कृषि वैज्ञानिक हमेशा तैयार रहते हैं। बस किसानों को उन्हें ये बताना होता है कि वे कौन सी फसल ले रहे हैं। साथ ही ये जानना भी आवश्यक होता है कि किसान इनका उपयोग बुवाई के समय करना चाहते हैं या खड़ी फसल पर। आजकल छत्तीसगढ़ के किसान परिवर्तित फसलें भी ले रहे हैं, इसलिए दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी नैनो उर्वरकों की सही मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है। कृषि वैज्ञानिक RS राठौर कहते हैं,
1: ये जो नैनो तरल खाद आए हैं, मतलब नैनो तरल DAP और नैनो तरल यूरिया, ये तो नई तकनीक अभी तक की जो है, नैनो तकनीक जिसका कि हम विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है इसका, कि इसका आकार छोटा होता है लेकिन क्षमता ज्यादा होती है। तो उसी पद्धति पर या उसी तकनीक के अनुसार ये बनाया गया है नैनो तरल DAP। मैं देखने में तो मात्र आधा लीटर की बोतल, 500 ml की बोतल एक बोरी के लगभग बराबर काम करती है। तो ये इसमें अंतर है। वैसे ही यूरिया की भी 500 ml की बोतल आती है कि यूरिया का काम करती है। जिस प्रकार से यूरिया से नाइट्रोजन मिलता है, उसी प्रकार से इसे तरल यूरिया या नैनो यूरिया से भी नाइट्रोजन मिलता है, लेकिन नैनो फॉर्म में मिलता है, जिसकी वजह से इसकी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दानेदार खाद भी उपयोगी है और तरल भी उपयोगी है। दोनों के अलग अलग अंतर है कि हम जो दानेदार खाद का उपयोग करते हैं वो पौधों को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जमीन के माध्यम से करते हैं, कि हम या तो बोते समय जमीन में खाद देते हैं दानेदार DAP या NPK या सुपर फास्फेट जो भी खाद आते हैं उनको देते हैं, या हम बाद में खड़ी फसल में यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन की पूर्ति खड़ी फसल में वो भी जमीन के माध्यम से करते हैं। लेकिन जो नैनो के तरल खाद हैं वो नैनो तकनीक हमारे पौधों पर पत्तियों के ऊपर छिड़काव के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं, और वो पत्तियों के माध्यम से जो पोषक तत्व तो इसके माध्यम से मिलते हैं वो पत्तियों के माध्यम से घोल में अवशोषित करती हैं पत्तियां, और वो पौधों को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर में उनके में पौधों में प्रवाहित होते हैं, जिससे उनकी पोषक तत्वों की पूर्ति होती। तो दोनों की कार्य पद्धति में अंतर है। एक समय वो था जब हमारे किसान भाई DAP NPK इन खादों का बहुत कम मात्रा में उपयोग करते थे, लेकिन चूंकि हमारे देश की आवश्यकता, समझें कि जब हम विदेशों से अन्न आयात किया जाता था तब हम लोगों का पेट भरती थी सरकार, तो धीरे धीरे उसमें खाद की एक प्रमुख भूमिका रही है उत्पादन बढ़ाने में। तो जब किसान भाइयों को हमारे को ये समझ में आया कि खाद डालने से उत्पादन बढ़ सकता है, तो धीरे धीरे वो डालते डालते अब वो एक सीमा रेखा से कहीं ज्यादा खाद का उपयोग करने लगे हैं। तो अंतर ये है कि दोनों में कि खाद जो बोरी वाला खाद या दानेदार खाद आता है, वास्तविकता ये है कि हमारे देश की जितनी खपत है प्रतिवर्ष की वो हमारे देश में उसका उत्पादन उतना नहीं है। तो आज अगर हम यूरिया की बात करें तो लगभग 30-35% यूरिया हमारे पूरे देश की प्रतिवर्ष की खपत का विदेशों से आयात होता है, और अगर हम DAP की बात करें तो लगभग 60-65% हिस्सा जो है खपत का वो भी विदेशों से आयात, हम विदेशों के ऊपर निर्भर है। ये इनका अंतर। अगर हम बात करें अगर उर्वरक की, तो जो नैनो खाद है वो नवीनतम तकनीक है, दानेदार खाद है वो पुरानी पारंपरिक तकनीक चली आ रही है, उसमें कार्य क्षमता कम होती है, नैनो की ज्यादा होती है। अगर हम बात करें रखने की या उसको लाने ले जाने की, तो किसान भाइयों के लिए बहुत आसान है, एक तरफ आधा लीटर की बोतल और एक तरफ 50 किलो की बोरी, तो उसको वजन भी ज्यादा है, जगह भी ज्यादा चाहिए, गाड़ियों से ट्रकों में मालगाड़ियों में जो भर के आता है उसकी बहुत कम आवश्यकता होगी, और इसके साथ साथ हमारी भारत सरकार जो है इस पे अनुदान भी देती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस अनुदान वाली मतलब बोरी को उपयोग करके और हमारे ही जल मिट्टी और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। तो सरकार की सोच ये है कि हमारी भविष्य के लिए हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहे, हमारा पानी भी सुरक्षित रहे, जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहे और हमारे किसानों को समय पे और उचित मूल्य पे खाद मिल सके। अभी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में धान प्रमुख फसल है और अभी धान की बुवाई अथवा रोपाई का काम चल रहा है। कुछ लोग सीधे धान की बुवाई करते हैं, कुछ लोग उसकी नर्सरी बना के उसकी रोपाई करते हैं। तो जहां हम

सीधे बीज की बुवाई करते हैं उसमें 1 किलो बीज पर नैनो डीएपी की 5 मिलीलीटर मात्रा, मतलब 1 क्विंटल बीज अगर है तो उसको शोधन किया जाना है, बीज उपचार किया जाना है, उसके लिए 1 क्विंटल बीज को उपचारित करने के लिए 0.5 लीटर की एक बोतल पर्याप्त होती है। 1 किलो बीज के लिए 5 ml और 5 किलो बीज के लिए बोतल जो आती है उसका ढक्कन 25 ml का रहता है। किसान भाई साधारण भाषा में उससे भी समझते हैं कि 5 किलो बीज पर एक ढक्कन भर के नैनो डीएपी डालना है और उसको बीज में मिलाना है। अगर आवश्यकता पड़े तो उसमें थोड़ा बहुत पानी भी आवश्यकता अनुसार मिला के नैनो डीएपी में, फिर उसका छिड़काव बीज के ऊपर करके और उसको थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो डीएपी, नैनो डीएपी का जो घोल है वो बीज के अंदर समाहित हो जाता है और फिर उसकी बुवाई कर दी जाती है।

0: यूरिया और नैनो डीएपी कृषि के क्षेत्र में नवाचार की नई पहचान बन रहे हैं। बेहतर पोषण, दक्षता, कम लागत, आसान उपयोग और पर्यावरणीय संतुलन के साथ ये आधुनिक उर्वरक खेती अधिक उत्पादक, लाभकारी और टिकाऊ बना रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को धान सहित विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विकास खंड और ग्राम स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इफको के उप महाप्रबंधक श्री राजेश कुमार गोले कहते हैं,
1: नैनो फर्टिलाइजर की दुनिया में एक नया क्रांतिकारी कदम है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि जो दानेदार खाद हम डाल रहे हैं उसकी उपयोग क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है। हम जितना डालते हैं उसका मात्र 40% यूरिया उपयोग होता है, 60% खेत में पड़ा रहता है। इसी प्रकार से डीएपी और दूसरे खाद भी 25% उपयोग हो पाते हैं कि पौधों के द्वारा, बाकी खेत में पड़े रहते हैं। इसलिए आपने देखा हो खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है, सभी ने अनुभव किया खेत की मिट्टी कड़क होती जा रही है। खेत में जो लाभदायक जीवाणु थे, केचुए थे और दूसरी जीवाणु थे, वो कम होते जा रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए, अच्छा जो ये पड़ा हुआ खाद है, ये आप देख रहे हैं बोतल में, आज हम पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि ये सब खाद जो है नाइट्रेट के रूप में पानी में जाके मिल रहा है, नालों में, ट्यूबवेल में, और उसके कारण आप देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है या डायबिटीज हो रही है, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं। 40% उपयोग होता है और 60% जो है पॉल्यूशन कर रहा है। उस पॉल्यूशन से निपटने के लिए हमको पैदावार भी नहीं घटाना है और पॉल्यूशन से हमको निपटना है, बचना है। के लिए जो नैनो उर्वरक है ये सीधे पत्तियों पे उपयोग होता है, और पत्तियों पे उपयोग होने से क्या होता है कि जमीन में नहीं जाता है। जब जमीन में नहीं जाता है तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जीरो है। तो ये किसान भाई कोई भी फसल जो 35 से 40 दिन की हो जाती है, चाहे वो धान हो, मक्का हो, गेहूं हो या दूसरी जो भी साग भाजी है, जब पर्याप्त पत्ती आ जाती है तो इसको आप 5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर, या मोटी भाषा में कहें एक टंकी जो 15 लीटर की, 2.5 ढक्कन नैनो यूरिया मिलाकर उस पे स्प्रे कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के किसान आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए बेहद उत्साहित हैं। आज किसान समझ चुके हैं कि बिना किसी नुकसान के नैनो उर्वरकों को अपनाकर वे अपनी उपज का अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यही कारण है कि प्रदेश के किसान अपनी फसलों के लिए अब नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का चुनाव करते हैं। इसका फायदा ये हो रहा है कि दानेदार खाद से प्रदूषित हुई मिट्टी अब उपजाऊ हो रही है और साथ ही किसानों की झोलियां भी धन धान्य से भर रही है। और ये सब हो रहा है किसानों के प्रति सरकार के समर्पण के कारण। इसीलिए तो परस्पर आस्था और विश्वास लेकर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है उजाले की

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, यह आकाशवाणी का रायपुर और सराय।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब हम आपको बता दें मौसम की जानकारी। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान वर्षा 13.7 मिलीमीटर मापी गई। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें हमारे आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। कार्यक्रम विवरण में

अब से कुछ ही देर में आप सुनिएगा नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। सुबह 11:05 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण समय होगा। दिन में 12 बजे आप सुनिएगा NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। दिन में 12:30 पर कार्यक्रम चयन का प्रसारण किया जाएगा। दिन में 1:05 पर कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे। दिन में 1:10 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन में आप सुनेंगे क्रम बातचीत, समसामयिक सूचनाओं पर आधारित क्रम आईना और क्रम घर आंगन मेल। दिन में 1:40 पर और रात 10 बजे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण किया जाएगा। दोपहर 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण समय होगा। हमारी तीसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपको सुनाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनिएगा शाम 5:05 पर। शाम 5:30 पर युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी में युवा साथी सुनेंगे क्रम युवा सोच और क्रम युवा कलाकार। शाम 6:05 पर कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर लोक गीतों के कार्यक्रम गोधुली में हम आपको सुनाएंगे अमृत मिंज और साथी और तिलन साहित्यिका और साथियों के स्वर में सादरी लोक गीत। शाम 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी में सुनिएगा कुछ फिल्म संगीत। शाम 7:05 पर आप सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोता और किसान भाई सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल, इसमें आज सुनिएगा सामयिक चर्चा। शाम 7:30 पर सुनिएगा क्रम हेलो किसानवाड़ी, मंडी भाव, मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात 8 बजे

सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश का प्रसारण समय होगा। रात 9:15 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सुनिएगा चंद फिल्मी गीत। रात 9:30 पर कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन का प्रसारण किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे आज के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम। अब लीजिए सुनिए नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए देवांजलि बी जोशी के स्वर में। फिल्म का नाम है छिपकली। गीतकार हैं सोहम मजुमदार और संगीत है मीमो का।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगा तो ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे बरधा मान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं
0: हाँ?
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: तहाँ
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे साझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल की

0: प्राणवाणी तेला सुन के
1: हो
0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही ये तो महू तो सुनु भाई एदे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसानवाड़ी ला रोज 7:30 ले 8 कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि एदे FM में भी 100.2 MHz में भी एला एदे सुन सकत है।
1: हाँ, अभी तो शुरू है कि साहे।
0: हाँ, तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

अमाल मलिक, तुलसी कुमार और यश नारायण के स्वर में अब लीजिए सुनिए फिल्म नूर का गीत। गीत लिखा है कुमार ने और संगीत है अमाल मलिक का।

अब लीजिए सुनिए फिल्म मूसा का गीत, इलियास की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं बाबुल ने और संगीत है इलियास का।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।
2: फिल्म लम्हा का गीत अब लीजिए सुनिए क्षितिज तारे केसवर में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। अब लीजिए सुनिए फिल्म बादशाहों का गीत, मीका सिंह और नीति मोहन की आवाज़ में। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीत है अंकित तिवारी का।

0: आज का नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। अब हम हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश और विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद श्री चौहान पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी संघर्ष विराम के बाद हो रही है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हू चांद भैरव और

जहानों के बलिदान का स्मरण कर किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हूल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मोरक्को, ब्राजील और पराग्वे फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मोरक्को ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आज ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त शबनम।

बोल थे संगीत दिया था नौशाद ने, और इस गीत के लिए फरमाइशें मिली आप सभी से। गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, सुरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नामल, अनिता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश, कमल सेतपाल, भूमिका सुशीला, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव, शाइना और निवान शर्मा, वरुड़ जौलका से महेंद्र, विनया और मिलिंद, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता गवाणकर, नागपुर से शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गवाणकर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से, और हम कार्यक्रम के दौरान हमेशा आपसे कहते हैं कि जो भी श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हों या आज उन्हें ये कार्यक्रम सुनने का मौका मिला हो, तो वो परेशान ना हो कि वे किस तरह अपनी फरमाइशें हम तक भेजेंगे। आपको कागज़ और कलम तैयार रखना है, क्योंकि कार्यक्रम के ही दौरान कार्यक्रम का पता भी हम ज़रूर बताते हैं। तो जुड़े रहिए आकाशवाणी अंबिकापुर से, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: के शब्द थे, संगीत दिया था सलील चौधरी ने, और इस गीत के लिए हम तक फरमाइशें लिख भेजी हैं आप सभी श्रोताओं ने। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आप हैं, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला, आशुतोष और इनके परिवार के सभी सदस्य, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, शोएब खान, मुस्तबा, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। श्रोताओं, जैसा कि हमने इस गीत से पहले आपको ये कहा था कि आप कागज़ और कलम तैयार रखकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के ही दौरान कार्यक्रम का पता भी हम ज़रूर बताते हैं। तो नोट कर लीजिए हमारे इस कार्यक्रम यानी आपकी पसंद का पता। आपको हम तक अपनी फरमाइशें पोस्ट कार्ड के ज़रिए भेजनी है। इसके लिए आपको लेना होगा एक पोस्ट कार्ड और उस पर सबसे पहले लिखना होगा कार्यक्रम का नाम, आपकी पसंद, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी अंबिकापुर, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, पिन है 497001। तो आपको जल्द से जल्द अपनी फरमाइशें हम तक इस पते पर पोस्ट कार्ड पर लिखकर रवाना कर देना है और सुनते रहना है आकाशवाणी अंबिकापुर। और आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई, यानी 230-600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 07774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आप आए बहार आई से ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम आपकी पसंद में अब आप सुनेंगे आनंद बख्शी की शब्द रचना एक बार फिर। संगीत है आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम सीता और गीता, आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की, और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले, नयनदास, शीला दीवान, ओम प्रकाश, रुक्मणी, जयप्रकाश, प्रीति दीवान, सिद्धांत, शौर्य और कुमारी सानवी, संगपुरा परिवार, आप हैं कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता नेभवानी, आकाश नेभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता सागर, आयुषी, हनी और परिवार के सभी सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्य, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा।
1: अरे

0: चौपाल में नवा कार्यक्रम शुरू हुई सवे रविवार संझा के ठीक 7:30 बजे से।
1: हाँ, फरमाइशी कार्यक्रम हवे, संगी अपन फरमाइश भेजी और हमन गीत बजाबो।
0: कौन सा गीत?
2: सुघर गीत जैसे ए
3: तोरे खोपा मा चंदनी गोंदा।

0: बस हमर कार्यक्रम में मेल करी किसानवाणी अंबिकापुर 2026@gmail.com। जुलाई के पहला रविवार से कार्यक्रम शुरू होही।
1: चौपाल फरमाइश।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर से फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म शर्मीली से ये गीत। नीरज की शब्द रचना थी, संगीत दिया था SD बर्मन ने। एक बार फिर सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़। साहिर के बोल हैं, संगीत RD बर्मन का और फिल्म का नाम है आ गले लग जा। इन दोनों ही गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार, शीला, गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू और इनके परिवार के सभी सदस्य। अमरपुर पिंडरा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और लवी श्रीवास्तव। पुणे से पंकज वाडोदे, आर्या, प्रियंका, BT वाडोदे, चंद्रप्रभा वाडोदे।

ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। चांदुर बिस्वा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी, गणेश, कार्तिक, देविका कुमारी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी और खुशी वाणी।

फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे फिल्म फर्ज से ये गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की। इस गीत के लिए जो फरमाइशें हम तक आई हैं वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए ये प्यारा सा गीत।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म फ़र्ज़ में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद में अब आप सुनेंगे साहिर का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया फिल्म हमराज से ये गीत। आवाज़ है महेंद्र कपूर की और इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश कुछ इस तरह है। बेरेड़ी से हुकुम करमकर, सुनीता, हार्दिक प्राची और तान्या करमकर, इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल ज़मीर, मोहम्मद अलीम, आतिफ नईम राजा, गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद बजाज, बिट्टा बजाज और इनका पूरा परिवार, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, लेवई से गुलाबदास, देवरी से के आर साहू, दतरंगी से भागवत वर्मा, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल, प्रेमनगर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का और मनोज यादव, वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री।

महेंद्र कपूर के गाए फिल्म हमराज के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं प्रादेशिक समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी रायपुर से रिले।

तीन माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले में रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कल रायपुर के पास सोनपैरी में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे अधिक से अधिक उपभोक्ता सरचार्ज माफी और आकर्षक प्रावधानों का लाभ लेकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान कर सकेंगे। सरगुजा जिले के रामगढ़ में चल रहे 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कल इस महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अग्रवाल ने रामगढ़ महोत्सव के 50 साल पूरे होने पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रामगढ़ केवल सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सरगुजा और रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वे मुख्यमंत्री निवास में खेल और युवा कल्याण विभाग की बैठक लेंगे। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित झिरमिटी स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। दोपहर वे रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे खरसिया रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। प्रदेश में कल से सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है। कल रायपुर में इसका शुभारंभ सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सहकारिता आंदोलन के जनक पंडित वामन राव बलिराम लाखे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस अवसर पर श्री कश्यप ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को गांव गांव तक सशक्त किया जा रहा है और किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा रेलवे स्टेशन के पास स्थित ओवरब्रिज पर 2 मोटरसाइकिल की हुई टक्कर में सड़क पर गिरा एक युवक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक वाहन समेत फरार हो गया। वहीं राजधानी रायपुर में ट्रैक्टरों से लदा ट्रेलर पलट गया, जिससे दुर्ग रायपुर मार्ग बाधित हो गया है। यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए राहगीरों को एम्स महोबा बाजार मार्ग से वैकल्पिक रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य सचिव से पहचान होने का झांसा देकर नौकरी लगाने का दावा करती थी। आरोपी महिला ने 7 लोगों से 25 लाख रुपए से अधिक की राशि की ठगी की है। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बिक्री और वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को 1 जुलाई से हटाने का फैसला लिया। बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि 3 माह के लिए बढ़ाई जाएगी और मुख्यमंत्री आज सरगुजा जिले के रामगढ़ महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: आंगन का पेड़ घर की शान, देता है छाया, सुख और सम्मान।
1: बहुत सुंदर था आपका सुविचार, बहुत ही शानदार। आप सबको हमारा बहुत बहुत आभार। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर, राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फगुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: संजय मार्केंडे जी ने लिखा है, गुजरे सप्ताह हमने सुना दोस्त की पहचान, गौरा देवी और पहली उड़ान, ये भी जानिए मैं लाहौल स्पीति का शीत मरुस्थल। सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगे। सभी उमंग कार्यक्रम के परिवार को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं हम।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
1: और ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। इस मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ढेर सारी जानकारियाँ,
2: इतिहास की, भूगोल की, साहित्य और विज्ञान के साथ साथ और भी अनेकानेक जानकारियाँ। तो अजीत जी, सप्ताह हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनका उपयोग हम अपने जीवन में तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में जानते बहुत कम हैं।
2: ऐसी कौन सी चीजें हैं भला?
1: विमलेश जी, वो चीजें हैं हमारे खनिज पदार्थ।
2: जी,
1: जरा सोचिए तो, क्या उनके बिना हमारा जीवन आसानी से चल पाता?
2: जी सचमुच, कोयला, लोहा, तांबा जैसे पदार्थों के बिना तो सचमुच हमारा जीवन ही कठिन हो जाए। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे कुछ खनिज पदार्थों की। लेकिन अजीत जी, पहले ये तो जान लें कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं।
1: जी, ये तो हमें जानना ही चाहिए। देखिए, खनिज शब्द संस्कृत के खनि शब्द से निकला है।
2: जी।
1: जिसका अर्थ है धरती या धरती के भीतर का भंडार। इसी शब्द से खान या बोलचाल की भाषा में खदान निकला है।
2: जी श्रोताओ, खनिज को सरल शब्दों में यदि परिभाषित करें तो कहेंगे प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह या अंदर से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना और भौतिक गुण होते हैं, वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें खोद कर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं।
1: जी, तो विमलेश जी, ये तो हुई खनिज की बात। अब ये तो बताइए कि आज हम किस खनिज की बात करने जा रहे हैं?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे कोयले की। ये बहुत जरूरी खनिजों में गिना जाता है। मानव सभ्यता के विकास में कोयले का बहुत महत्व रहा है। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत रहा है। अनेक ताप संयंत्रों में बिजली उत्पादन के लिए इसका उपयोग होता रहा है। ये बहुत सारे उद्योगों का आधार है।
1: जी, हम इसे अर्थव्यवस्था का आधार भी कह सकते हैं। ये सब कुछ तो हम जानते हैं, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि कोयला बनता कैसे है।
2: अजीत जी, एक बेहद रोचक बात मैं साझा करना चाहती हूँ।
1: जी जी।
2: वो ये है कि आज जिस कोयले को हम जलाते हैं, वो वास्तव में करोड़ों वर्ष पहले के जंगलों और पौधों का परिवर्तित रूप है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो कोयले में प्राचीन वनस्पतियों और प्राचीन सूर्य की ऊर्जा छिपी हुई है। यानी कोयले में ऊष्मा सूर्य से आई है।
1: जी, ये तो बड़ी रोचक बात आपने बताई, लेकिन ऐसा कैसे, जरा इस बात को विस्तार तो दीजिए, हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे।
2: जी श्रोताओ, आइए आपको ले चलें आज से लगभग 40 करोड़ वर्ष पहले। हिमयुग के बाद धरती का तापमान बढ़ा और पेड़ पौधे उगने लगे। तब तक डायनासोर भी पृथ्वी पर नहीं थे। चारों ओर जंगल ही जंगल थे, दलदली भूमि, विभिन्न प्रकार के फर्न और घने पेड़ पौधे फैले हुए थे।
1: जी श्रोताओ, भूगर्भीय गतिविधियों और टेक्टोनिक प्लेट के सरकने के कारण बहुत भूकंप भी आते थे उन दिनों। भूकंप के कारण विशाल जंगल भूमि के नीचे दब गए।
2: जी।
1: वे कालांतर में मिट्टी और रेत के नीचे लगातार दबते चले गए, इतने नीचे कि मिट्टी ने उन्हें हवा से अलग कर दिया।

0: जिसके कारण वे सड़ नहीं पाए, इसलिए उनमें सूर्य की अवशोषित ऊर्जा बनी रही।
1: समय बीतता गया, ऊपर मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती रहीं, नीचे दबे जंगलों और पौधों पर अत्यधिक दबाव और ताप पड़ने लगा। कालांतर में उनका रूप बदलने लगा और उन वनस्पतियों ने कोयले का रूप धारण कर लिया।
0: जी विमलेश जी, इसीलिए वैज्ञानिक कोयले को दफनाया हुआ जंगल यानी बैरिड फॉरेस्ट भी कहते हैं। श्रोताओं, दरअसल आपके हाथ में जो कोयले का टुकड़ा है वो करोड़ों वर्ष पहले पुराने प्राचीन जंगल का अवशेष है। यानी कोयले के रूप में हम प्राचीन पेड़ों की संचित ऊर्जा का उपयोग कर रहे होते हैं। हालांकि कोयले के जलने से वायु प्रदूषण होता है, इसीलिए दुनिया अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देने लगी है।
1: जी बिल्कुल सही, पर अजीत जी अब जरा कोयले की उत्पत्ति की प्रक्रिया पर बात कर ली जाए। वैज्ञानिक रूप से ये कैसे होता है?
0: विमलेश जी, ये हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा सूर्य की ऊर्जा को अपने भीतर संचित करते हैं। प्राचीन पौधे कोयले में बदल गए क्योंकि हवा से संपर्क न होने के कारण उनका क्षय नहीं हुआ और उनके भीतर संचित सूर्य की ऊर्जा भी उनके साथ सुरक्षित रह गई। बताना चाहता हूँ कि कोयला प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकार से समीकरण है।
1: जी, तो इसका अर्थ ये हुआ श्रोताओं कि जब हम कोयला जलाते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले के सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा या गर्मी के रूप में मुक्त कर रहे होते हैं। तो अजीत जी, रोचक बात ये है कि कोयला मात्र एक खनिज नहीं है लेकिन ये पृथ्वी के प्राचीन वन इतिहास का जीवित प्रमाण है।
0: जी विमलेश जी, बिल्कुल सही, इसीलिए तो हम कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये जीवित पेड़ पौधों के रासायनिक अवशेष हैं।
1: जी।
0: तो श्रोताओं, ये थी मनोरंजक वैज्ञानिक कथा कोयले की उत्पत्ति की। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर और अपने संदेश हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे ईमेल पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप सोशल मीडिया पर भी यानी इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम सीखो।
1: ये संगीत कार्यक्रम कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें कवि संदेश देता है कि हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखना चाहिए।
0: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
2: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
2: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो।

0: सीखो हरदम
1: और धुएं से सीखो हरदम
0: ऊंचे ही पर चढ़ना
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
2: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। श्रोता, अभी सुना आपने ये खूबसूरत गीत सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा मुख्य रूप से ये संदेश दिया गया है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें सबका साथ चाहिए।
0: जी,
2: एक सुबह जंगली मुर्गा बोला,

0: फिर चहके बाकी पंछी भी। धीरे धीरे करके फिर बोल उठे सारे पशु पक्षी। बहुत ही था न्यारा उस दिन का सवेरा। सारे जंगल वालों ने जब मिलकर ठाना था, अपने जंगल में खोदेंगे तालाब बड़ा सा।
1: खोदेंगे भाई खोदेंगे,
2: हम सब मिलकर एक बार।
1: गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल। खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक बार। गर्मी में प्यासे न मरेंगे, ना होंगे बेहाल।
0: बारिश का मौसम था वैसे भी, भर सकता था ताल बड़ा सा भी।

0: थोड़ी देर करें आराम, फिर निपटाए जाए बाकी काम।
1: राजन, अभी बहुत सा काम बचा है, जल्दी निपटिए जाए यही अच्छा है। बारिश जाने कब हो जाए खत्म, जल्द खोद ले ताल, काम करें खत्म।
0: ठीक कहा हाथी तुमने, तो यही करो यही करो।
2: खोदेंगे भाई खोदेंगे, हम सब मिलकर एक ताल, गर्मी में प्यासे न मरेंगे ना होंगे बेहाल।
3: सब पशु पक्षी आओ आओ आओ, काव काव काव।
4: कौवे भैया, हम भी तो गर्मी में इससे प्यास बुझाएंगे, यूं ही नहीं पिएंगे, हम भी हाथ बटाएंगे। क्यों, है ना कोयल बहन? कू कू।
5: हाँ चिड़िया बहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ताल खोदना भी चाहती हूँ, पर काम क्या करूँ समझ नहीं आता। कू कू।
6: मेरा भी कुछ यही हाल है।
3: तो ये बात है, अच्छा बात मेरी तो मानो, करो वही जो करना जानो, काम काम काम।
6: क्या क्या क्या?
3: पूजा सब तक कोयल गाए,
4: मीठा
3: सब तक सब सुनाए, सबका तुम दो जोश बढ़ाना, तुम सब में उत्साह जगाना, काम।
0: हाँ हाँ, यही करो तुम दोनों।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
4: दम लगा के कू।
6: हईशा।
3: सभी जुटे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अरे पपीहा कहाँ है? आ, करता होगा पड़ा आराम, चलूं उसे भी ले आऊं मैं। ताल खोदना बहुत जरूरी, चलकर उसको समझाऊं मैं, काम काम काम काम काम काम काम। लो ये रहा पपीहा चुप्पा, बैठा गाल फुला कर कुप्पा, काम काम काम। अरे पपीहे, ऐसे क्यों बैठा है भैये, सारा जंगल झूम रहा है, अरे तू कैसा दुख मना रहा है, काम काम काम।
6: तंग मत कर तू मुझको कौवे, जा जा जा मुझसे बतियाने से पहले, अरे तू मुंह तो धोकर आ।
3: काँ, काँ, काँ। मुंह भी धोकर आऊंगा मैं, पानी भी पीऊंगा जी भर, सबके संग मिलता लखोदने, मैं भी मदद करूंगा डट कर। अरे पपी है, अरे पपी है, तुम भी चलो कुछ मदद करो।

0: ताल खोदने में, इस जंगल में खुदेगा तालाब। अरे वाह जनाब, ताल के अंदर मिट्टी होगी, पानी भी गंदा ही होगा। छी छी कौन पिएगा उसको? अरे काले कौवे मुझको बख्शो।
1: का का का,
2: कौवा मदद मांगने आया, पपीहे ने डांट कर उसे भगाया। रिमछिम रिमछिम बरखा आई, पपीहे ने झूम कर गाया।

0: やばい。パピー花ピエトジャバイ。
1: इसने तो बस रट ही पकड़ ली।
2: बहु बहु बहु, अरे ये कौवे का मजाक उड़ा रहा है।
1: अरे
2: अरे ये तो इस तरह बोलता ही रहेगा। बहु बहु, कोई इसे कुछ कहता क्यों नहीं।
1: गाँव गाँव गाँव, कुत्ते देख नहीं रहे, शेर राजा भी तालाब खोद रहे हैं। अरे कुछ कहना होगा तो वो ही कहेंगे। गाँव गाँव शेर महाराज, अब बहुत हो गया ये सब, आप ही इसे कुछ क्यों नहीं कहते।
3: मैं भी पपीहे की बात सुनकर थक गया हूँ। पपीहे सुन, पानी नहीं पिएगा तू इस ताल का, सबकी मेहनत से खुद कर जो बना अभी, तू इस ताल में भरने वाले पानी को छू तक सकेगा नहीं कभी।
2: इसकी यही सजा हो,
4: इसको यही दंड दो।
5: अब गर्मी का मौसम आ गया था, नदी नाले सब सूखने लगे, भयंकर लू चलने लगी, जंगल में कहीं भी पानी नहीं था सिवाय इस तालाब के। सारे जंगलों के पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाने इस तालाब पर आने लगे।
1: गाँ, गाँ, अरे वो देखो, वो दूर के किसी जंगल से नील गाय आ रही है। गाँ।
6: हाँ, और किसी जंगल में पानी नहीं है ना, सारे जानवर यहीं आ रहे हैं। भयानक गर्मी है ना
7: भाई। मैं तो ठहरा कछुआ, दिन रात इसी में पड़ा रहता हूँ ना, इसलिए सबकी बातें सुनता रहता हूँ। कोयल बहन ठीक कह रही है, सब बातें करते हैं और बताते हैं कि पानी कहीं भी नहीं है।
1: अरे कछुए भैया, दूसरे जंगलों के पशु पक्षियों को भी अपने यहाँ तालाब खोदने चाहिए। हाँ
7: हाँ, कल ही किसी जंगल का राजा शेर अपने लूमड़ मंत्री से कह रहा था कि हम भी मिलजुल कर अपने जंगल में तालाब खोदेंगे।
6: क्यों नहीं, मिलजुल कर काम करेंगे तो खोद लेंगे ऐसा तालाब।

0: रहे हो कौए? क्या मैंने गलत कहा?
1: अरे नहीं नहीं कोयल, मैं तो ये सोच कर हंस रहा था कि कहीं उनके जंगल में भी पपीहे जैसा कोई हुआ तो क्या होगा। अरे प्यास से मर जाएंगे मगर हाथ नहीं हिलाएंगे।
0: बाप रे, मुझे तो उसका नाम लेते ही उसकी शक्ल नजर आ जाती है। वैसे वो क्या करता है आजकल? इतनी गर्मी में कैसे काम चलता है उसका?
2: हाँ, मैं भी हैरान हूँ। कभी कभी दूर से उसकी आवाज तो आती है, रोने जैसे गाने की।
1: काँव काँव। हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जिधर से बरसात का आखिरी बादल गया था वो उसी ओर मुंह उठाए ताकता रहता है।

0: सुनो सुनो, दूर से उसकी दर्द भरी आवाज कैसी लग रही है।
1: और इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, वो खुद ही है।
2: अच्छा अच्छा, हम पपी है के पास जा रहे हैं। कछुए भाई आकर बताएंगे तुम्हें कि वो क्या कह रहा था। आओ कोयल, चलो चले
0: चलो।
2: कोयल रानी चुपचाप वो सामने वाली डाल पर बैठकर सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है।
0: चलो
3: पिए दूजा पानी।

0: गया?
1: क्या पता?
0: अभी अभी जान है, लेकिन बिन पानी तो ये मर ही जाएगा।
1: हाँ, चलो इसे उठाकर तालाब तक ले चलते हैं।
0: हाँ, ये ठीक रहेगा।
1: पपी है, अरे देखो तो, हम आए हैं तुम्हें लेने। माहू कौआ, अरे उठो, आंखें तो खोलो भाई।
2: पानी।
1: अरे
0: पपी है भाई।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम एकल खोर पपीहा। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं और अब पेश है एक ही शब्द पर आधारित फिल्म गीतों का कार्यक्रम चयन। नमस्कार, आदाब, शुभ दोपहर और आप सभी को आज शबनम की का प्यार भरा नमस्कार, आदाब।

दोपहर की इस सुनहरी बेला में उम्मीद है कि जिंदगी आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून की हल्की सी दस्तक दे रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त शबनम और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम चयन, जहां हर दिन हम चुनते हैं एक ऐसा शब्द, एक ऐसा एहसास जो हमारी जिंदगी से गहराई से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, आज चयन में हमने चुना है एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये शब्द है दूर। दूर सिर्फ दो जगहों के बीच की दूरी नहीं होती, कई बार लोग पास बैठकर भी बहुत दूर होते हैं, और कई बार कोई हजारों किलोमीटर दूर होकर भी दिल के सबसे करीब होता है। दूरी आंखों को दिखाई देती है, लेकिन अपनापन दिल से महसूस होता है। दूर के बारे में और भी बातें होंगी, लेकिन सुनते चलते हैं ये प्यारा सा गीत।

जैसा कि हमने आपसे कहा कि दूरी आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अपनापन दिल से महसूस ज़रूर कर देती है। इसलिए रिश्ते किलोमीटर नहीं नापते, वे विश्वास, प्रेम और यादों से जुड़े रहते हैं। कभी मंजिल दूर होती है, कभी अपने दूर होते हैं, तो कभी बचपन दूर छूट जाता है, और कभी वो पल जिन्हें हम फिर से जीना चाहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर इरादे मजबूत हों तो दूरियां रास्ता नहीं रोकती, और अगर रिश्तों में सच्चाई हो तो दूरियां प्यार को कम नहीं करतीं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से कार्यक्रम चयन। एक ही शब्द पर आधारित ये होता है श्रोताओं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। और आज का जो खास शब्द हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है दूर। दूर शब्द सुनते ही अक्सर हमें लगता है कि बात सिर्फ फासलों की हो रही है, लेकिन सच तो ये है कि दूरियां सिर्फ रास्तों में नहीं होती, वे कभी कभी दिलों में भी बन जाती हैं। कई बार कोई इंसान हमारे बिल्कुल पास बैठा होता है, फिर भी उसकी खामोशी हमें उससे बहुत दूर होने का एहसास करा देती है। और कभी कोई अपने शहर, देश या सरहद के पार होता है, लेकिन उसकी यादें हर पल हमारे साथ चलती रहती हैं। दूरी कभी रिश्तों की दुश्मन नहीं होती, रिश्तों की असली परीक्षा दूरी में ही होती है।

आपने ट्यून किया हुआ है आकाशवाणी अंबिकापुर मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शबनम। आज चयन में हमने खास शब्द चुना हुआ है दूर। दोस्तों, सूरज हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी हर सुबह अपनी रोशनी से हमारी जिंदगी रोशन कर देता है। चांद भी दूर है, लेकिन उसकी चांदनी हर रात हमारे घर के आंगन तक पहुंच जाती है। यानी दूरी कभी मायने नहीं रखती, अगर दिलों में उजाला और रिश्तों में अपनापन बना रहे तो। कहते हैं कि दूरी कभी कभी बहुत कुछ सिखा भी जाती है। जब कोई अपने पास होता है तो उसकी अहमियत का एहसास कम होता है, लेकिन जब वही कुछ समय के लिए दूर चला जाए तो उसकी कमी हर पल महसूस होती है।

एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से, और आज का खास शब्द है दूर। शायद इसलिए दूरियां हमेशा बुरी नहीं होती, कुछ दूरियां हमें इंतज़ार करना भी सिखाती हैं, कुछ रिश्तों की अहमियत समझाती हैं और कुछ हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमारी ज़िंदगी में कौन सचमुच कितना ख़ास है। अगर हमेशा दिन ही रहे तो रात की खूबसूरती कौन समझेगा, अगर हमेशा मिलना ही होता रहे तो मुलाकातों की खुशी कहाँ रह जाएगी। ठीक वैसे ही कभी कभी थोड़ी सी दूरी भी रिश्तों में अपनापन और मिठास बढ़ा देती है। इसलिए दोस्तों, अगर आज कोई अपना आपसे दूर है तो उदास मत होइए। हो सकता है दूरी सिर्फ रास्तों की हो, दिलों की नहीं, क्योंकि सच्चे रिश्ते रोज़ मिलने से नहीं, रोज़ याद करने से ज़िंदा रहते हैं। तो आइए दूरियों को शिकायत नहीं, समझदारी की नज़र से देखें, क्योंकि कई बार फासले ही हमें अपनों के और भी करीब ले आते हैं।

दोस्तों, ज़िंदगी भी हमें शायद यही सिखाती है कि फासलों को, दूरियों को मत गिनिए, एहसासों को गिनिए। मीलों की दूरी एक दिन मिट जाती है, लेकिन प्यार, विश्वास और अपनापन अगर दूर हो जाए तो सबसे पास रहकर भी इंसान अकेला महसूस करता है। इसलिए आप जहाँ भी रहें, अपने लोगों को समय दीजिए, उनकी खैर खैरियत पूछते रहिए, क्योंकि एक छोटा सा संदेश भी बहुत दूरियों को मिटा सकता है। आज आपने चयन कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत सुने, वे थीं दूर का राही, हीरा पन्ना, तुमसे अच्छा कौन है, दो चार, दो चोर और आनंद। आवाजें रहीं हेमंत कुमार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, सोनू निगम, मुकेश और साथियों को।

अभी आप सुन रहे थे एक ही शब्द पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। और आज के इस कार्यक्रम में हमने जो शब्द चुना था वो था दूर। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन का 1 बजने को है। समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित

0: करने पर काम कर रही है, जो मिट्टी और उससे आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था, जिसके बाद सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जुलाई निर्धारित की थी। सरकार ने करदाताओं को भी सलाह दी है कि वे समय रहते ही अपील दायर कर दें और अंतिम तिथि का इंतजार न करें। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर वायरल उस फर्जी नोटिस का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि निजी पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के लोगों वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेच रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कॉरपोरेशन ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जर्मनी विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की ये पहली हार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है खेती की बात का पुनः प्रसारण। सामयिक जानकारी का विषय है करेले की लाभकारी खेती।
4: किसान भाइयों, बेल वर्गीय सब्जियों में करेला का प्रमुख स्थान है। करेला की खेती विश्व की उष्णकटिबंधीय

0: उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत के लगभग सभी प्रांतों में इसकी खेती की जाती है। करेला औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण काफी लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से लोहा, फास्फोरस, विटामिन ए तथा सी अधिक पाया जाता है। करेला पेट जनित रोग के लिए विशेष लाभकारी है तथा बवासीर एवं मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान है। करेला को वर्ष में मुख्य रूप से वर्षा एवं ग्रीष्म मौसम में लगाया जाता है तथा फसल अवधि किस्मों के अनुसार 60 से 90 दिनों तक की होती है। छत्तीसगढ़ में करेला की सब्जी चाव से खाई जाती है। आइए जानते हैं करेले के उत्पादन के लिए क्या क्या करना होगा। भूमि एवं जलवायु। किसान भाइयों, करेला को सभी प्रकार के भूमि में लगाया जा सकता है, परंतु पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए अच्छी जल निकास वाली बालू एवं दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना उत्तम होता है। करेला मुख्य रूप से गर्म जलवायु की फसल है, परंतु थोड़ा ठंड भी सह लेती है, लेकिन अधिक ठंड से पाला की संभावना भी रहती है। करेले की अनेक उन्नत किस्में विकसित की जा चुकी है। इनमें पूसा 2 मौसमी, पूसा शंकर 1, कोयम्बटूर लॉन्ग व कल्याणपुर 12 मासी प्रमुख है। बुआई बोने का समय। किसान भाइयों, करेला की बुआई का समय इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहां पर उगाया जा रहा है। दक्षिण भारत में जून जुलाई और दिसंबर जनवरी, जबकि उत्तर भारत में फरवरी मार्च में उगाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से जून में भी लगाया जाता है। बीज की मात्रा। करेला की बीज की मात्रा इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे उगाया जा रहा है। यदि इसे पौध तैयार करके उगाया गया है तो उस स्थिति में 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए पौधा तैयार करने के लिए पर्याप्त होता है, परंतु जब खेत में इसकी सीधे बुआई की जाती है तो उस स्थिति में 4.5 से 3 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बीज उपचार। बीज बोने से पूर्व फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करके ही बोनी करनी चाहिए। इसके लिए डायथेन M45 दवा की 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा से उपचारित करके बोनी करें। कतार से कतार की दूरी। ग्रीष्म ऋतु में 1 से 1 मीटर कतार और बीज की दूरी वर्षा ऋतु में 1.5 से 1 मीटर कतार से बीज की दूरी होनी चाहिए। बीज बोने की विधि। 2 या 3 बार कल्टीवेटर चलाकर जुताई करें तथा पाटा चलाकर मिट्टी भुरभुरी कर लें तथा 30x30x30 सेंटीमीटर गहराई, लंबाई, चौड़ाई के गड्ढे तैयार कर लें तथा इन गड्ढों में गोबर की खाद 5710 किलोग्राम प्रति गड्ढे का मान से डालें। इसके पश्चात आधार खाद के लिए अनुशासित स्फूर एवं पोटास की पूरी मात्रा थालों में डालकर अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें। 374 बीज प्रति थाले के हिसाब से डालें। जब बीज अंकुरित हो जाए तो 2 स्वस्थ पौधे छोड़कर बाकी पौधों को उखाड़ देना चाहिए। खाद, उर्वरक और सिंचाई। किसान भाइयों, 100 क्विंटल गोबर की खाद, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम स्फूर और 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के मान से डालना चाहिए। गोबर खाद एवं स्फूर तथा पोटास को आधार खाद के रूप में देवें तथा नाइट्रोजन को 3 भागों में बांटकर प्रथम अंकुरण पश्चात, द्वितीय जब बेल के 1 मीटर ऊंचाई के होने पर तथा फूल आते समय तीसरी मात्रा आवश्यक रूप से डालें तथा गुड़ाई करके भूमि में अच्छी तरह मिलाएं। सिंचाई। सिंचाई मौसम एवं भूमि के अनुसार करना चाहिए। साधारणतः 4 से 5 दिनों के अंतराल में सिंचाई नालियों से ही सिंचाई करनी चाहिए और थालों में जल देना चाहिए। पादप नियंत्रण का उपयोग। करेला के पुष्प से मादा अधिक लाने के लिए मोलिक हाइड्रोजन या टीबा 50 ppm 50 किलोग्राम प्रति लीटर पानी के मान से 2 से 4 पत्तियों वाले पौधे में छिड़कने से मादा पुष्पों की संख्या बढ़ती है तथा उपज में वृद्धि देखी गई है। पादप संरक्षण। कीट लांड्री रेड पंपकिन बीटिल, यह कीट लाल रंग होता है जो 5 से 8 सेंटीमीटर लंबा होता है। फसल पत्तियों के बीच के भाग को खाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पत्तियां छलनी जैसी दिखाई पड़ती हैं। पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल खत्म होने पर बेलों को खेत से हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। फसल की अगेती बुआई से कीट के प्रभाव को कम किया जा सकता है। संतरी रंग के भृंग को सुबह के समय इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। कार्बोरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर या इंडोक्सा कार्ब 14.5 SC/1 ml प्रति 2 लीटर का छिड़काव करना चाहिए। भूमिगत शिशुओं के लिए क्लोरोपायरीफास 20 EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर हल्की सिंचाई के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। फल मक्खी फ्रूट फ्लाई। इस कीट की मक्खी फलों में अंडे देती हैं और शिशु अंडे से निकलने के तुरंत बाद फल के गुदे को भीतर खाकर सुरंग बना देते हैं। इसके लिए खेत की निराई करके प्यूपा को नष्ट कर देना चाहिए। ग्रसित फलों को भी एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए।
1: करेले की लाभकारी खेती। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का हमारे आज के घरांगन कार्यक्रम में। आपके साथ आज मैं हूं विनीता। स्वीकार कीजिए मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। बहनों, आज के समय में जहां हम सभी ये देख रहे हैं कि आर्थिक तौर पर मजबूत बनना कितना ज़रूरी है, और आज हर व्यक्ति खुद ही कुछ ना कुछ ऐसे काम करना चाहता है जिससे कि उसकी आय में वृद्धि हो। हम सभी को ईश्वर ने कुछ खास गुणों से नवाजा है, और बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उन गुणों को कैसे बाहर लाएं, और इसलिए हमें आत्मनिर्भर बनना बेहद ज़रूरी है, जिसके लिए स्वरोजगार एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, खुद का व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। बहनों, स्वरोजगार आज के समय की मांग है। ये युवा प्रतिभाओं को निखरने का मौका देती है और समाज में स्वतंत्रता और अपनी पहचान बनाने का माध्यम भी बनती है। हमारे आसपास ऐसी अनेक महिलाएं और युवा हैं जिनके हाथों में हुनर है। कोई सिलाई कढ़ाई में निपुण है, तो कोई बुनाई, पेंटिंग, अचार, पापड़, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मिट्टी के बर्तन या हस्तशिल्प करने में माहिर है। लेकिन अक्सर ये कला घर की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाती है। अगर यही हुनर सही दिशा और थोड़े प्रयास के साथ आगे बढ़े तो यही कला सम्मान और आय का माध्यम भी बन सकती है। श्रोताओं, स्वरोजगार का अर्थ केवल अपना व्यवसाय शुरू करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा और मेहनत से आत्मनिर्भर बनना भी है। आज के डिजिटल युग में अपने उत्पादों को स्थानीय बाजार, मेलों, प्रदर्शनियों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। आज चीज़ें हम सभी के लिए बेहद आसान हो गई हैं, बस उन्हें सही जगह और समय पर पहचानने की ज़रूरत है। हम सभी के पास कोई ना कोई कला है, तो उसे पहचानें, निखारें और अपनी पहचान बनाएं। सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, स्व सहायता समूहों और स्थानीय संस्थाओं की मदद लेकर अपने हुनर को व्यवसाय का रूप दें। याद रखें, हुनर कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी होती है सोच। जब हमारी कला को अवसर मिलता है, तब हमारे सपनों को मिलती है उड़ान। इसी प्रेरणा के साथ आइए सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म खानदान से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर की।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, अब वक्त हो गया है कि हम चलें हमारे क्रम आईना की ओर। तो चलते हैं आईना क्रम में।

स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का हमारे आज के क्रम आईना में। और आज के इस कड़ी की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले शशि सोनी की। 10,000 रुपए से शुरू किया अपना बिजनेस और आज है 4,100 करोड़ का साम्राज्य। शशि सोनी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1971 में की थी। उस समय उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपए के निवेश से दीप ट्रांसपोर्ट की शुरुआत की। आज ये 500 मिलियन डॉलर का बिजनेस एम्पायर है और ये सफलता उनके बिजनेस कौशल और दूरदर्शी सोच को दर्शाती है। श्रोताओं, भारत में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और शशि सोनी भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं। एक समय था

जब वो सिर्फ एक गृहिणी थी लेकिन उनके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह थी। उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की और धीरे धीरे एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया जो आज 4100 करोड़ रुपए का हो गया है। साथ ही साथ शशि सोनी की पहचान सिर्फ एक सफल बिजनेस वीमेन के रूप में नहीं है बल्कि वो समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। उन्होंने दीप जन सेवा समिति के जरिए कई सामाजिक काम किए हैं। महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, पेंशन योजनाएं और दिव्यांग लोगों की मदद जैसे क्षेत्रों में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी उपलब्धियाँ यहीं खत्म नहीं होती। वो 7 साल तक ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की मैनेजिंग कमेटी की एकमात्र महिला सदस्य रहीं। उस समय इंडस्ट्री बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही थी और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सामाजिक और व्यावसायिक योगदान को देखते हुए उन्हें 1990 में महिला गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2024 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

अब बात करते हैं देवंशी की पहल की। मिजोरम के लॉक तलाई जिले की देवंशी चकमा, जिन्होंने मोदी ब्लूम सोसाइटी के जरिए महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम की है। उन्होंने अपने चकमा आदिवासी समुदाय की 500 से अधिक महिलाओं को पारंपरिक कला जैसे हाथ की बुनाई, बांस के विभिन्न उत्पाद, पारंपरिक व्यंजन के जरिए आत्मनिर्भर बनाया है। देवंशी चकमा ने इलाके की गरीब महिलाओं के संघर्ष को भी बहुत करीब से देखा और सुदूर इलाका होने के कारण यहाँ बड़े उद्योगों की कमी थी। ऐसे में देवंशी ने केंद्र सरकार की संस्था ट्राइफेड से हाथ मिलाया और इस साझेदारी से अब इन महिलाओं के हाथ से बने उत्पाद देश के बड़े बड़े रिटेल नेटवर्क और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहे हैं।

श्रोताओं, भारत की एक और बेटी अब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने जा रही हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ के रायपुर की कक्षा 10 की छात्रा महिमा राजपूत का चयन शक्ति आईसेट मिशन के लिए हुआ है। इस मिशन में 108 देशों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। महिमा ने 21 मॉड्यूल और 365 लेसन पूरे किए। यहाँ उन्होंने विज्ञान, सैटेलाइट और अंतरिक्ष मिशन की बारीकियाँ सीखी। उन्हें सैटेलाइट बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई है। 23 अगस्त को महिमा दिल्ली जाएंगी और वहाँ वो अन्य देश के छात्रों के साथ मिलकर सैटेलाइट बनाने में हिस्सा लेंगी। इस मिशन के तहत एक सैटेलाइट को चंद्रमा की सतह पर उतारने और दूसरों को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने की योजना है। मिशन की लॉन्चिंग अक्टूबर में होगी। महिमा की ये उपलब्धि हमें ये दिखाती है कि अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो स्कूल की कक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर भी तय किया जा सकता है।

बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हेल्दी स्नैक्स बेचने वाला एक छोटा सा स्टार्टअप करोड़ों का ब्रांड कैसे बन जाता है? दो बहनें सुहासिनी और अनिंदिता संपत ने अमेरिका से मिले एक आइडिया से भारत में सफल बिजनेस खड़ा किया है। आज योगा बार देश के सबसे लोकप्रिय हेल्थ फूड ब्रांड्स में से शामिल है और ITC जैसी बड़ी कंपनी भी इसमें निवेश कर चुकी है। इन दोनों बहनों ने एक समय में हेल्दी स्नैक ब्रांड शुरू किया और जब भारत में इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत कम थे, आज इनका ये ब्रांड देश के सबसे लोकप्रिय हेल्थ फूड ब्रांड्स में गिना जाता है। इस सफलता के पीछे सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक मजबूत सोच और ग्राहकों को समझने की कला भी छिपी हुई है। इनका ये सफ़र आसान नहीं रहा। हेल्दी फूड मार्केट में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ चुकी है और कई नए ब्रांड इस क्षेत्र में उतर चुके हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी और लेबलिंग जैसे जुड़े हुए नियम भी लगातार बदलते रहते हैं। ग्राहकों की अलग अलग डाइट ज़रूरतें भी कंपनियों के लिए चुनौती बन जाती हैं, लेकिन इनकी इस कंपनी ने हमेशा बदलाव के साथ खुद को ढालने की कोशिश की और कंपनी लगातार नए आइडियाज़ और बेहतर प्रोडक्ट पर काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि आज इनका ये ब्रांड सफलता हासिल कर रहा है।

करने वाली संजना रेड्डी के बारे में। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद संजना रेड्डी के सामने एक शानदार करियर था। उन्हें आईटी सेक्टर में नौकरी मिली, आईएलटीएस और ग्रे भी क्लियर कर लिया, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल मिसौरी में एडमिशन भी मिल गया। ज़्यादातर लोग शायद इस मौके को गंवाना नहीं चाहते, लेकिन तेलंगाना के निज़ामाबाद जिले के चिता लुरु गांव की रहने वाली संजना ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं पढ़ लिख कर अपने गांव और किसानों के लिए कुछ कर सकती तो फिर विदेश क्यों जाऊं? किसान परिवार में पली बढ़ी संजना ने करीब से देखा था कि महीनों की मेहनत के बाद किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता। बिचौलियों और बाजार की अनिश्चितताओं का सबसे ज़्यादा असर किसानों पर ही पड़ता है। इसी सोच के साथ उन्होंने खेती और किसानों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। फिर एक दिन हल्दी की खेती पर बनाया उनका वीडियो वायरल हुआ। लोग सीधे उनके परिवार के खेत से हल्दी खरीदना चाहते थे। यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। संजना ने इंदुरु फार्म शुरू किया। अब वो किसानों से सीधे उपज खरीदकर ग्राहकों तक पहुंचाती हैं। उनका कारोबार आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, चेन्नई और कई अन्य शहरों तक पहुंच चुका है। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं है, ये उस सोच की कहानी है जो कहती है कि सफलता सिर्फ विदेश जाने में नहीं बल्कि अपने गाँव और अपने लोगों के लिए अवसर बनाने में भी है। सही शिक्षा वही है जो समाज की किसी समस्या का समाधान बन सके। तो बहनों, इन्हीं बातों के साथ आज के आईना में बस यहीं तक।

श्रोताओं, आईना के बाद अब वक्त हो गया है कि हम चलें हमारे क्रम घर आंगन मेल में, और आज भी बहुत सारे मेल आपके मिले हैं, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं पहला मेल जो हमें भेजा है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से। डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, प्रभा देवी, अजय देव, तुषार देव, मास्टर अल कबीर, बन बघेरा राजनांदगांव से, आशा सारवा, अंजलि, करीना, नीरज, नीलेश और साथ में योगेश सारवा, किकिर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से, रुक्मणी शर्मा और संतोष शर्मा, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से, भनीता साहू, सरिता, पूर्णिमा और ओम कुमारी साहू। इन सभी की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत, जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर की।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें लिखकर भेजी है मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक और आकांक्षा मलिक, और इसी गीत को सुनना चाहा है जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल गोस्वामी, बेबी जोई, रिंकी गोस्वामी, नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, यामिनी और उमा तिवारी ने। इनकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म क्या यही प्यार है का ये गीत, जिसमें आवाज़ें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की।

श्रोताओं, इस अंतिम गीत के साथ आज के घर आंगन मेल में बस यहीं तक। और अब घड़ी की सुइयों ने इशारा किया है कि हमें हमारे कार्यक्रम से भी विदा लेना होगा, लेकिन जाने से पहले आप नोट कर लें हमारे घर आंगन मेल का पता। पता है gharanganair@gmail.com। और हमारे फोन लाइन भी हर शनिवार सुबह 10:30 से 11:00 के बीच फोन इन कार्यक्रम के लिए चालू रहते हैं। तो इसके लिए फोन नंबर है 231-917 और 231-918। बाहर के कॉलर कोड लगाएं 07774। तो बहनों, आपके फ़ोन कॉल, आपके मेल्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ें और अपने मेल हमें भेजें और अपने फ़ोन कॉल के माध्यम से हमारे कार्यक्रम के बारे में हमें बताएं। और इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम से मुझे यानी विनीता को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं और अब पेश है फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। ईमेल की गूंज सुन रहे सभी श्रोताओं को नमस्कार आदाब, आज शबनम की ओर से। श्रोताओं, आपके ढेर सारे मेल हमें मिल चुके हैं, तो सिलसिला शुरू करते हैं आज।

आज के इस कार्यक्रम में आपकी मेल और आपकी फरमाइशें शामिल करने का। कार्यक्रम में सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो है फिल्म कामचोर से। इंदिवर की रचना है, संगीत राजेश रोशन का और आवाज़ें किशोर कुमार और अलका याग्निक की। फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शाबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। ग्राम पिपरलोड सरगांव मुंगेली से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या। बालाजी चौक से श्रीवास, ओटी श्रीवास, शेख आज़ाद, पोपोरानी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया। उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रिहान, समरीन, परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार के सभी सदस्य। अकोला से सुयश रॉय, अलका रॉय। दरियापुर बाभली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले। अनूपगढ़ से रोशनी जनागल। मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार। पेंटर बाबू, विजय महोबिया, कविता महोबिया, सपना, शिवी, सलोनी, ईशु बाबा, आप हैं खंडवा मध्य प्रदेश से। मुताला से बबलू शेख, शगीर शेख वजीर, सोहिल सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म कामचोर से ये गीत आवाज़ें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की।

किशोर कुमार और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कामचोर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर है। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 1:47 हुए हैं और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से रामचंद गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े और इनके परिवार के सभी सदस्य, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, लखनलाल आप हैं पलारी से, लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय, संध्या और शिवम कोलाम, सांगली से अल्ताफ हुजरे, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु ताशु, अर्णवानंद, सत्यमानंद, बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां आप हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता गांव नथाना पंजाब से, गांव लोहगढ़ ठाकुरा से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुरलाल, अविराज गुरनूर और शुभदीप सिंह, संजय कुमार साहू, शशांक साहू आप हैं पोतिया कला दुर्ग से। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म दिल तुझको दिया से ये गीत, गीत और संगीत राजेश रोशन का, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियो वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

गूंज में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शबनम। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म तेरी मेहरबानियां से। एसएच बिहारी की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की। और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से। अकोला से शरद पाजपोर, शोभा पाजपोर, बेबी वैधी, विहान रश्मि, अक्षय और अभिनय पाजपोर, वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार, डिकेश साहू, आप हैं रसेड़ा से।

उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत और चेतन नाहटा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा निवान, सौरव शाइना और मैंडी शर्मा, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी और इनका पूरा परिवार, नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश, बमलेश्वरी धाम सोमनी, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म तेरी मेहरबानियां से ये गीत।

तेरी मेहरबानियाँ। इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए आप सभी से मेल मिले। नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, सोनल, बेबीसिया और पूरा जाधव परिवार। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार। कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री और अन्विका बेबी। झुमरी तलैया गिरिडीह झारखंड से अभय कुमार, शिवानी, प्रियंका, गुड्डू कुमार गुप्ता, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, रिया, जिया, टूसी, आयुषी और अनिरुद्ध। पवन कुमार साहू, क्रांति देवी साहू, पंकज साहू, सुष्मिता, दीपिका, आप हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। सूर्यवाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से प्रकाश बोरगांवकर। दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल और निशा। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाहणकर, राही, सरिता गवाहणकर, प्रिंस, एकांश, अर्जुन और टुक टुक। कर्मा चौक लोहारीडी जिला कवर्धा छत्तीसगढ़ से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म अर्पण से ये गीत शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर की है।

फिल्म अर्पण से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और कार्यक्रम ईमेल की गूंज के आखिर में अब आप सुनेंगे फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से ये गीत। मजरू की शब्द रचना है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत के लिए मेल मिले आप सभी से, जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्रानी केवट, कृष्णा केवट, आप हैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, इब्राहिम, दतरंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली क्षत्रिय, शास्त्री नगर बीड शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया और विशाल सपकाल, और वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर, शिवांशु, रेशु, वी चैतन्य, अक्षय, अभिषेक नायडू, आप हैं धनोरा बस्तर छत्तीसगढ़ से। आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर का गाया फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से ये गीत।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं, समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर। मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं। इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है। श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके। कल मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की है। कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं। इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र बीएलओ को वापस करें ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर बीएलओ और बीएलए 2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ

0: समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल है। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत आईएनएस देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
2: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए UPI के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:30 हो चुके हैं और अब पेश है गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुलाम अली की गई इस गजल से।

गुलाम अली की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल। गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे एक गीत, आवाज़ है आतिफ असलम की।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8 बजे से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से। कार्यक्रम में अब आप सुनेंगे आबिदा परवीन की आवाज़ में ये गीत।

अभी आपने सुना आबिदा परवीन को। गैर फिल्मी गीतों और गज़लों के कार्यक्रम गीत गंधा में अब आप सुनेंगे चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल। कलाम है ज़मीर काज़मी का।

अभिजीत सावंत के गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी गीतों और गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:38 हुए हैं और अब हम आपको बता दें सभा समापन से पूर्व अपने आज के शेष मुख्य आकर्षण। हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5:00, प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट के साथ। भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप सुनेंगे 5:05 पर। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे 5:30 पर। विचार बिंदु का पुनः प्रसारण किया जाएगा 6:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम गोधुली में 6:20 पर आज आप सुनेंगे अमृत मिंच और तिलन साय तिग्गा के गाए कुछ सादरी लोकगीत। फिल्म संगीत का माधुरी कार्यक्रम पेश करेंगे 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा पेश करेंगे 7:05 पर। किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल

शाम 7:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे शाम 7:30 पर। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। मनी टॉक और मंथन, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 9:30 पर। फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज रात 10:00 और फिल्म संगीत का एक और फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन लेकर आएंगे रात 10:30 पर। ये तो थे आज के शेष मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव पर सभा समापन से पूर्व हम आपको बता दें कि एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली से एफएम गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 3:48 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5:00 आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा का आरंभ करते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ के साथ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडाण, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और रघुनाथ नगर में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, सिधमा, बदौली, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, भगवानपुर, नवापारा, चीनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, सोनहत, नवगई, गैना के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये सकालो, किशुनपुर, घंघरी, खलीबा, पड़ौली, अमड़ी, जमीरा, मसगा, असकला, दोरना, जरहाडी, सायर, लक्ष्मणगढ़, सुखरी भंडार, ससकालो, ढेकी डोली, एरंड, नवापारा, घड़गांव, बरडाण, चोरकी पानी, दाती ढाप के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा, दुलदुला में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, साजा पानी, गट्टी बुड़ा, हल्दी मुंडा, ढोढ़ा डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 126 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठ मोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये बंगुरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के बार और कोठारी

0: में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, ताल दादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गाँव के आस पास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये वचन आपने सुना। आइए अब सुनते हैं शर्मा बंधुओं का लिखा और गाया ये वचन।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है हरिओम शरण का लिखा और गाया ये भजन।

ए हरिहरन के गाए इस हनुमान वंदना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी।

नए जोश, नई उम्मीद, नए ज्ञान के साथ स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की शाम में। तो चलिए करते हैं आज के युववाणी की शुरुआत आपकी दोस्त शालिनी चौबे के साथ। दोस्तों, ज़रा अपने मोबाइल की स्क्रीन को एक बार देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन की शुरुआत भी उसी से होती हो और रात का आखिरी गुड नाइट भी। अगर जवाब हाँ है तो आज की बातचीत सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया, सुविधा या लत पर। दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहां एक क्लिक में दुनिया भर की खबरें, ज्ञान, मनोरंजन और अपने लोगों से जुड़ने का मौका मिल जाता है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यही सोशल मीडिया किसी को भी, स्टूडेंट से टॉपर, क्रिएटर से इन्फ्लुएंसर और छोटे शहर से बड़ी पहचान तक पहुंचा सकता है। पर जब यही मोबाइल हर 5 मिनट में हाथ में आने लगे, बिना वजह नोटिफिकेशन चेक होने लगे और बस 5 मिनट, देखते देखते 1 घंटा निकल जाए, तो समझ लीजिए सुविधा धीरे धीरे लत बनने लगी है। पहले हम सुबह उठकर भगवान का नाम लेते थे, अब लोग लाइक्स कमेंट्स देखते हैं। पहले फैमिली के साथ बैठकर बातें होती थी, अब सब साथ तो बैठते हैं पर नजरें एक दूसरे पर नहीं, मोबाइल पर होती है। दोस्तों, यह सिर्फ आदत नहीं, रिश्तों के बीच बढ़ती हुई दूरी भी है। पर हाँ, इसका अब ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है। गलती इस प्लेटफॉर्म की नहीं, गलती हमारे इस्तेमाल की है। जिस तरह चाकू से सब्जी भी कटती है और चोट भी लगती है, बस उसी तरह सोशल मीडिया से करियर भी बन सकता है और समय भी बर्बाद हो सकता है। तो क्या करें? कुछ नहीं, बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। मोबाइल को कंट्रोल करना है, मोबाइल के कंट्रोल में नहीं आना। रोज़ थोड़ा स्क्रीन टाइम फिक्स करना है, कुछ टाइम किताबों को देना है, थोड़ा समय अपने शरीर को देना है और अपने ज़रूरी लोगों यानी अपने परिवार और दोस्तों को। यकीन मानिए, असली फॉलोअर्स वही हैं जो मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं। याद रखिए दोस्तों, सोशल मीडिया हमारी लाइफ का हिस्सा होना चाहिए, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं। लाइक्स से खुशी तो मिल सकती है पर अपनापन सिर्फ अपने लोगों से ही मिलता है। तो इस चर्चा के बाद आइए सुनते हैं अनु मलिक और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में फिल्म जुड़वा टू का ये गीत। शब्द रचना है देव कोहली की, संगीत दिया है संदीप शिरोडकर ने।

0: राजा।
1: दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म जुड़वा 2 का ये गीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चलते हैं हमारे ट्यूसडे स्पेशल प्रोग्राम युवा कलाकार में, जिसमें आज आप सुनेंगे सिंगर ऋषभ दुबे से रागिनी चौबे की बातचीत।

0: युवा कलाकार सुन रहे हैं हमारे सभी साथियों का स्वागत है हमारे आज के इस क्रम में। मैं रागिनी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए युवा कलाकार के साथ। तो चलते हैं उनके पास और जानते हैं उन्हीं से उनका परिचय।
1: नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ दुबे है। मैं अंबिकापुर का ही निवासी हूँ और मैं शास्त्रीय संगीत सीख रहा हूँ लखनऊ भातखंडे से। बीपीए कर रहा हूँ। बीपीए आप लोगों को नहीं पता होगा तो बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट क्लासिकल म्यूजिक से ही।
0: बहुत बहुत स्वागत है ऋषभ जी आपका आज के हमारे इस क्रम में।
2: धन्यवाद। नमस्कार सभी।
0: तो ऋषभ, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज के इस जमाने में जहां हमारे युवाओं का खासकर रुझान वेस्टर्न संगीत वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ रहा है, तो आपके मन में ये विचार कहां से आया कि आपको शास्त्रीय संगीत में ही अपना करियर बनाना है और आपको शास्त्रीय संगीत ही सीखना है?
2: देखिए, मन में तो मेरे आया था 2016 में। मैं उस टाइम गुरुकुल में था तो उस टाइम मैंने शास्त्रीय संगीत के बारे में जाना, तब मुझे उसका महत्व समझ में आया। और देखिए, करियर बनाना एक अलग बात होती है और सीखना एक अलग बात होती है। मतलब शास्त्रीय संगीत तो हर विद्यार्थी को ही सीखना चाहिए, कुछ सीख पाते हैं कुछ नहीं सीख पाते हैं। तो मैंने उसी टाइम से सोचा था कि मुझे सीखना है शास्त्रीय संगीत।
0: बहुत अच्छी बात बताई ऋषभ जी आपने। आपके घर में और भी कोई है जिनसे आपको संगीत विरासत के रूप में मिली या फिर आपने खुद ही संगीत सीखने का विचार अपने मन में लाया?
2: घर में तो वैसे कोई इतना बड़ा सिंगर नहीं है। हम मेरे चाचा और मेरे पापा गाते हैं। मेरे पापा भजन में गाते थे पहले। मेरे चाचा की भी एक टीम है रामायण वाले, चाचा मेरे रामायण करते हैं, तो उन्हीं लोग को देख देख के थोड़ा सा मैं जागरूक होता था, पर गा नहीं पाता था मैं बचपन में।
0: जी। तो ऋषभ, शास्त्रीय संगीत सीख कर आप आगे और क्या करना चाहते हैं?
2: शास्त्रीय संगीत सीख कर तो आगे अपना करियर बढ़ाना ही चाहता, मतलब और ग्रो करना चाहता हूँ जहाँ तक आगे चला जाओ भगवान कृपा से।
0: जैसा कि आपने बताया कि आप विद्यार्थी भी हैं, संगीत एक ऐसी कला है

0: इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए होती है, हमें दिन भर रियाज करना पड़ता है। तो आप अपनी बाकी चीज़ों को और रियाज को किस तरीके से एक दूसरे से तालमेल बिठा कर चलते हैं अपने जीवन में, आप इसे किस तरीके से आप रूटीन के उसमें फॉलो करते हैं?
1: देखिए, रियाज तो मोस्ट कंपल्सरी चीज़ है हम लोगों के लिए, हम म्यूजिशियंस के लिए या किसी के लिए भी जो इस म्यूजिक लाइन में है। और रियाज के लिए तो समय निकालना ही निकालना होता है, निकालना क्या निकल ही जाता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ रियाज ही होती है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि रियाज ही से सब कुछ होना है, गला मेंटेन करना है तो रियाज सही करना है, आगे भी बढ़ना है, बड़ा सिंगर बनना है तो गले से ही बनना है ना, इसलिए रियाज तो बहुत ज़रूरी है। तो वो सब कुछ हो जाता है, समय का खेल है, सब कुछ मेंटेन रूटीन में हो जाता है।
0: जी ऋषभ, आपको घर से कितना सपोर्ट मिला?
1: घर से मुझे सपोर्ट था, पापा का थोड़ा कम था, मम्मी का था, दोस्तों का भी बहुत था। मैं गुरुकुल में था तो इसलिए पापा कुछ और चाहते थे बनना, मैं म्यूजिशियन जाता था इसलिए था। पापा का भी अब सपोर्ट है पूरा, अच्छे से है।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने कि आपको घर से पूरी तरीके से सपोर्ट मिला, आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया। तो आपने कभी सोचा कि आप सिंगर हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैंड बनाने के बारे में, या फिर जैसा आजकल चल रहा है कि लोग अपना एक छोटा बैंड बनाते हैं और जगह जगह पे कॉन्सर्ट करते हैं, तो कभी आपके मन में ये विचार नहीं आया कि आपको भी ये करना चाहिए?
1: बिल्कुल, बैंड बनाने का तो विचार सबके मन में आता है, मतलब ज़्यादातर म्यूजिशियंस के, पर वो समय के साथ ही होता है, कभी पॉसिबल हो पाता है कभी नहीं, कुछ लोग मिलते हैं कुछ लोग नहीं मिल पाते। और अभी तो हम लोग स्टूडेंट हैं तो इसलिए थोड़ा सा अभी ज़्यादा ध्यान जाता नहीं, सोचे हैं हम लोग भी बनाने को बैंड।
0: बहुत अच्छा लगा ये जान के ऋषभ। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हैं?
1: मैं अपना इंस्पिरेशन सोनू निगम को मानता हूँ, वो मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं, और के सर को मानता हूँ, ये दोनों मेरे इंस्पिरेशन हैं बचपन से ही। वैसे तो सिंगर के लिए सारे सिंगर इंस्पिरेशन होते हैं, क्योंकि सब लोग किसी न किसी जगह से, छोटी जगह से उठ के इतने बड़े स्टार बनते हैं, इतने बड़े सिंगर बनते हैं, इतने अच्छे सिंगर बनते हैं इसीलिए। और मैं अपने इंस्पिरेशन का एक गाना भी सुनाना चाहूँगा सोनू निगम जी का।

का हल्का सा एक साया है, तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ।

आँखों में तेरी अजब सी यादाएं हैं। हो आँखों में तेरी

0: हैं। धन्यवाद।
1: तो ऋषभ, आपका फेवरेट सिंगर कौन है?
0: मेरे फेवरेट सिंगर भी सोनू निगम ही है, के सर ही हैं, ये दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं। वैसे सिंगर तो सारे फेवरेट होते हैं, मतलब जो सिंगर होता है, जो म्यूजिशियन होता है, उसके सारे सिंगर फेवरेट होते हैं।
1: हमारे आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मेरा इसमें करियर बने या कुछ ना कुछ हो मेरा इस म्यूज़िक लाइन में, तो अपना पूरा सर्वस्व मत म्यूज़िक को ही समर्पित कर दीजिए। अपनी पूरा दिन, अपना पूरी दिनचर्या हुई, अपना पूरा समय हुआ, मोस्टली टाइम संगीत में ही आप गुजारिए, इसी में ध्यान लगाइए, म्यूज़िक में ही म्यूज़िक सीखने की और सीखने की कोशिश करिए। और कभी कभी ऐसा होगा कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे अपने से, आप अपने आप को अच्छा फील नहीं कभी करेंगे, सोचेंगे कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मन में ये नहीं लाना है कि चलो मैं

0: अप कर देता हूँ या छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर ऐसा कभी उल्टा सीधा महसूस हो रहा हो तो आप किसी भी बड़े सिंगर का इंटरव्यू उठा के सुनिए, उसे देखिए, तो फिर आपके अंदर थोड़ा सा और इंस्पिरेशन आ जाएगा उनको देख के कि उन लोगों ने कितना मेहनत किया तब जाके वो आज इस मुकाम पे हैं, यहाँ पर हैं। तो हमने तो अभी कोई मेहनत नहीं किया, कुछ नहीं किया।
1: बहुत अच्छा लगा ऋषभ आपसे बात करके। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप जो सीख रहे हैं, जिसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उसमें आगे बढ़ें, सफल हों। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। वैसे धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा प्लेजर है, मेरा भी प्लेजर है कि मैं यहाँ पे अपना इंटरव्यू दे पा रहा हूँ, बातचीत कर पा रहा हूँ आप लोगों से, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: दोस्तों, आज का ये क्रम युवा कलाकार बस यहीं तक। आज के इस क्रम से मुझे यानी अपनी दोस्त रागिनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

दोस्तों अभी आपने क्रम युवा कलाकार में सुना सिंगर ऋषभ दुबे से रागिनी चौबे की बातचीत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं विशाल मिश्रा और सचिन जिगर की आवाज में फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो से ये गीत। गीतकार हैं प्रिया सरैया, संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

दोस्तों आइए सुनते हैं सोनू निगम, अमृता और जयश गांधी की आवाज़ में फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

दोस्तों अभी आपने सुना अर्श किंग और सचिन जिगर की आवाज में फिल्म स्त्री का ये गीत। इसी के साथ वक्त हो चला है दोस्तों आप सभी से विदा लेने का। जाते जाते आपको बता देते हैं कल की युववाणी के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे युवा सोच एक नए विषय पर और फरमाइशी क्रम महफिल। इसी के साथ आज की युववाणी से दीजिए इजाजत, आपकी दोस्त शालिनी चौबे को नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। समाचार थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्याय संगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है उम्मीद विषय पर विचार बिंदु। आलेख संकलन और वाचन स्वर है शबनम खानमकर।
1: उम्मीद यानी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी ताकत। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब शायद इसकी अहमियत ज्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन जब हालात जरा से डगमगाने लगते हैं, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, जब रास्ते धुंधले नजर आते हैं और जब मन हार मानने लगता है, तब उम्मीद ही वो आवाज बनकर उभरती है जो कहती है, थोड़ा और सब्र करो, अच्छा वक्त जरूर आएगा। आज के दौर में जब लोग तनाव, चिंता और भागदौड़ से घिरे हुए हैं, तब उम्मीद की अहमियत और बढ़ जाती है। उम्मीद हमें सकारात्मक सोच देती है, हिम्मत देती है और ये एहसास कराती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, इसमें सुख भी आते हैं और दुख भी, सफलता भी मिलती है और असफलता भी। लेकिन जो चीज इंसान को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देती है वो है उम्मीद। उम्मीद हमें ये यकीन दिलाती है कि आज का संघर्ष कल की सफलता का रास्ता बन सकता है। कई बार हम देखते हैं कि एक किसान तपती धूप में मेहनत करता है, उसे नहीं पता कि मौसम कैसा रहेगा, लेकिन फिर भी वो बीज बोता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। एक विद्यार्थी घंटों पढ़ाई करता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। एक रोगी दवा खाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है, उसे विश्वास होता है कि वो स्वस्थ हो जाएगा। वास्तव में उम्मीद ही वो अदृश्य शक्ति है जो जीवन को गति देती है। उम्मीद का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि ये इंसान को टूटने नहीं देती। जब सारी दुनिया किसी व्यक्ति से कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी उम्मीद उसके कानों में धीरे से कहती है, एक बार और कोशिश करो, और कई बार वही एक कोशिश जीवन बदल देती है। लेकिन उम्मीद का मतलब केवल इंतजार करना नहीं होता, उम्मीद के साथ मेहनत, धैर्य और विश्वास भी जरूरी हैं। अगर हम सिर्फ बैठकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करते रहें तो उम्मीद अधूरी रह जाएगी। उम्मीद तब सबसे अधिक सुंदर लगती है जब उसके साथ कर्म जुड़े हों। जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ सा लगता है, लेकिन याद रखिए, सबसे घना अंधेरा भी सूरज को उगने से नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरह कोई भी कठिनाई उस इंसान को नहीं रोक सकती जिसके दिल में उम्मीद जिंदा हो। उम्मीद वो पुल है जो आज की मुश्किलों को कल की खुशियों से जोड़ता है। उम्मीद वो रोशनी है जो

0: तब भी दिखाई देती है जब चारों ओर अंधेरा हो। उम्मीद हार और जीत के बीच खड़ी वो ताकत है जो इंसान को दोबारा खड़े होने का साहस देती है। जिसके पास उम्मीद है उसके पास आगे बढ़ने का कारण है। किसी ने बहुत सही कहा है, कभी भी अपनी उम्मीदों का दामन मत छोड़िए। हो सकता है कि मंजिल देर से मिले, लेकिन अगर हौसले जिंदा हैं और उम्मीद कायम है तो सफर कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि उसके बाद सुबह ही ना आए। उम्मीद दरअसल दिल की वो खिड़की है जिससे रोशनी हमेशा भीतर आती रहती है। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने दिल की इस खिड़की को कभी बंद मत होने दीजिए। किसी ने ये बात भी बहुत सही कही है कि उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि चमत्कार अक्सर आखिरी कोशिश के बाद ही होते हैं।
1: उम्मीद विषय पर अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु। आलेख संकलन और वाचन स्वर था शबनम खानम का। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।

छत्तीसगढ़ समेत देशभर में काली ले होही लागू। राज्य सरकार ह सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% के सीमा ला खत्म कर दे हे। औ सरगुजा जिला में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आज सिरागे, समापन समारोह में मुख्यमंत्री होइन शामिल। अब समाचार विस्तार ले। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में काली 1 जुलाई ले लागू हो जही। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के जगह लिही। एकर तहत हर एक ग्रामीण परिवार मल्ला हर वित्तीय बछर में 125 दिन के रोजगार देवाए के गारंटी दे जाही। ये योजना के तहत कोनो भी मनखेला बेरा मा काम नहीं मिली त ओला बेरोजगारी भत्ता दे के प्रावधान घलो है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र मन में सड़क, तरिया, जल संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिसंपत्ति के निर्माण और आने आने विकास काम मन ला प्राथमिकता दे जाही। छत्तीसगढ़ में ये योजना के प्रचार प्रसार पर ग्राम सभा, चौपाल, पोस्टर, बैनर, मुनादी, रथ प्रचार और डिजिटल माध्यम के उपयोग करेगी। उन्हें सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, स्व सहायता समूह के माइलोगिन, जनप्रतिनिधि और स्थानीय सामाजिक संगठन रहा ले लोगन मल्ला योजना के जानकारी देगी। एकर अलावा ग्राम और जनपद पंचायत के संगे संग जिला स्तर में प्रशिक्षण बैठक और ग्राम सभा के आयोजन करेगी। केंद्र सरकार है पेट्रोल और डीजल के बेचे और खरीदी में लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध ला 1 जुलाई ले हटाए के फैसला करे है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है कहे है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तेल विपणन कंपनी के खुदरा पेट्रोल पंप में अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय डहाले कहे गए कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पाद के आपूर्ति सामान्य हो गए है और पेट्रोल डीजल पूरा मात्रा में हवे। एकर सेती जनहित में ये अस्थायी रोकला वापिस लेके फैसला ले गए है। नई दिल्ली में राखे गए 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मटेरियल बैंक ला राष्ट्रीय स्तर में सराहना मिले है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत विकसित ये मॉडल की सराहना करत ग्रामीण आवास निर्माण लग गति देने वाला बतायें। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व तो उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा हा करें। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहने कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत के सपना पूरा नहीं हो सका। हरियाणा के हिसार में खेत बचाव अभियान के समापन समारोह ला संबोधित करत श्री चौहान कहने कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करे में काम करत है जौन हा माटी और ओमा जरूरी उर्वरक के मात्रा के बारे में जानकारी दी है। ओमन किसान मला जैविक खेती अपनाए के सलाह दी। राज्य सरकार है सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% की सीमा ला खत्म कर दे है। अब किसान मल्ला पाछू खरीफ बछर जैसन उखर पात्रता के मुताबिक एक मुश्त यूरिया देवाए जाही। प्रदेश में यूरिया के पर्याप्त मात्रा देखत पहली लागू कुछ एक रोक मल्ला खत्म कर दे गए है। जांजगीर चांपा जिला के कृषि विभाग

0: के उप संचालक राकेश शर्मा बताइने कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होए के सेती किसान मन ला एक मुश्त यूरिया दे जाही। उहें कोनो समिति में स्टॉक के कमी होए में बाचे मात्रा ला यूरिया पहुंचते किसान मन ला बांटे जाही। उहें वैश्विक परिस्थिति के सेती रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता में पड़त प्रभाव ला देखत कृषि विभाग डाले राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग ला बढ़ावा दे जावत है। राज्य सरकार है किसान मन ला नैनो उर्वरक के प्रति जागरूक करे बर अभियान चलावत है। कृषि विभाग है किसान मन ले अपील करे है कि अपन तीर ले सहकारी समिति और कृषि विभाग के अधिकारी मन ले संपर्क करके नैनो डीएसपी और नैनो यूरिया के वैज्ञानिक उपयोग के जानकारी लेवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाचे समाचार कोती। सरगुजा जिला के रामगढ़ में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आसिर आगे समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुदेश साय शामिल हुई। ये मौका में श्री साय कहने कि रामगढ़ सरगुजा के हजारों बच्चर जुना सांस्कृतिक चेतना कला आस्था गौरवशाली इतिहास के जीवंत प्रतीक हरय। ओमन कहने कि विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति इतिहास साहित्य और पर्यटन के संगम हरय। ओमन कहने कि छत्तीसगढ़ के धरती प्राकृतिक संपदा के संगे संग सांस्कृतिक और पुरातात्विक रूप में घलो विश्व स्तर में बड़का चिन्हारी राखथे। ये मौका में मुख्यमंत्री है रामगढ़ के विकास पर 1 करोड़ रुपया और उदयपुर डूमर डीहला मिला के नगर पंचायत बनाए के घोषणा करी। ये दौरान मुख्यमंत्री है विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात सीता बेंगरा गुफा जोगीमारा गुफा और क्षेत्र के अनूठा प्राकृतिक धरोहर हाथी पोल के अवलोकन करी। ये मौका में कृषि मंत्री रामविचार नेताम पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल समेत आने आने जनप्रतिनिधि मौजूद रही। भारतीय जनता पार्टी है महिला मोर्चा में संभाग प्रभारी और सह प्रभारी मन के नियुक्त करे है। ये सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के सहमति ले प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडे जारी करीन है। हेमलता चंद्राकर ला रायपुर संभाग के प्रभारी और सुषमा खलकोला सह प्रभारी नियुक्त करे गए है। ऐसने है शीतल नायक ला दुर्ग संभाग के प्रभारी और वर्षा सिंह ला सह प्रभारी बनाए गए है। रंजिता रंधावाला बस्तर संभाग के प्रभारी और जानकी कोरसाला सह प्रभारी फुलेश्वरी पैगराला बिलासपुर संभाग के प्रभारी और किरण साहूला सह प्रभारी के संग किरण मरकामला सरगुजा संभाग के प्रभारी और रंजनी तिवारी ला सह प्रभारी बनाए गए हैं। रथ यात्रा के मौका में यात्री मन के सुविधा बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाए के फैसला ले है। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई के गोंदिया ले पुरी पर चलही। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई के पुरी ले गोंदिया पर रवाना होगी। ट्रेन के स्टॉपेज डोंगरगढ़ राजनांदगांव दुर्ग रायपुर समेत कई ठीन प्रमुख स्टेशन मन में रही। उन्हें हटिया LTT हटिया समर स्पेशल ट्रेन के अवई जवई 15 जुलाई तक बढ़ाए गए हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF मां आरक्षक के पद में भर्ती पर कथित रूप से फर्जी जातीय निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे के मामला में आरक्षक की सेवा खत्म कर दी गई है। उन्हें उतई पुलिस आरक्षक के पद में चयनित आरोपी मोहित के खिलाफ अपराध दर्ज करके मामला ला कार्यवाही के बर मध्य प्रदेश पुलिस ला भेज दे है। मिले खबर के मुताबिक SSC GD भर्ती परीक्षा 2025 के तहत भर्ती प्रक्रिया के दौरान आरोपी मन फर्जी जातीय और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे रही। दस्तावेज के सत्यापन के बाद जातीय और निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाएगी जेखर बाद आरक्षक के सेवा समाप्ति के कार्यवाही करेगी। अब मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरा छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गए हैं। एक असर ले पूरा प्रदेश में हल्का ले मध्यम वर्षा के दौर शुरू हो गए हैं। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी आकाशवाणी समाचार ले गोट बात करत बताए हैं कि जुलाई महीना में मानसून की गतिविधि में बढ़ोतरी

0: बढ़ोतरी होए के संभावना है। यही बीच सरगुजा जिला में काली हवा गरेर और तेज वर्षा के दौरान गाज गिरे ले 5 साल के लड़का समेत 3 जिन लोगों के मौत हो गए। उन्हें 1 जिन नोनी गंभीर रूप से घायल हो गए। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। वीवी जी रामजी योजना छत्तीसगढ़ समेत देश भर में काली ले हो ही लागू। राज्य सरकार है सहकारी समिति मन के माध्यम ले किसान मन ला देवैया यूरिया ऊपर लागू 80% की सीमा ला खत्म कर दे है। और सरगुजा जिला में राखे गए 2 दिन के रामगढ़ महोत्सव आसिर आगे समापन समारोह में मुख्यमंत्री हो शामिल। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
2: छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। इसमें आइए पहले सुनते हैं अमृत मिंज और साथियों के स्वरों में ये सादरी भजन गीत।

अमृत मिंज और साथियों के गाए इस सादरी भजन गीत के बाद आइए अब सुनते हैं तिलन साहित्य और साथियों की आवाजों में ये सादरी अदरतिया कर्म गीत।

तिलन साहित्यज्ञा और साथियों के गाए इस अद्वितीय कर्मा गीत के साथ ही गोधूली कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त शाम के 6:30 होने वाले हैं। अब आप हमारे मीडियम वेब पर ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के मध्य लंदन ओवल में खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनेंगे। FM बैंड और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम के शुरुआत में आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गीत। शान और हिमेश रेशमिया की आवाज में गीत लिखा इरशाद कामिल ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म मोहब्बतें से। आवाज है उद्भव मनोहर शेट्टी, श्वेता पंडित और इरशाद का। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सचिन और संगीत है जतिन ललित का।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जावेद अली की आवाज में फिल्म ये साली जिंदगी का गीत। शब्द रचना है स्वनंद किरकिरे की और संगीत है निशान खान का।

जावेद अली की गायब फिल्म ये साला जिंदगी के इस गीत के साथ ही माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में कल से लागू होगी। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 उत्कृष्ट

उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को दिया अंतिम रूप। अब इन्हें शासकीय सेवा में लेने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज से पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देशभर में कल 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। ये योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी।

0: ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का स्थान लेगी। इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत यदि किसी व्यक्ति को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, तालाब, जल संरक्षण, सिंचाई, वृक्षारोपण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री तथा वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा पेट्रोल पंपों पर अब सामान्य व्यवस्था के तहत ईंधन की बिक्री होगी। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य हो गई है और पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी है।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है, जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहाँ भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: इस बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान द्वारा आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के अंतर्गत मढ़ी ग्राम पंचायत में खेत बचाओ अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां अपनाने और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त कर दी है। अब किसानों को पिछले खरीफ वर्ष की भांति उनकी पात्रता के अनुसार एकमुश्त यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पहले लागू कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले में कृषि विभाग के उपसंचालक राकेश शर्मा ने बताया कि संबंधित सहकारी समिति में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने पर किसानों को एकमुश्त यूरिया प्रदान किया जाएगा। वहीं किसी समिति में यदि स्टॉक की कमी है तो किसानों को किस्तों में यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा। इस बीच वैश्विक परिस्थितियों के कारण रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए कृषि विभाग द्वारा राज्य में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज रायपुर में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। इस सूची में 156 खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। ये खिलाड़ी 20 अलग अलग खेलों से संबंध रखते हैं। अनुमोदित खिलाड़ियों की सूची को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा। विभाग द्वारा इसे अधिसूचित करने के बाद इन खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में लेने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। बैठक में बताया गया कि राज्य में अब तक 182 उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जा चुके हैं। भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बिलासपुर उर्गा खंड पर आम नागरिकों और सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस निर्माणाधीन सड़क पर आवागमन रोकने के लिए सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट बंद कर दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सरगुजा जिले के रामगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव का आज समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। श्री साय ने कहा कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के रूप में विख्यात ये स्थल संस्कृति, इतिहास, साहित्य तथा पर्यटन का अद्भुत संगम है।
2: सरगुजा का ये क्षेत्र बहुत ही पवित्र है, सांस्कृतिक रूप में बहुत ही सुंदर है और हम लोगों की आस्था और समृद्ध सांस्कृतिक का एक साक्षात उदाहरण है ये रामगढ़। और इस रामगढ़ का उल्लेख हमारे देश के वेद, पुराण, उपनिषद सब में मिलता है। विख्यात कवि कालिदास

0: मेघदूतम की रचना यहीं पर किए हैं।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रामगढ़ के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए और उदयपुर डूमरडीह को मिलाकर नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ से इस वर्ष हज यात्रा पर गए सभी 813 हज यात्रियों की सकुशल स्वदेश वापसी हो गई है। राज्य हज कमेटी के अनुसार हाजियों का अंतिम जत्था कल मुंबई पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। हज कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि इस वर्ष राज्य से 813 श्रद्धालु हज यात्रा पर गए थे। इनमें 417 पुरुष और 396 महिलाएं शामिल हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच छत्तीसगढ़ के तत्वावधान में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विषय पर राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता से धार्मिक आस्था, पूजा पद्धति और धार्मिक परंपराएं प्रभावित नहीं होंगी। उन्होंने यूसीसी के संबंध में लोगों से जागरूक होने और भ्रांतियों से बचने का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसके असर से पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बताया कि जुलाई में मानसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
2: आज दिनांक 30 जून तक साउथवेस्ट मानसून जो है पूरा प्रदेश कवर कर चुकी है। पूरा प्रदेश में वर्षा का गतिविधि जो है 1 जुलाई से लेकर आगामी 4-5 दिन तक वृद्धि होने की संभावना है। मानसून सक्रिय होने की संभावना है, जिसकी वजह से हर रोज 1-2 स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की संभावना है। आज का स्थिति में देखा है तो पूरा प्रदेश में डेफिशिट रेनफॉल लगभग -64% जो है वो डेफिशिट में है, और आगामी 3-4 दिन में मानसून सक्रिय होने के वजह से ये थोड़ा कम होने की संभावना है।
1: इस बीच सरगुजा जिले में कल आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 5 साल के बालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया पुरी गोंदिया के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को गोंदिया से पुरी के लिए चलेगी। वापसी में ये ट्रेन 3, 10, 17 और 30 जुलाई को पुरी से गोंदिया के लिए रवाना होगी। ट्रेन का ठहराव डोंगरगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर रहेगा। वहीं हटिया LTT हटिया समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन 15 जुलाई तक बढ़ाया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा में संभाग प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्तियां की हैं। ये सूची भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी नवीन मार्कंडे ने जारी की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में आरक्षक पद पर भर्ती के दौरान कथित रूप से फर्जी जाति और निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के मामले में उतई पुलिस ने संबंधित आरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस आरक्षक की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। बलरामपुर में आग बुझाने में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने फायर इंचार्ज समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। बालोद जिले में पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने 7 लोगों से लगभग 25 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के डोंगरीपाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 94 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 9,40,000 रुपए आंकी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना देश भर में कल से लागू होगी। राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिए जाने वाले यूरिया पर लागू 80% की सीमा समाप्त की। राज्य सरकार ने प्रदेश के 156 उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची को दिया अंतिम रूप। अब इन्हें शासकीय सेवा में लेने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून आज से पूरे छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है।
4: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच लंदन ओवल में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं।

मीडियम वेव 238.0 नैनोमीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। शाम 7:20 पर चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत 7:30 पर किसानवाणी में आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम। विषय है खरीफ फसलों में समन्वित पोषक प्रबंधन, मृदा में पीएच मान का महत्व और मृदा सुधार की तकनीक। विशेषज्ञ हैं स्वर्गीय रामचंद्र सिंहदेव कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बैकुंठपुर कोरिया के मृदा वैज्ञानी डॉक्टर आशीष सिंह। रात 8 बजे सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम सुनेगा इंस्टा फरमाइश। 9:15 पर चित्रपट संगीत और 9:30 पर मनी टॉक और मंथन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं के ईमेल पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल की गूंज हम प्रसारित करेंगे रात 10 बजे और 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे।

हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु का प्रसारण होगा। 6:35 पर श्री रामचरित मानस का गायन हम आपको सुनवाते हैं। 6:45 पर कृषि संबंधित सामयिक सुझाव आप सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बात में। सुबह 7 लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल हम प्रसारित करेंगे। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 7:15 पर। 7:30 पर जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन सकते हैं। 8:30 पर शहीदों की वीर गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुनेगा वीर वंदन। गांधी वांग्मय पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण किया जाएगा सुबह 9:00। 9:15 पर बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का प्रसारण किया जाएगा। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तारानी हम पेश करेंगे सुबह 10:00। 11:05 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण होगा। 12:00 NCERT और CIT द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं। 12:30 पर शीर्षक गीत पर आधारित कार्यक्रम चयन का प्रसारण होगा। 1:10 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन का प्रसारण होगा। इसमें पत्रों और मेल पर आधारित कार्यक्रम गोइठ बात आप सुन सकते हैं। ईमेल की गूंज कार्यक्रम सुनेगा दिन में 1:40 पर और रात 10:00। 2:30 पर गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम गीत कंधा प्रसारित करेंगे। शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा हमर हाथी हमर गोठ। 5:05 पर सांध्यकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:30 पर युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें क्रम युवा सोच और मुझे कुछ कहना युवा श्रोता सुन सकते हैं।

शाम 6:20 पर लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली आप सुनते हैं। 6:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी हम प्रसारित करेंगे। 7:05 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण होगा। 7:20 पर किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें चर्चा का विषय होगा पोषक अनाजों से समृद्धि। 8:00 सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुनेंगे 8:00। 9:15 पर चित्रपट संगीत का प्रसारण होगा। 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन सुनेगा 10:30 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हस्तीमल हस्ती के इस गजल के साथ, जिसे आवाज दिया है पंकज उदास ने।

ए हरिहरन के गाए जफर कलीम की इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:20 और 17 सेकंड्स हुए हैं। आइए अब सुनते हैं ग्रामीण श्रोताओं और किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: परसु भैया राम राम।
1: बोलू भैया राम राम।
0: और हमारे चौपाल सुनवैया जम्मो श्रोता मन कर बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम चौपाल में।
1: अभी दो तीन दिन से बढ़िया बरखा होते है बोलू भैया।
0: हाँ भैया, आज तो नगरे अंबिकापुर में भी हुई से, बाकी अंबिकापुर के किनारे किनारे तो होत रही।
1: हाँ।
0: बाकी अभी कर जो समय है जब हम अपन कार्यक्रम ला करत हन तो अंबिकापुर में बढ़िया बरसात होता है।
1: और आज हमारे विशेष कार्यक्रम रहे हेलो किसान वाणी, तो ये जो बरखा गिरत है कैसे कैसे एकर प्रभाव पड़ी हमारे खेती बाड़ी में और तैयारी में, एकर बारे में भी हम बातचीत करब उनकर से ही। लेकिन मैं कहते रहन कि किसान मन बर सरकार की तरफ से कई ठो योजना निकलेल, वही में से एक ठो योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
0: हाँ भाई, बहुत बढ़िया योजना है। जैसे हमन देखब नहीं परसु भैया, जैसे आम मन से मन कर बात करब तो मन अपन पेंशन कर कोई न कोई योजना ला लेते हैं, वही कर से किसान मानधन योजना भी है। और एकर में जैसे किसान जो छोटा किसान है जेकर उम्र 40 वर्ष तक कर अंदर आए, उमन छोटा छोटा न्यूनतम अपन उम्र के हिसाब से अंशदान ला करते हैं, और उसके बाद जब उमन की उम्र 60 साल हो जाए उसके बाद 3,000 रुपया प्रति महीना उमन ला पेंशन के रूप में या किसान मानधन योजना जिला हमन कहब एकर माध्यम से मिले लगते हैं।
1: स्वैच्छिक पेंशन योजना है बोलू भैया।
0: हाँ।
1: और आयु सीमा एकर राउर सही कहे ना 18 से 40 बछर के बीच योजना में शामिल हो सकते हैं, और किसान जितना मासिक अंशदान जमा कर ही उतना ही राशि केंद्र सरकार भी जमा कर ही।
0: हाँ।
1: तो ये बराबर बराबर के हिस्सा रही और उकर बाद वाला 3,000 रुपये मासिक जो पेंशन मिल पाही, माने 36,000 रुपये एक साल में सालाना होकर पेंशन के रूप में भेटाई जाएगी। तो छोटा और सीमांत किसान इमन पात्र बन सकते हैं।
0: और एक में एक ठन और अच्छा बात है परसु भैया कि भाई अगर कोई पेंशनधारी किसान है उकर मृत्यु हो जाता है तो उकर जो घरवाली रही चाहे उकर जो आश्रिता है जीवन साथियां हैं उमला 50% मतलब 1,500 रुपया प्रति माह पूरा उकर जीवन भर मिली।
1: ये योजना कर मैं तो कहता हूँ भोलू भैया एकर लाभ ले लेना चाहिए। मामूली जो हमन के अंशदान देना पड़ेल, जैसे आयु के हिसाब से अगर हमन देखब तो 18 बछर कर अगर है तो 55 रुपया हमन के पड़ी
0: प्रति माह कर
1: प्रति माह की। 25 बछर के है तो 80 रुपये प्रति माह जमा करना पड़ी, और 40 बछर तक हो ही तब तक जमा करना है।
0: 200 रुपया अधिकतम है
1: अधिकतम, और 30 बछर तक 110 है। 35 साल कर अगर कोई किसान है तो
0: अलग अलग आयु वर्ग कर

0: अलग अलग
1: और
0: हिसाब है।
1: 40 बछर के है तो 200 रुपया जमा करके
0: हाँ
1: ओकर बाद पेंशन करो दावेदार हो जाही। तो आवेदन भी बड़ा आराम से कर सकते हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी विवरण में लगेल।
0: बहुत बढ़िया भाई, वृद्धावस्था में नियमित रूप से आय का स्रोत बन जाते, परिवार ला आर्थिक सुरक्षा मिल जाते, संगे संग सरकार का समान अंशदान से अधिक लाभ हमारे किसान भी अभिनी मन पाए लेते हैं, संगे संग किसान मन ने सामाजिक सुरक्षा कर भावना भी मजबूत होते हैं।
1: कोई भी CSC जो आसपास के है, वह कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ पर कंप्यूटर के काम होल, ऑनलाइन आधार पर काम होल, किसान मन जानते हैं, वहाँ जाकर के योजना के बारे में आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं।
0: तो भाई जो किसान भैया बहनी मन अभी तक ये योजना का लाभ ला नहीं ले पाई है, चूक गई ना है, तो जाए के अपन नजदीकी जो लोक सेवा केंद्र है, चाहे अपन ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं, उमन से जाए के मिल के योजना के बारे में जानकारी ले लें और जो प्रक्रिया है वो बढ़िया से और जल्दी से पूरा कर लें।
1: एक और बड़ा महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में हम बातचीत करते हैं भोले भैया, वो है हमारे प्रधानमंत्री कर 15 सूत्री कार्यक्रम है। और इसमें 15 गोट सूत्र है, अलग अलग जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मन है उमन ला अलग अलग योजना के तहत लाभ दहल जाते हैं। जैसे इसमें एक उस्ताद योजना भी है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो पारंपरिक कारीगर मन है और शिल्पकार मन है, उमन में कौशल विकास बढ़ाए भर और पारंपरिक कला और हस्तशिल्प ला बाजार से जोड़े भर, इसमें प्रशिक्षण भी दहल जाए, डिजाइन विकास करना, विपणन में सहायता देना, ये सब उस्ताद योजना कर अंतर्गत शामिल करल गई से।
0: एक योजना है भैया हम सफर योजना, एकर माध्यम से हमन देखब तो अलग अलग राज्य में अलग अग रूप से संचालित होते, बाकी एकर मतलब है कि अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित जो भी राज्य स्तरीय योजना है ओला हम सफर योजना हमन कथन। एकर उद्देश्य है कि भाई सामान्यतः जितना भी पात्र लाभार्थी हैं उमन ला सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और अन्य जो कल्याणकारी योजना है ओकर पूरा सुविधा ला उपलब्ध कराना।
1: 15 गोट है, नई रोशनी योजना भी है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो महिला मन है ओमन में नेतृत्व विकास करे बर, महिला मन बर शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग सहायता, सरकारी योजना मन कर कैसे कैसे लाभ ले सकते हैं, कानूनी अधिकार कौन कौन सा है ओला बढ़ाए बर, डिजिटल रूप से साक्षर करे बर, ओकर बर जागरूक करे बर ये योजना काम करे।
0: एक ठन और योजना का अंतर्गत है भैया, जैसे हम देखे प्रधानमंत्री आवास योजना कर हम बात करते हैं, वही कस ये प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम में भी अल्पसंख्यक जो समुदाय कर लोग हैं उमन बर सुरक्षित आवास कर बारे में व्यवस्था करल गई सा है। एकर अंतर्गत जितना भी गरीब और पात्र परिवार हैं उमन ला सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराए कर योजना ये प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मिलकर संचालित होता है।
1: और कई ठो है, जैसे नई मंजिल योजना है, सीखो कमाओ योजना है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो युवा मन है उमन ला कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करे बर सीखो कमाओ योजना, ये प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय
0: भारत सरकार
1: कर योजना है जो 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल करल गई से।
0: हमन देखम नहीं भैया तो अल्पसंख्यक समुदाय कर जो भी बाबू नोनी मना है, चाहे सियान मना है, चाहे जो भी आयु वर्ग कर हैं उमन बर सरकार के तरफ से प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत कई प्रकार कर अलग अलग प्रावधान करल गई सा है, जेकर माध्यम से जैसे रौरे बताएं कि भाई प्रशिक्षण भी देते हैं, फिर कोई रोजगार करना है तो अगर ऋण भी कम ब्याज दर में उपलब्ध हो जाते हैं, उन्हें सिखाते भी सीखे कर अवधि में भाई छात्रवृत्ति के रूप में भी कुछ सहायता देते हैं और बढ़िया जब सीख जाते हैं वो घनी भाई रोजगार करे बर भी व्यवस्था बनाते हैं।
1: तो ये सब ला देख लें, समझ लें और योजना का लाभ हमन के जरूर लेना चाहिए। एकर अंतर्गत नई उड़ान है, हमर धरोहर है, पढ़ो परदेश है, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना है, तो ये सब मतलब पढ़े पर भी पढ़े कर कोचिंग अगर है उकर तैयारी करे पर भी, विदेश जाए पर, विदेश में शिक्षा ले पर, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण योजना है।
0: बारे में आज हमन देखम नहीं भैया तो अल्पसंख्यक समुदाय कर जो बाबू नोनी मना है
1: हाँ।
0: अगर उमन आज पढ़ना चाहता है तो देश से लेकर विदेश तक का पूरा व्यवस्था सरकार की तरफ से करल जाता है। तो बढ़िया है भैया, बाकी एक ठन और हमला ध्यान रखना चाहिए कि बरसात कर शुरुआत होएगी इसे
1: हाँ।
0: ऐसे में भाई हमला खेती पाती कर तैयारी में बढ़िया भीड़ जाना है और एक बात कर विशेष ध्यान रखना है कि खेती पाती अनिश्चितता कर समय रथे वो घनी हमला प्रधानमंत्री कर जो योजना है फसल बीमा योजना ओकर बारे में भी हमला अपन रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: काबर की ऐसे में कहीं जब कोई प्राकृतिक आपदा की स्थिति बनत है, चाहे कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें किसान कर जो लागत है ओहर भी वसूल नहीं हो पाए की स्थिति बने, वो घनी कम से कम भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर माध्यम से हमला कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी।
1: तो जो मंत्रालय कर पोर्टल रहल आजकल मोबाइल के माध्यम से हमन ओमें जानकारी ले सकत हन, एकर अलावा जो संबंधित अधिकारी मन विकास खंड स्तर पर चाहे जिला स्तर पर हमन देखथन जनपद पंचायत में भी अधिकारी मन बैठे रहते हैं, पंचायत में हमर सरपंच सचिव के पास पूरा जानकारी रहे तो जान

0: जानकारी जाके लेना चाहिए और योजना बनकर लाभ हमन के लेना चाहिए। और कहीं अगर शिकायत है, आजकल तो ऑनलाइन आधार पर शिकायत भी कर सकते हैं, बोलो भैया कि हमन के योजना का लाभ नहीं मिली, चाहे योजना मिले में लापरवाही होते हैं, तो ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं
1: और शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं आजकल कि हमन शिकायत करें ओकर स्थिति का है, जांच में का चलता है, सब जन हमन बढ़िया से देख सकते हैं।
0: छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री जी का एक ठो आपातकालीन एक ठो शिकायत नंबर
1: ऑनलाइन का पोर्टल शुरू हुई,
0: पोर्टल शुरू हुई से ओमे फोन करके कोई भी आदमी अपन जो सही शिकायत है वो शिकायत दर्ज कराए सकते हैं, उसका पूरा स्थिति कर जानकारी ओमे भेटाई जाए। तो 7:30 बजे वाला है बोलू भैया, और हमार आज के दिन विशेष कार्यक्रम रहे ओकर बारे में ओला सुनना भी है, तो प्रायोजित कार्यक्रम है एक कार्यक्रम की तरफ चलत ही, कार्यक्रम है किसान वाणी और एकर अंतर्गत आज हमन सुनब हेलो किसानवाणी कार्यक्रम।
1: सजीव कार्यक्रम है, किसान भैया बहनी मन फोन भी कर सकता है।

0: किसान वाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और आज के दिन हमन हलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनथन और सीधे सीधे लाइव सजीव जिला कथन ओकर माध्यम से हमन कार्यक्रम प्रस्तुत करथन। और आज हलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमार साथ विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, इनका नाम है, सहायक प्राध्यापक हैं मृदा विज्ञान विभाग कर स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र बैकुंठपुर कोरिया में पदस्थ हैं। इतना दुरिया से आए हैं, बीच बीच में पानी भी गिरत रही, अच्छा बरखा और जो बादल भी गरजत रही, बहुत तेज बरखा कहीं कहीं पर गिरी, अंबिकापुर में भी गिरी। तो डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत स्वागत कर रही, इतना दुरिया से आए ना, बहुत देर से राउर इंतजार भी कर रही कि कब राउर की बारी आई और कब कार्यक्रम शुरू हो पाई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और कहीं तकलीफ तो नहीं हुई साय जाए में?
1: नहीं, पानी तो गिरा बीच में और बाकी कोई तकलीफ नहीं है।
0: हाँ, हम सजीव बैठे हैं डॉक्टर साहब, फोन आई हमारे सुनोइया भैया बहनी मनकर, तब तो जवाब दे। मैं पूछना चाहते हैं बोलो भैया कि जो अभी जो बरखा गिरता है,
1: हाँ,
0: ये कैसे हमन प्रबंधन करी, ये किसान भैया मन ला का करना चाहिए, अभी के समय में कितना फायदेमंद है, और जो खरीफ कर हमारे जो तैयारी है ओकर बर हमन कैसे अब शुरुआत कर ली, ये पानी कितना रूप से हम राउर कैसे देखा थी ये पानी ला?
1: हाँ, जैसे कि अभी पानी लेट हुआ है तो बाकी साल के जैसे अभी नहीं है, तो इसके लिए हमको व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखिए जैसे पानी की कमी देख रहे हैं, तो हम अभी हमारे मुख्य फसल जैसे कि धान है ना, तो धान के लिए हम ये देख सकते हैं कि हम लोग जो बुआई है खुर्रा बुनी पे जा सकते हैं हम लोग, है ना, जिसको खुर्रा बुनी बोलते हैं,
2: यानी छिटकवा बोलते हैं।
1: हाँ, छिटकवा यानी कि जिसमें कम पानी में जिसमें खेती हो जाता है, हम उस पे जा सकते हैं। क्योंकि मुख्यतः इधर क्या करते हैं कि रोपाई करते हैं, है ना, जो पानी पे निर्भर रहते हैं उसमें पानी भी बहुत व्यर्थ हो जाता है, और उत्पादन में भी उन दोनों के उत्पादन में ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, है ना। लेबर खर्चा देखेंगे, बाकी को मिला के देखेंगे तो दोनों लगभग बराबर आ ही जाता है। तो एक चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग अब इसके व्यवस्था के लिए हम लोग सूखा सहनशील, है ना, सूखा सहनशील जो वैरायटी है उसको हम लगा सकते हैं,
2: इसके पीछे कम अवधि कर फसल हम लेना चाहिए।
1: हाँ, तो वो कर सकते हैं, है ना। तो और इसके प्रबंधन के लिए हम लोग ये देख सकते हैं, क्योंकि अगर सूखा लगा रहे हैं हम लोग, है ना, तो ये इसमें फर्टिलाइजर का जो है यानी उर्वरक का इस्तेमाल और बढ़ जाता है। तो उसी के लिए हम लोगों को क्या है कि एकीकृत पोषक तत्व तो प्रबंधन करना है, है ना, उसके लिए हमको आना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अभी केवल पूरे निर्भर किस पे हो गए हैं, केवल हम लोग निर्भर हो गए हैं उर्वरक के ऊपर, ठीक है। तो साथ साथ में हमारा लक्ष्य है कि एकीकृत पोषक तत्व तो प्रबंधन, है ना, जिसको समन्वित पोषक तत्व तो प्रबंधन कहते हैं। आज का हमारा जो विषय है
0: खरीफ फसल में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन,
1: है ना
0: जी।
1: तो इसके लिए हमको पहले से तैयारी करना होता है, है ना। जैसे कि अभी हमारा आ गया महीना जून, है ना, तो जून महीना
0: जून तो खत्म हो चुका है।
1: हाँ, मतलब

0: आज जून है, अब जुलाई आए वाला
1: जुलाई आए वाला
0: है ना, तो हम का कर सकते थी कि हम केवल उर्वरक पे निर्भर ही, तो इसके साथ साथ हम किस पे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं कि जैविक केयर है ना, जैविक में जैसे आता है गोबर के खाद हो गए है ना, जिस पे हो गए कंपोस्ट खाद हो गए है ना, हम केचुआ खाद बना लिए है ना, उस पे चल दिए है ना, साथ साथ हम चल जा सकते हैं जैव उर्वरक पे है ना। तो ये सब जो है इनके विकल्प के रूप में हम लोग क्या पूरा का पूरा हम लोग का अभी ध्यान किस पे है कि पूरा का पूरा हम कर रहे हैं उर्वरक पे है ना। तो अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका जैविक चीजें हो गया जैसे कि इस्तेमाल कर रहे हैं जैव उर्वरक, जैव उर्वरक के रूप में हम लोग कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम लोग को जैसे मान लीजिए कोई धान का अगर खेती कर रहे हैं है ना, तो उसमें मुख्यतः हम लोग क्या डाल रहे हैं, हम उर्वरक के रूप में डाल रहे हैं DAP हो गया है ना, यूरिया हो गया, और डाल रहे हैं सिंगल सुपर फास्फेट हो गया है ना, और पोटास हो गया। इन चार चीज़ों को मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है ना। तो उसके बदले अगर हम लोग को नाइट्रोजन की अगर भरपाई करनी है दूसरे सोर्स से है ना, क्योंकि पौधों को तो केवल क्या चाहिए, उसको पोषक तत्व चाहिए है ना। कहने का मतलब ये कि उत्पादन के लिए उसको हम लोग जब खाना के रूप में दे रहे हैं पोषक तत्व है ना, हमारे पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं मुख्यतः, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं है ना। तो जो प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में हम लोग जो देते हैं, जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है ना, हम लोग उसको चाहे दे हम लोग उर्वरक से या तो हम दे उसको जैविक से है ना, उसका मतलब तो वही है, उत्पादन पे वही फर्क पड़ेगा है ना। तो उसके विकल्प के रूप में, और आए दिन क्या है कि देखेंगे कि उर्वरक की कमी भी होती जा रही है ना, तो सरकार भी इस दिशा में चाह रहे हैं है ना, और हमारे लिए भी जरूरी हो रहा है कि हम लोग किसके तरफ आए, जैविक की तरफ आए है ना। जैविक मतलब पूरे जैविक नहीं आ सकते, तो साथ में क्या है, एक टर्म क्या है, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है ना। पूरे जैविक आ जाएंगे तब भी एक दिक्कत ये हो जाएगा हमको कि उत्पादन घट सकता है इकट्ठे है ना, तो ये भी समस्या हो जाएगा। तो हम तीनों रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे, उर्वरक हो गया है ना, फिर ऑर्गेनिक जो खाद हो गया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर जैव उर्वरक हो गया,
1: मतलब मिला के
0: करना है ना।
1: डॉक्टर साहब जैसे अभी भाई अभी कर समय है कि हमन धान लगाथन, मकई लगाथन, चाहे अन्य जो दलहनी फसल है ओला लगाथन, ओकर में हमन कैसे संतुलित रूप से समन्वित रूप से पोषक प्रबंधन कर सकथन।
0: संबंधित रूप से पोषक जैसे कि अभी देखा बीज बोए का अवस्था में है, अभी थरहा चलत है अभी है ना धान का, तो हमने क्या कर सके थे, जैव उर्वरक होते हैं जैव उर्वरक। अभी तक क्या है कि हम केवल बीज उपचार का बात करते, बीज उपचार कब करल जाते हैं, जब बीज बोए से पहले है ना, तो उसमें जो भी है रोग है ना, या तो फिर रोग का इफेक्ट का है कि रोग जो फैलते मिट्टी मिट्टी से आते बीज में और बीज से पौधे में आ जाते है ना, तो उसको अगर रोकना है तो हमको सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उपचार करते हैं है ना। तो उपचार सबसे पहले किससे कर ले, अब केमिकल उपचार है ना, केमिकल उपचार को हो गया, जैसे हो गया मैंकोजेब हो गया, कार्बेंडाजीन हो गया है ना, इससे हम लोग उपचारित कर सकते हैं है ना। इसके बाद हम लोग दूसरा उपचार किससे कर सकते हैं, जैव उर्वरक से है ना। जैव उर्वरक में आता है जैसे कि हो गया एजेटोबैक्टर हो गया है ना, ये जो स्पारिलम हो गया है ना, इनके द्वारा हम बीज का उपचार कर सकते हैं। जब बीज का उपचार हो गया ठीक है, बीज का उपचार करने के बाद इसमें हम बाद में इस्तेमाल करेंगे इसको खड़ी फसल में, जब है ना जब रोपाई लगाने का आता है उसमें भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नील हरित सवाल का इस्तेमाल कर सकते हैं है ना। तो इस तरह के तरीके से हम लोग धीरे धीरे प्रबंधन कर सकते हैं है ना। जैसे कि अभी देखिए वक्त अभी आ गया है जुलाई, एक होता है आप सुने होंगे हरी खाद है ना, हरी खाद का अगर हम लोग करेंगे, अगर शुरुआत से करें है ना, इस साल नहीं कर पाए अगले साल कर सकते हैं उसका।
2: सब एक फोन आई से मुझे लगा थे, हेलो हेलो किसान वाणी,
3: नमस्ते सर
2: राव के, नमस्कार, नाम बताइए, परिचय बताइए अपन।
3: सर मेरा नाम परुषा है और मेरा ये सवाल है कि नैनो यूरिया क्या होता है और इसे यूज कैसे करते हैं, मतलब जिससे बेनिफिट हो जाए।
0: नैनो यूरिया क्या होता है कि जैसे हम लोग जनरली आप लोग जान रहे होंगे कि सॉलिड रूप में अभी यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, नए नए यूरिया में क्या है?

0: कि बहुत सूक्ष्म रूप से उसमें पोषक तत्व तो पाया जाता है, 4% पाया जाता है नैनो यूरिया में नाइट्रोजन, है ना। तो इसको तरल रूप में दिया जाता है, तरल रूप में अगर इसको देंगे तो क्या है कि इसका जो एफिशिएंसी है ना, यानी उसका उर्वरक उपयोग दक्षता जिसको बोलते हैं, वो कितना है, 80-85% बचाया जाता है नैनो यूरिया का। और हम लोग जो सिंपल यूरिया यूज करते हैं जो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसका है उर्वरक उपयोग दक्षता 25-30%।
1: इतना फर्क
2: है ना। पर सरकार अभी लगातार इला जागरूकता भी बढ़ाते हैं कि इधर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी
0: दोनों का इस्तेमाल कर रहे
2: हैं। अगर सीमित मात्रा में अगर खाद हमन के अगर मिल पाही, अगर जैसे की आशंका है कि हो सकता है कि सीमित मात्रा मिल,
0: हाँ मिलत
2: है इला। अब हमर जो अभी कार्यक्रम है डॉक्टर साहब, अभी शहर कति भी लोग सुनते हैं तो ये सब शहर के लड़का बच्चा मन भी कभी कभी हमन के फोन करते हैं, जैसे की आवाज से लगाता है सवाल, लेकिन अच्छा रही तो एकर उपयोग हमन अभी खरीफ में कर सकते हैं समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन,
0: हाँ कर सकते हैं। कहे कि अगर जैसे 500 ml का एक आता है बाटल, अगर उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक उसका इस्तेमाल करना है कि 25-30 दिन के, है ना, दूसरा करना है कि पुष्प आने से पहले 2 बार इसका स्प्रे करना है, ठीक है। तो जब इसका स्प्रे करेंगे 2-4 ml पर लीटर के हिसाब से, ठीक, इसका अगर हम लोग स्प्रे करेंगे तो इसका फायदा यह है कि 500 ml का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 1 बोरी यूरिया का हम लोग को फायदा मिल जाएगा
2: 500 ml में।
0: हाँ 500 ml नैनो यूरिया में,
3: भाई सस्ता भी है,
2: उपयोग करे में भी बढ़िया है, मतलब आसान है
3: और सही समय पे मिल जाएगी भी, मतलब कहीं जगह कर कोई कमी नहीं है।
0: हाँ क्योंकि हम अगर देना चाहते हो उसको पोषक तत्व की बात हो रही है, उसको चाहे यूरिया सॉलिड फॉर्म में दे चाहे लिक्विड में दे, मतलब तो वही है, चाहिए तो उसको यूरिया है।
2: तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि अगर खातू नहीं मिल पा रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, अगर तो नैनो यूरिया डीएपी का उपयोग कर सकते हैं।
0: हाँ नैनो यूरिया डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। डीएपी का इस्तेमाल तो हम लोग बीज उपचार के रूप में भी कर सकते हैं, जैसे इसका है कि इसको हम लोग डायरेक्ट पर्णी छिड़काव करते हैं, किसका, नैनो यूरिया का। नैनो डीएपी का इस्तेमाल पर्णी छिड़काव में भी होता है और बीज उपचार भी कर सकते हैं।
2: कैसे कर सकते हैं?
0: बीज उपचार ऐसे कर सकते हैं 3-5 ml लेके, है ना, पर किलोग्राम के हिसाब से इसको बीज उपचार कर देंगे। बीज उपचार करने के बाद उसको छाया में सुखा देना है, छाया में सुखाने के बाद उसका हम लोग बुआई कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब अभी जो राउर बताते रहे धान के बारे में, थरहा में और उकर बाद रोपाई में, हम अल्लाह पूरा विस्तार से बताई दी, और हम मैं पूछना चाहते रहन कि उतना ही उत्पादन हमन के मिले जैसे जो राउर बताते रहन कि जैविक जो हमन खातु उपयोग कर सकत ही, तो उकर साथ मिला करके तो रासायनिक खातु तो हमन की उपयोग करना ही पड़े।
0: हाँ काहे कि वही बताए कि एकदम जैविक पे हम लोग अगर चले गए तो उसके लिए हमारे पास उतना खाद उपलब्ध है नहीं। अगर आप बोल रहे हैं जैसे गोबर की खाद हमको डालना है, गोबर की खाद डालना है तो आप सोचिए कि 5-10 टन है ना पर हेक्टेयर के हिसाब से हमको डालना पड़ेगा, तो हमारे पास इतना गोबर का खाद है कहाँ कि उतना डाल सके, है ना, तो उतना नहीं डाल सकते। तो उसको कर सकते हैं कि 25% हम लोग किससे डाल सकते हैं, गोबर से डाल सकते हैं, है ना, और अगर 25% किससे कर सकते हैं, हरी खाद से कर सकते हैं, है ना, 25% उर्वरक से कर सकते हैं, है ना,
3: रासायनिक उर्वरक से,
0: उर्वरक से, हाँ वही रासायनिक होता है, उसके बाद 25% हम लोग जैव उर्वरक से किया जा सकता है।
2: थरहा करब तैयार तो उसमें कैसे कैसे हमन के कब कब उपयोग करना पड़े?
0: थरहा अभी तैयार कर रहे हैं जैसे धान की बात हो रही है, है ना, तो सबसे पहले वही है कि हम लोगों को बीज का बीजोपचार करना है, सबसे पहला जैव उर्वरक, है ना, एक चीज तो जैव उर्वरक का इस्तेमाल है कि डायरेक्ट हम लोग बीजोपचार के रूप में कर सकते हैं। दूसरा विधि ये रहता है कि हम लोग किस में कर सकते हैं, रूट डिपिंग, जिसको होता है जड़ को डुबा के, है ना, जैसे थरहा किए लगाए रोपाई के टाइम, रोपाई के टाइम में क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग तैयार करके घोल तैयार कर लेना है, है ना, घोल तैयार करने के बाद उसमें जड़ को डुबा के रखना है, लगभग कितने टाइम डुबा के रखना है, 1/2 घंटा तक, है ना, उसका एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा विधि ये है कि डायरेक्ट हम लोग इसको मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, 2-5 kg को लगभग 40-50 kg गोबर के साथ मिक्स करके हम लोग इसको डायरेक्ट मिट्टी में पर हेक्टेयर के हिसाब से डायरेक्ट मिट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, यह एक विधि है। ठीक। इसके बाद आगे और है कि जैसे बहुत सारे जैव उर्वरक रहते हैं, कुछ जैव उर्वरक जो होता है रोपाई के बाद इस्तेमाल करते हैं,

0: जिसमें होता है कि नील हरित काई जिसको बोलते हैं, और एक होता है जोला, है ना। तो नील हरित काई को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे रोपाई हो गया, इसके बाद एकाध सप्ताह हो गया, एकाध सप्ताह होने के बाद उसको हम लोग को कल्चरल डालते हैं 10 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। एक तो ये हो गया, है ना, और दूसरा है कि एजोला का इस्तेमाल किया जाता है। एजोला का इस्तेमाल करते हैं तो 500 से 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से डालते हैं। तो ये दोनों क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, देखिए हमारे वातावरण में बहुत सारा नाइट्रोजन है, कितना परसेंट, लगभग 78-89% है, है ना। लेकिन फिर भी जो है हमारे मिट्टी में, हमारे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में अगर बोलेंगे तो नाइट्रोजन की कमी पूरी जगह है, सबसे ज़्यादा है, है ना। जबकि समझिए कि वातावरण में कितना है, 78-89%, फिर भी। तो ये जो करते हैं हम लोग, जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जैव उर्वरक क्या है, नील हरित काय बताया, जैसे एजोला बताया, जैसे एजोटोबैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्पाइरिलम इस्तेमाल करते हैं, है ना। दलहनी फसलों में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, राइजोबियम का, है ना, दाल वाली फसलें जितने होती हैं, तो उसमें भी ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करता है, यानी कि वातावरण के नाइट्रोजन को ये लाके जड़ में ये संचय कर लेता है, है ना, जिसको बाद में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। दलहनी फसलों में गांठ बनता है, है ना, गांठ बनता है, जिसके कारण ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण उसमें ज़्यादा होता है, है ना, राइजोबियम डालने से और बढ़ जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कुछ और सवाल भी करब, कुछ बातचीत भी करब, मुझे लगा था एक संदेश वाला सुन लेती।
0: हाँ हाँ।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: संदेश मल्ला सुनत रहन और अमन बात करत रहन समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। एक फोन आई से डॉक्टर साहब। हेलो हेलो किसान वाणी।
4: हाँ सर नमस्ते।
5: नमस्ते,
3: अपन परिचय बताए किसान भाई।
4: मैं बोला तुम बरिया राम शंकरपुर उदयपुर ले।
3: अच्छा, अपन सवाल बताई।
4: मोर सवाल ये है साहब कि अभी तो मान ली की सरकार कम खाद देता है तो का खाद मतलब खरीफ में मैंने धान उनमें डाली की बहुत तनिक बढ़िया न हो, कैसे ऊपर प्रबंधन ना करी बताते हैं।
5: ठीक है, जैसे कि आप कौन कौन जैसे कि आप खाद डालते हैं, अभी सबसे ज़्यादा अभी मांग जो है कमी पड़ती है तो डीएपी का पड़ रहा है ना। डीएपी के साथ यूरिया है ना, इन दोनों खाद का थोड़ा तो कमी पड़ रहा है। डीएपी में क्या होता है कि हम लोग में इसमें 18% नाइट्रोजन रहता है, 46% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, अगर फास्फोरस की कमी अगर हो रही है तो इसके बदले में हमें बताया कि जैव उर्वरक इस्तेमाल करते हैं। जैव उर्वरक में आता है कि फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है ना, तो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया जो कि मार्केट में आता है पीएसबी के नाम से, अगर उस पीएसबी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि जो सोलुबलाइज फार्म में नहीं रहता, फास्फोरस का एक प्रकृति यानी उसका एक नेचर रहता है कि वो मिट्टी में वो फिक्स फार्म में रहता है, है ना। मैं बताया था अभी कि हम लोग बात किए थे डॉक्टर साहब, तो मिट्टी में जैसे कम पीएच हो, ज़्यादा पीएच हो और भी कंडीशन में फिक्स फार्म में चले जाता है तो पौधों को अवेलेबल नहीं होता, तो उसके लिए वो अनुपलब्ध फार्म से उपलब्ध फार्म में फास्फोरस सोलुबलाइजर बैक्टीरिया करते हैं, है ना। अगर उसका इस्तेमाल करें तो आप डीएपी का इस्तेमाल 25% कम कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी एक आता है दूसरा कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बदले जो बताए हैं जैव उर्वरक जितने भी बताए हैं अभी बताए धान में, वो नाइट्रोजन की कमी उसको उससे पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक हरी खाद होता है, हरी

खाद जो बुआई से पहले, जैसे अभी एक सीजन रहता है अप्रैल में, अप्रैल में उसकी बुआई कर दिए है ना, 40 से 50 दिन हो गया, उस अवस्था में उसको ज़मीन में दबा दिया जाता है जब फसल तैयार हो जाता है। जैसे मुख्य फसल इसमें यूज किया जाता है सनई और ढेंचा, जो हरी खाद का फसल है ना। तो हरी खाद का फसल जब 40 से 50 दिन होता है उसको ज़मीन में दबा देते हैं है ना, किसी के थ्रू, कल्टीवेटर के थ्रू। फिर जब इसका जब ये सड़ जाता है तो ये उपलब्ध हो जाता है नाइट्रोजन के रूप में है ना ज़मीन में। तो ये भी एक ऑप्शन है, इससे भी उसकी कमी

0: गोबर और कचरा में कुछ नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा सूखी पत्ती चाहिए, तो गोबर और सूखी पत्ती मिला के और केचुआ, इन दोनों तीनों को मिला के हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। ये गोबर के मुकाबले लगभग 3 गुना इसमें पोषक तत्व ज़्यादा रहता है, है ना। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश के साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी पाए जाते हैं, है ना। तो इससे एक हो सकता है, तो इसके द्वारा भी हमें जा सकते हैं, है ना।
1: डॉक्टर साहब, जो हम धान की बात करें, एकर अलावा जो खरीफ में जैसे अभी मक्का लगाते हैं या खरीफ पर हमन जो सब्जी वर्गीय जो फसल है, ओमे पोषक तत्व प्रबंधन में कुछ हमन के का ध्यान रखना पड़ी अभी?
0: पोषक तत्व प्रबंधन जैसे मैं बताया कि इसमें भी हम सभी चीज़ पे जाते हैं, क्योंकि उर्वरक में भी इसमें फोकस कर नहीं सकते केवल, है ना, उर्वरक पे। तो इसमें भी जितने भी मैं जैव उर्वरक बताया इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। सब्जी हो गया, जैसे फिर दलहनी फसल बोल रहे हैं, जैसे अभी अरहर लगाएंगे, है ना, मूँगफली की खेती होगी, है ना, मूँग उड़द, है ना, तिल, मक्का का भी कर सकते हैं, तो उसमें भी हम यही प्रक्रिया अपना सकते हैं, है ना। तो स्पेशली जैसे धान के लिए जो बताया कि बीजी और एजोला अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, बाकी जितने भी हैं, जितने मेन्योर जो हैं, है ना, ऑर्गेनिक, उसका इस्तेमाल, खाद जो है उसका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है, है ना। तो इसका फायदा भी है हमको। इसके साथ साथ देखिए, ये समन्वित पोषक तत्व का हमारा जो लक्ष्य है, ये हमारा लक्ष्य केवल पोषक तत्व की पूर्ति नहीं है, इसके इसके साथ साथ हम लोग किस पे ध्यान दे रहे हैं, मृदा स्वास्थ्य को, है ना, जिसको बोलते हैं टिकाऊ खेती। हम आगे वाले जनरेशन जो है अपने बच्चे के लिए, है ना, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, तो उनके लिए भी एक हो सकता है।
1: एक फोन आई थी डॉक्टर साहब, मुझे लगा थे। हेलो, हेलो किसान वाणी, किसान भाई राउर के बहुत बहुत स्वागत कर रही थी, नाम बताइए अपन।
2: मैं धौलपुर से तुषार पांडे बोलत रहे।
1: तुषार पांडे जी, बहुत बढ़िया लगी इस राउर के फोन आई से। सवाल बताइए, हमन अभी बात कर रहे हैं खरीफ फसल में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में।
2: हाँ,
1: कोई सवाल है राउर के पास?
2: मोरे सवाल रही कि जैसे अभी पानी तो कम गिरत है, धान के नर्सरी तैयार करे बड़े का उपाय करना चाहिए, मतलब खराब मत हो नर्सरी लगाए से पानी के कमी से।
1: डॉक्टर साहब, जो हमन बात करत रहे नोही से जुड़ल सवाल है, पानी कम गिरत है और अभी थरा तैयार करना है, तो कैसे हमन तैयार करबो?
0: उसके लिए आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, इसको प्रबंधन करना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें जो उर्वरक है उसको इस्तेमाल ना किया जाए।
2: अच्छा,
0: ठीक है, सीमित मात्रा में इसको करना है, है ना। इसको और थरा के लिए आपको मॉइस्चर, नमी बना के रखना है, है ना।
2: अच्छा अच्छा,
0: इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थरा ही होता है मेन बीज, अगर ये अगर कमज़ोर हो गया तो आगे फिर उसमें फिर दिक्कत आ जाएगा। ठीक है
2: जी।
1: और कोई सवाल है राउर के पास? और कुछ पूछना है?
2: नहीं, वही जानकारी चाहते
1: हैं। सब कति पानी तो कम गिरत है, उते राउर की कति लुंड्रा धौरपुर में पानी कम है
2: जी।
1: ठीक है, तो राउर का फोन आई बहुत अच्छा लगी, समझ ला।
3: तो डॉक्टर साहब बढ़िया भाई माटी कर बारे में बता रहे हैं, माटी कर स्वास्थ्य कर बारे में, तो एक ठन सवाल मोर दिमाग में आया इसकी, भाई माटी कर जो स्वास्थ्य पत्रक का जो कार्ड बनते हैं, माटी कर कार्ड, उकर कितना भूमिका है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में?
0: वो कार्ड का बहुत ज़्यादा, वो कार्ड बनता है, वो कैसे बनता है, मिट्टी परीक्षण के बाद बनता है ना।
1: एक फोन डॉक्टर साहब और आगे से ले लेती। हेलो किसान वाणी।
4: मैं सुमेरपुर ले बोलत रहे हैं भैया।
1: सुमेरपुर कहाँ पड़े?
4: चंद्रा रघुनाथपुर के पास पहले।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ सुमेरपुर। अपन नाम बताइए।
4: हमारा नाम संतोष कुमार है भैया।
1: अच्छा, तो बताइए अपन सवाल बताइए।
4: लगाए पर कहत रहे हैं भाई, आज आषाढ़ चालू हुई से अभी लगाए सकते हैं, उनका कैसे लगाई ताकि ठीक ठाक रहे? मकई थोड़ा बहुत हर साल लगाता हूँ मैं, तो उनके बारे से पूछना रहे, इसमें जानना रहे।
0: तो
4: लगा सकती थी ना, लेट नहीं ना इसे?
0: नहीं, मक्का के लिए है उचित टाइम, अभी चलेगा 10-15 जुलाई तक लगा सकते हैं।
4: जीरा कुल भी लगाता हूँ, दो तो चीज की खेती करता हूँ मैं, जीरा धान के।
0: हाँ,
4: ये मकई रहे रही

0: चाहे दोनों तीन लगा, पहले तो मक्का लगाना है, उसके बाद जीरा फूल लेगा हूँ। जीरा फूल तो इस साल रोपा वोपा हो ही नहीं पाई,
1: हाँ अभी पानी को देख के तो ऐसे ही लग रहा है।
0: रोपा नहीं हो पाए, छीटा बूंद हूँ देख
1: हाँ
0: लेकर आते हैं उसके बाद लगाए।
1: हाँ तो पानी को तो देख के ऐसे लग रहा है कि आप वो जाएंगे खुर्रा बोनी में ही जाएंगे तो सही रहेगा।
0: छीटा सही रही ना,
1: हाँ,
0: घास मन बर
1: घास के लिए फिर आप उस पर डाल सकते हैं वीडीसाइड।
0: अच्छा ठीक है यही पूछना रह गया।
1: उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ वीडीसाइड का इस्तेमाल कर सकते, खरपतवार नाशी का है ना, खरपतवार नाशी बिस्बायरी बैग करके आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
2: जी। मक्का में कुछ भी ये पूछत रहे डॉक्टर, सब हो गई शुगर
0: मक्का तो
2: जवाब?
0: है, मक्का जगाता हूँ तो अभी जैसे थोड़ा एरिया में जगह है तो वो तो एकदम छोटा छोटा मरहा मरहा कसन निकले से पियर पियर हो जाता पता ही मन, वही लगवाता हूँ। और बाकी तो मैं डरे मारे नहीं लगा इनकी, पानी गिर ही कब गिर ही, आधा खेत में लगाना है रुपये तो वो जो पीला पीला थोड़ा पत्ता होगी से ना, मतलब पानी के चक्कर में होगी ज्यादा।
1: हाँ तो जैसे पानी की कमी होते हैं, तो पानी का जैसे कमी होगा तो वो क्या है कि वो पोषक तत्व जो होता है अवशोषण
0: हाँ
1: में
0: वही
1: थोड़ा सा
0: कहना था, तो
1: दिक्कत होगा,
0: अभी कोई
1: है
0: चीज
1: ना।
0: जो हमें डाले से वो पकड़ सकता था अपन, वही लो बताई का ट्रीटमेंट करो
1: ट्रीटमेंट अगर उसको देखना पड़ेगा, अगर वो पोषक तत्व की कमी है तो उसमें फिर नाइट्रोजन डाल सकते हैं, यूरिया। ठीक है,
0: जी।
1: एक चीज़ ये हो सकता है क्योंकि पीला पत्ता तो उसी से है।
0: पीला पीला पत्ता हो गया भैया,
1: हाँ, तो पीला जो है नीचे की पत्ती है,
0: है
1: नीचे की पत्ती के ऊपर की पत्ती,
0: नीचे का, नीचे का, नीचे का पीला है,
1: नीचे
0: ऊपर
1: का, नीचे का है
0: थोड़ा
1: मतलब वही है, नाइट्रोजन की कमी हो रहा है, यानी यूरिया डालना पड़ेगा उसमें।
0: अच्छा
2: ठीक है किसान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद कर रही, हमारे थोड़ा समय होते जाते हैं,
0: जी जी ठीक
2: बहुत
0: है
2: बहुत
0: धन्यवाद।
2: बहुत धन्यवाद। एक संदेश रह सुन लेती फिर बातचीत करो।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: डॉक्टर साहब, एकदम आखिरी समय पर हन कार्यक्रम कर एक फोन आ गई से। हेलो,
7: हाँ नमस्ते सर, मैं जय मंत्री केवट बोल रही हूँ।
6: जय मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत करत हन, जल्दी से सवाल पूछ ली।
7: हाँ, आपकी चर्चा के दौरान मैंने मूंगफली में प्रबंधन, खाद प्रबंधन के लिए जो बात चल रही थी, तो उसमें हम किस स्थिति में डालें खाद, मतलब इधर खरीफ की फसल में भी मूंगफली करते हैं और अभी में भी, तो हम अभी बोने वाले हैं, अभी बारिश नहीं हुई थी, आज से बारिश शुरू हुई है, तो क्या फूल की स्थिति में खाद डालें उसमें या फिर पहले से बोते समय, ये बता दीजिए।
8: नहीं, बोते समय डालिएगा खाद, उसमें क्या करेगा, नाइट्रोजन की मात्रा कम रखेगा और फास्फोरस ज्यादा और फिर पोटास थोड़ा कम रखेगा, इसलिए सबसे ज्यादा इसमें डालना है फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना।
7: जी जी, और इस पर निराई करना चाहिए क्योंकि इधर बहुत चारा हो जाता है, तो
8: हाँ हाँ वो तो जरूरी है।
6: ठीक है जय मंत्री जी, अब समय होते जाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आज उपस्थित रहे पर बहुत बहुत धन्यवाद करती, एक साथ किसान वाणी कार्यक्रम बस यहीं तक,
8: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: एक कार्यक्रम कर प्रायोजक रहिन
1: कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुनत रहन भोलू भैया चौपाल से भी।

अभी ग्रामीण श्रोताओं और किसान भाइयों के लिए चौपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं सोशल मीडिया पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हंसते जख्म का ये गीत, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत मदन मोहन का है और फरमाइश है फार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि श्रीमती शीतल, चकपांच एमडी पदरोड़ा से मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल, ग्राम दुर्राबंधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव साहू, नवीन कुमार और युवराज, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी गोविंद, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविक और उनके साथी, जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रीतेश और उनका पूरा परिवार, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, ऋतिका वाणी आरव, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब, अल्तमास पानो, मोइन शंकरलाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, मोहम्मद हसनैन पवार, राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार, कृष्ण कुमार, चित्रंदन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार, रविशंकर राजवाड़े, मनीष कुमार साहू, गंगेश्वरी, कविता मांझी, कुलदीप, सूची कश्यप, उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेलाबाई सिंह, विकास, ओम प्रकाश, शुभम विश्वकर्मा, अरुण विश्वकर्मा, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, पुष्पाताई नारे, सरलाही सुकनाहा नेपाल से अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी शर्मा, राहुल कुमार, वंदना कुमारी, प्रियंका कुमारी और उनके बहुत सारे साथी, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल, कुणाल मेहरा, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखिलाल वर्मा, ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलाता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद और उनके साथी, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका दिवाकर, अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल और गोपी वर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा, सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित बेबी गर्वी और हिमाक्ष, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन धरा, फरसाराम सोलंकी, श्यामलाल चौहान, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का, मुंडा टोला डोंडीलोहारा बालोद से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल कामेश्वर माहिर, आमगसी कुन्नी चौक नवापारा लखनपुर सरगुजा से मुनीशराम, शालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और परिवार के सभी सदस्य। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी को फिल्म हंसते जख्म में।

ये लगता है कि यहाँ

देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने वानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य, ग्राम पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश, ग्राम चरौदा बारनवापारा बलदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, खुशबू और ज्योति, बड़ी गेबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल और पूजा परिहार, मिठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, गेंदू भाई, वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत मक्कड़, आपके साथ हैं कमल साहनी, कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से रामस्वरूप गुप्ता, विवेक गुप्ता, एचडी गुप्ता, रघुनाथपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, ग्राम खोखरावाली श्रीगंगानगर से ही विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और सगुन बारासा, धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या, दीपक मोनू, उन्नति घनशानी, किरत राय वाधवानी, प्रदीप कुमार साहू और मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी, ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने, योगिता, सुश्री प्रीली और पार्थ, शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल और चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी मनवर, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत।

गीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, सत्यम क्लब फुलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम, हिमांशु, अनुष्का, ऐश्वर्या, प्रीतम, मनोज और मिथिलेश यादव की फरमाइश पर आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, राजेश रोशन की बनाई धुन पर लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है जूली।

कार्यक्रम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म एक नजर से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्द रचना है मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और सोशल मीडिया पर इसकी फरमाइश भेजी है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत, ग्राम फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप, नेहा, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, ग्राम कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, गोवर्धन कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बोरखेड़ा पित्रामल उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपंक और मयंक, चेतन नाहटा, आमा खोड़ा रेंगाखार, कबीरधाम से देवी सिंह नेताम, राजेंद्र सिंह दक्षप्रिया, गीत सरगम नेताम, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, कोल सिटी बरकाकरण से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजल, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश कुमार, राजेश्वरी और उत्कर्ष, चक्रभाटा कैंप से डी आर नारवानी, रवि चांदनी और खुशी नारवानी, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, मनीषा, फाजिलका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी शालनी खेड़ा, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से भेरूलाल वाकतरिता, भोला वाकतरिया, प्रवीण, रियांश और प्रतीक, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म जॉनी मेरा नाम से। गीतकार हैं दीवार और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। फरमाइश करते हैं पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा हनुमान, उत्तम जमदाड़े, मोला कॉलोनी घरौड़ा करनाल हरियाणा से विजेंद्र कुमार, कांता रानी गुंजन साहिल और वाणी जयजान, बालपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह और प्रीति, जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी, गड़िया मौजे उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष कुंदन, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता देवी, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, केसु ताशु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, ग्राम लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी रिया रेनू, दिव्यांशी आराधना और रोनिका यादव, यहीं से हैं चंद्रेश गुहर और सुनील पाठक, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ

अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच लंदन ओवल में खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल आप हमारे मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। और आइए कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म हमसाया में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत ओपी नैयर का है और इस गीत को सुनाने के लिए सोशल मीडिया पर हमारे पास फरमाइश है। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गांधीधाम गुजरात से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, राजकमल, रेडियो शोधा संघ पोस्ट आष्टी, परतूर जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद नोयान, सैयद निजामुद्दीन, आष्टी से दोतर जोड़ी दशरथ सगुते और अनुष्का सगुते, ग्राम टोरोवाल, नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय मोहबिया, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी सलोनी और पेंटर बाबू, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा और ईशांत देवांगन, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश अरोड़ा, बोड़सरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा नवाज हसन, बाबू अहद मिफ्रा, बेबी चाहत, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला, विशाल और निशा, आकोड़ से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला, विजय शुभम, पवन जरिए, के संजीव डाबे राव, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय, फवारा चौक से सला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, सोमल, कार्तिक, प्राची और सचिन, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर, चाडोगी प्रिपरिया से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती कुमारी, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू, तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम गायकवाड़, आविष्कार, अनामिका और प्रणीता गायकवाड़, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़, बीट शहर महाराष्ट्र से पोपट राव कुलथे, हनुमंत कुलथे, प्रथमेश और उनके बहुत सारे दोस्त, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

0: आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसे आज आपके लिए पेश किया पद्मनाभ शर्मा ने। यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार रेले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सास में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से

0: देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को

0: हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation.
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
6: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था

0: के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सास में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the news at 9.

किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत।

समाचारों का प्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 के

कार्यक्रम के आरंभ में आपने फिल्म साजन का गीत सुना। आवाजें थी कुमार सानू और अलका याग्निक की। इन्हीं आवाजों में आइए सुनते हैं फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई का ये गीत, जिसे लिखा है कैफी आजमी ने, संगीत है अनु मलिक का।

के अंत में आइए सुनते हैं फिल्म दिल है तुम्हारा का ये तो गाना। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। गीतकार हैं समीर और संगीत नदीम शमण का।

0: अलका याग्निक और उदित नारायण के गाए फिल्म दिल है तुम्हारा के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: मनी टॉक।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, कल सांख्यिकी दिवस के मौके पर सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कई खास रिपोर्टें जारी की और इन रिपोर्टों में भारत की जो सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की रफ्तार है, इसके बारे में हमें एक तस्वीर जानने को मिली। हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों के लिए सतत विकास के लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का एक लक्ष्य रखा है और भारत इस दिशा में कैसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो संकेतक हैं उनमें भारत कैसे अच्छी प्रगति दिखा रहा है। तो आज हम मंत्रालय की जो ये रिपोर्टें जारी हुई हैं उनका एक विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे और किस तरह से भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे मेहमान आज हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद।
1: तो सिंह साहब, सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण, इन तीन मुद्दों पर हम देखते हैं कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने इन रिपोर्टों में फोकस किया है कि उसमें तेज गति से हमें प्रगति देखने को मिली है। शुरुआत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो ये सतत विकास के लक्ष्य हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं सभी देशों के लिए और कैसे भारत इसमें आगे बढ़ रहा है।
2: देखिए, संयुक्त राष्ट्र में जब 2015 में एक सतत विकास लक्ष्य तय किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2030 तक दुनिया से गरीबी समाप्त करी जाएगी, पर्यावरण की रक्षा की जाएगी और सभी के लिए समृद्ध एवं समावेशी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें भारत ने बड़ी पहल की और इसे 2026 तक में ही उसने एक तैयार किया खाका और 277 मानकों पर आधारित 17 SDG जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया और इसमें जो बनाया गया वो सबसे पहला है गरीबी समाप्त करना, यानी सभी तरह की गरीबी को हर जगह से उन्मूलन इसका किया जाए और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत मेहनत से पूरे देश में इसको लागू किया है और इसका मतलब यह है कि अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, सभी आयु वर्ग लोगों के लिए स्वस्थ जीवन और सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, इसके अलावा समानताएं किसी भी तरह की किसी को नहीं होनी चाहिए, हर व्यक्ति को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बेसिक सुविधाएं होती है, मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यानी कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में शौच करने के लिए बाध्य न हो उसकी ये सुविधा मिलनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें होनी चाहिए, उसके बच्चे को स्कूल मिलना चाहिए, हर गरीब आदमी को जितनी भी उसकी जरूरतें होती हैं बेसिक, सबसे पहला उद्देश्य था भारत सरकार का कि उनको कैसे हम दिया जाए। दूसरा था कि उनको स्वास्थ्य कैसे उनका सही किया जाए, सभी आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण उनका निश्चित करना इसका उद्देश्य था। तीसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन सबको प्राइमरी मिल रही थी लेकिन प्राइमरी एजुकेशन से कैसे आगे बढ़ा जाए, ड्रॉप आउट ना हो, बच्चे स्कूल जाएं तो वो फिर आगे की शिक्षा ले सकें, सबसे बड़ी जरूरत थी। इस देश में लैंगिक समानता,
1: बिल्कुल
2: जेंडर इक्वलिटी, जैसे इस रिपोर्ट में भी आप अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि महिलाओं को कहा जाता था कि कुशल महिला मजदूर हमारे देश में कम उपलब्ध होती हैं वनस्पति पुरुषों के, लेकिन इस रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के जो स्किलफुलनेस है वो बढ़ी है, यानी उनकी निपुणता, प्रवीणता, काम करने की दक्षता में सुधार हुआ है और यह एक बड़ा संकेत है इस देश के लिए कि जिस वर्ग को हम हाशिए पर रखकर चलते थे महिलाओं को, उस वर्ग की भागीदारी इस देश के विकास में बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा स्वच्छता, क्लीनलीनेस, जिसके लिए प्रधानमंत्री जब से सत्ता में आए हैं 2014 से जब से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से इस देश में स्वच्छता का एक कल्चर डेवलप हुआ है जो लोगों को यह बता रहा है कि स्वच्छता से क्या क्या मिल सकता है और हमें लगता है कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचाने में यह सरकार सफल रही है।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में इन मानों को रखा जाता है और इसमें आंकड़ा भी सामने आया है जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि जो सोशल प्रोटेक्शन है यानी सामाजिक सुरक्षा का दायरा है वो 2016 में करीब 22% आबादी तक थी, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं इन रिपोर्टों में उनके मुताबिक ये कवरेज 65% से भी ज्यादा आबादी तक पहुंचा है। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे ये संभव हुआ है और इसको कैसे मापा जाता है।
2: सतत विकास लक्ष्य का जो हमारे 17 तय किए गए हैं ये 100% कवरेज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को यह सुविधा मिलनी चाहिए खास तौर से जिन्हें जरूरत है, और यह 22% से अगर 65% हुआ है तो इसका मतलब यह है कि जिन्हें स्वास्थ्य की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती थी, जिन एक सीमित दायरे में ही स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त सरकारी सबको मिला करती थी, जिनका दायरा बढ़ा है, जैसे आयुष्मान को अगर हम ले लें, आयुष्मान की सुविधा जो भी उसके योग्य होगा, दक्ष होगा, उसके लिए होगा, वो सबको उपलब्ध होने लगी है।

सीधा सा मतलब है कि सबके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, सबके बच्चे को प्री एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक की सुविधा देने की सरकार कोशिश कर रही है कि हर तरह की सुविधाएं उन्हें मिले। इस देश में IIM, IITs और इस तरह के विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को इसमें कैसे समाहित किया जाएगा। सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि

0: समाहित किया जाएगा। सरकार ने इस तरह की सुविधाएं बढ़ाई है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की संख्या बढ़ी है, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी है, मेडिकल कॉलेजों में सीट्स की संख्या बढ़ी है। तो इससे क्या है कि ये दायरा बढ़ने का मूल वजह ये है। दूसरा है कि खाद्यान्न की सुविधा। अब सोचिए इस देश में 2/3 आबादी को यानी करीब करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज सरकार की ओर से मिलता है। इसका यह मतलब है कि जिन्हें जरूरत होगी मुफ्त अनाज की उन्हें मुफ्त भी दिया जा रहा है, यानी सरकार किसी को भी भुखमरी का शिकार नहीं होने देगी। एक हमारे 17 जो गोल्स हैं इसमें एक गोल भुखमरी का भी है कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा इस देश में। जो हंगर इंडेक्स में हम कभी बहुत पीछे हुआ करते थे उसी को देखते हुआ ये बात लाई गई कि भला हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है, खाद्यान्न सुरक्षा हमारी इतनी मजबूत है, सब कुछ सुविधाएं हैं, हर व्यक्ति को उपलब्ध है। तो इससे क्या हुआ कि दायरा बढ़ गया।
1: बिल्कुल, आपने जैसा कि विस्तार से बताया कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य की स्थिति में और मूलभूत सुविधाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उससे निश्चित तौर पर जो विकास के मानक हैं या संकेतक हैं वो ऊपर आए हैं। इसी तरह से आपने लैंगिक समानता की बात की तो अपने श्रोताओं के साथ मैं ये आंकड़ा जरूर यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि 2015-17 के बीच प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 896 थी, जिसे हम सेक्स रेशियो एट बर्थ कहते हैं, यानी जन्म के वक्त लैंगिक जो अनुपात होता है। जन्म के वक्त लैंगिक अनुपात बढ़कर 2022-24 में ये हो गया 918 और आगे आने वाले समय में इसके और तेज गति से बढ़ने की संभावना है। इसी तरह से जो तकनीकी क्षेत्र में कौशल की हमने चर्चा की उसमें महिलाओं की भागीदारी 2022-23 में जो 48% थी वो 2025 में बढ़कर 51% हुई। एक मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोजगार पर। हमने इन रिपोर्ट्स में ये देखा कि जो पहले बेरोजगारी दर 6% थी वो घटकर अब 3.1% के आसपास आ गई है। तो बेरोजगारी दर के घटने के किन कारणों को आप देखते हैं और कैसे ये संभव हो रहा है?
0: देखिए, बेरोजगारी का घटना इस देश में सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंच रही हैं। सरकार जो सोच रही है वो लोगों तक पहुंचाने में सफल है। सरकार की पहली प्राथमिकता थी कि लोगों को कैसे रोजी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। रोजगार के मायने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, पहले तो इस धारणा से बाहर आना होगा लोगों को। और इस देश में सरकारी और गैर सरकारी के अलावा रोजी रोजगार छोटे उद्यमों को भी सरकार ने इस श्रेणी में रखा। छोटे मोटे रोजगार करने वाले, मान लीजिए किसी के यहाँ 5, 7, 6, 5 मतलब 10 से ज्यादा नहीं, इससे भी कम लोग काम करने वाले थे, तो पहले इनका नाम दर्ज नहीं होता था UPF में। सरकार ने कहा कि आखिर कैसे इसको आंकड़ा कैसे जुटाया जाए, किस मानक पर माना जाए कि ये लोग नौकरी इनको मिल गया, इम्प्लॉयमेंट मिल गया। इम्प्लॉयमेंट मिलने का जो मानक माना गया कि जिनका PF कटता होगा यानी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, भविष्य निधि में जिनकी कटौती होती होगी उन्हें मान लिया जाएगा कि उन्हें नौकरी दे दी गई। अब होता यह था कि सरकारी नौकरी या गैर सरकारी नौकरी देने में प्रॉब्लम एक आती थी, PF कटवाने के चक्कर में वो उद्यमी डरता था कि किसी नए आदमी को नौकरी दे दें हम और उसका PF कटने लगेगा तो सरकारी ढेर सारे हमारे पर नियम कानून लाद दिए जाएंगे और हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, प्लस जितना PF कटता है उतना और हमें तनख्वाह वेतन देना पड़ेगा। सरकार ने एक नई योजना लागू की कि नहीं, जो भी आपके पास जितने दिन भी और जितने लोग भी काम करते हैं, कम से कम हो ज्यादा से ज्यादा हो, तनख्वाह कितनी देते हैं यह आप तय करेंगे, न्यूनतम तनख्वाह से ज्यादा होनी चाहिए या न्यूनतम तनख्वाह तो मिलनी ही चाहिए, उसमें से जितनी आप PF कटेगा उतना सरकार आपको एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट करेगी आपके अकाउंट में, यानी उस उद्यमी के, यानी ताकि आपको अतिरिक्त बोझ न पड़े। इससे क्या हुआ कि हर उद्यमी इस बात के लिए खुश हो गया और अपने यहाँ जो भी लोगों को नौकरी पे रखता उनका PF कटने लगा। तो ऐसे में संख्या रोजगार की बढ़ी और वो जो डेटा दिख रहा है वो क्लियर कट बता रहा है कि रोजगार बढ़ा है।
1: बिल्कुल,
0: रोजगार बढ़ने की वजह और भी है कि आप देखें कि भाई PF तो नहीं कटता। आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ जो ब्लू इकोनॉमी है, इस गोल में एक चीज दिया गया है ब्लू इकोनॉमी को लेके कि जल के नीचे की कैसे संरक्षित किया जाएगा, उसमें इन लोगों ने क्या किया कि भाई ब्लू इकोनॉमी हमारे देश में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमें उसमें रोजी रोजगार इस गति से बढ़ा है कि मछुआरों की जिंदगी में सुधार आया है, लोगों के जेब में पैसे जाने लगे हैं।
1: बिल्कुल,
0: और खेतिहर लोगों के खासों से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है।
1: बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया। और एक और रोचक तथ्य यहाँ आपके सामने में रखना चाहूंगा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2014-15 में प्रति व्यक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और आदि ऊर्जाओं को शामिल करते हैं, उसमें खपत जो थी वो 64 वाट थी प्रति व्यक्ति, वो बढ़कर अब 193 वाट पहुंच गई है। यानी अब नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल हर व्यक्ति जो 2014-15 में जिस गति से करता था, उसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। आप कैसे देखते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर हम रुख कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए और विकास के लिए बहुत अहम है?

0: देखिए, भारत सरकार ने एक योजना शुरू की है ना, नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो वो ऊर्जा जो तेल यानी पेट्रोलियम, कोयला या ताप विद्युत गृह से नहीं आती थी, वो इन्होंने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या हाइडल यानी पानी से, जिनमें इस तरह की ऊर्जा की खपत तेजी से इसलिए बढ़ी है कि अब उसकी बड़ी वजह है क्योंकि इसका जनरेशन शुरू हुआ पहले। भाई पहले ऊर्जा होगी तो खपत होगी ना। हमारे यहाँ सप्लाई पहले बढ़ाई गई। सप्लाई बढ़ाने का मतलब कि सरकार की योजना यह है कि हर घर की छत पर बिजली पैदा होनी चाहिए, हर किसान के खेत में बिजली पैदा होनी चाहिए, यानी सौर ऊर्जा पैदा होनी चाहिए, ऊर्जा पैदा होनी चाहिए। जितने भी पंपिंग सेट लगेंगे, जितने भी ट्यूबवेल लगेंगे किसानों के खेतों में, हर ट्यूबवेल के ऊपर वो योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना के तहत यह है कि किसान के खेत में जो उसका पंप चलेगा वो सौर ऊर्जा से चलेगा या पवन चक्की से चलेगा। तो इसका मतलब है कि देश में लाखों की संख्या में कुसुम योजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत किसानों के खेत में अपने ही खेत से पैदा हुई ऊर्जा, यानी जो ऊपर की धूप है, धूप से पैदा हुई ऊर्जा से खेत की सिंचाई हो रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, बाकी उसके काम हो रहे हैं। इसी तरह से हर घर में जो खपत होती है ऊर्जा की, अपनी छत पर आदमी लगा लेता है पैनल, सौर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल, और सोलर पैनल से बिजली आ रही है। बिजली से अपनी जरूरत के मुताबिक जितनी बिजली खर्चा होती है, उसके अलावा जो फालतू यानी सरप्लस जो बिजली पैदा होती है वो चली जाती है सरकार के नेटवर्क में, यानी बिजली कंपनी की ओर चली जाती है, यानी वो क्रेडिट हो जाती है उसके अकाउंट में। जब उसकी जरूरत होती है तब उसका वो खर्च कर सकता है, यानी बिजली की खपत भी करता है और उस बिजली को लोगों को बेचता भी है। ऐसे में खपत बढ़ती आज स्थिति यह हो जाएगी एक दिन आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे हर छत पर ऊर्जा पैदा हो रही है, सौर ऊर्जा पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हमारे पास सौर ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो जाएगी दैन की, जो हमारे अभी ताप विद्युत गृह और हाइडल से पैदा।
1: बिल्कुल। तो कई और संकेतक हैं, जैसे पर्यावरण के मामले में भी कई सकारात्मक नतीजे आए हैं, और एक खास विषय जिस पर मैं आपसे अगला प्रश्न करना चाहूंगा कि देश में डिजिटल कनेक्टिविटी किस तेजी से बढ़ी है, इसका उदाहरण हमें इससे मिलता है कि करीब 32 करोड़ लोगों के पास 2015 में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन था, जो बढ़कर अब पहुंच चुका है 98 करोड़।
0: इसके सीधा सीधा मतलब है, आप समझिए, पूरे दुनिया में जिस गति से डिजिटल ताकत बढ़ी है, लोगों में ताकत आई है, इस देश की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं आधारभूत अगर मजबूती आई है तो वो आई है डिजिटल क्रांति से। इस देश में प्रधानमंत्री की ये योजना जो डिजिटल क्रांति आई है, चाहे वो जीवन के किसी भी हिस्से में आप देख लें, भाई आप डीबीटी कैसे होता है, डीबीटी बिना फोन के तो हो नहीं सकता, फोन में तब होगा जब इंटरनेट कनेक्शन होगा, इंटरनेट कनेक्शन कहां से आ रहा है, सरकार ने इतना सस्ता, दुनिया में इतना सस्ती डिजिटल सुविधा और कहीं नहीं है,
1: और पूरा इकोसिस्टम बना है,
0: पूरा इकोसिस्टम बन गया, हमारे जीवन का हर हिस्सा इसी से प्रभावित हो रहा है। हम बैंक का संचालन यहीं से कर रहे हैं, हम अपने घर के बैठे हुए यहीं पर सब कुछ देख रहे हैं। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चीज होती है इस देश में। आप समझिए, हमारे एक जमाना था रूरल इंडिया, सबसे गरीबी का मानक क्या था मालूम है, कनेक्टिविटी का अभाव आदमी को गरीब बना देता था। कनेक्टिविटी के चलते आज छोटा सा छोटा उद्यम करने वाला व्यक्ति भी ज्यादा कमा रहा है, सिर्फ कनेक्टिविटी अगर उसकी आज कट कर दी जाए तो हमें लगता है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा कट जाएगा। सरकार ने यह इतनी बड़ी ताकत लोगों के हाथ में पहुंचा दी है, डिजिटल ताकत से हमारे देश के गरीबों का सबसे बड़ा उद्धार हुआ।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सिंह साहब, कार्यक्रम में जुड़े और विस्तार से आपने इन पूरी रिपोर्टों पर अपना विश्लेषण रखा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मंत्र

कार्यक्रम मनी टॉक और मंथन हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं आपके ईमेल फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूं पद्मनाभ शर्मा।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म महान से। गीत लिखा है अनजान ने, संगीत आर डी बर्मन का है और इसे सुनवाने के लिए मेल किया है नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, जालंधर सिटी पंजाब से सोनू रवि राज गुलशन और लक्की, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर, मुकाम फुलसर कटघोरा चिरमेरी रोड कोरबा छत्तीसगढ़ से नयन दास दीवान, शीला दीवान, ओम प्रकाश रूपमणी, प्रीति दीवान, सिद्धांत दीवान, शौर्या दीवान, कुमारी सानवी दीवान, दुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद कुमार साहू, देव कुमार, नवीन कुमार और युवराज साहू, दिल्ली शहर से आसमा परवीन अंसारी, आमना परवीन अंसारी, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या हेमलता और डिंपल देवांगन, इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े, दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, डोंडी छत्तीसगढ़ से आशा जाधव, शंकर देव, सुरेश जाटव और राधिका, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनिता सैनी और गौरव सैनी। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म महान का ये गीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने अमिताभ बच्चन को फिल्म महान से सुना। आइए अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म भोला भाला से। गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का है, और ईमेल पर इसे सुनना चाहते हैं सुपरस्टार रेडियो शोधा संघ सरस्ताल सोनकरा सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़ी, सुमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार राम, खिलावन सिंह पैकरा, राष्ट्रीय दिव्यांग सहयोग संगठन छत्तीसगढ़ से नरेश कुमार, संदीप कुमार पांडे, कृष्ण कुमार, चितरंजन यादव, सुनील कुमार, तेज कुमार, रविशंकर राजवाड़ी, मनीष कुमार साहू, गंगेश्वरी भास्कर, कविता मांझी, सेवता कुलदीप, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस टी अंसारी और फातमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, मुंबई फिल्म सिटी से मोहम्मद सलीम और निगत परवीन, दिल्ली से शकीला अंसारी और निशा परवीन, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, सालिया खातून, गुड़िया खातून, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम बखार, माहिरा अजीम और निशा अजीम, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अल्तमस बानो, मोइन छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, साफिया अरफान और मोहम्मद हसनैन पवार।

चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर दीबा। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा और राशि। उमरखेड़ से गिरधारी लाल और सरिता जाटव। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमा राज और दिव्या भारती। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर और कुशल शाह। नई दिल्ली मोतीनगर से मानसी गौरव, अनिल और कविता अरोरा। अडार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश। अनारकरी बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या, भाई सुच्चा सिंह। बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष। बड़वा खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण शिमाली। डोंडी लोहारा बालोद से प्रभा जाटोलिया। उमरखेड़ से वैभव जाटव और सविता जाटव।

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड़, ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीमुन्ना, दानिश आशिफ शेख, विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और आदेश कुमार काले, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका और सुशांत नायक की फरमाइश पर आइए अब सुनते हैं फिल्म काला पत्थर का यह दो गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत लिखा है साहिल ध्यानवी ने और संगीत है राजेश रोशन का।

श्रोताओं, आपके ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का ये फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, जिसे लिखा है साहिल ध्यानवी ने, संगीत खयाम का है, आवाजें हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की, फिल्म का नाम है त्रिशूल। इस गीत को सुनाने के लिए हमें मेल किया है जेल रोड झांसी से महेंद्र कुमार जाटव, संदीप नरेन डोम और कशिश डोमिन, उमरखेड़ से वैशाली जाटव और शैलेश जाटव, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंदी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी अरजान, अबान अब्बासी और परिवार के सभी सदस्य, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला विशाल, सोपान ताड़े और नारायण इंगले, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी, रायगढ़ से नरेंद्र तिवारी यामिनी और बीबी जोई, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक, स्वाति गमरिया, जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, दाढ़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे, लगान पडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी साहिल भारती, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, डुमराव बिहार से अस्मा परवीन, दुखरा रानी सदफ, आरजू अली, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और निखिल कांगड़ा। आप सबकी फरमाइश पर यसुदास को फिल्म दादा में सुनिए। गीत लिखा है कुलवंत जानी ने और संगीत है उषा खन्ना का।

यशुदास के गाये फिल्म दादा के इस गीत के साथ ही ईमेल की गूंज कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भवन। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म हीर रांझा से

गीत लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत मदन मोहन का है। इस गीत को सुनवाने के लिए हमें पत्र लिखा है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश, ग्राम बेलर गांव से हवा से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु और अंकित, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, श्री श्रृंगेरी ऋषि महानदी सिंहावा पर्वत अंचल ग्राम बेलर गांव से आप हैं मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित, बठेना से बालकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटौदा सारागांव से सुजान वर्मा, सौद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। तो आइए सुनते हैं फिल्म हीर रांझा के गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को आपने फिल्म हीर राजा में सुना। चांदनी चौक गड़ई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विक्की, नानू और रविंद्र सेन, खुशी, रौनक सेन, ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे, रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जी एस नायक और शोभा नायक, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान पोत्रा, मुस्तबा खान, रऊ भाई और शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, दरसिंहा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म शंकर हुसैन से। गीत लिखा है कैफ भोपाली ने और संगीत है खयाम का।

पाकिजा रेडियो श्रोतसंग वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, ग्राम परसा टोला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तोषारणी और खुमेंद्र मसिया, अस्तुपुरा मऊ उत्तर प्रदेश से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, ग्राम बंगला मठिया बालोद से अशोक कुमार अंगारी, अंजनी त्रम्बिका, लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रोल, नारायणी सिंह रोल, नोमेश, नेहा और वान्या, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, पीपर पारा पालचुआ मुगली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता नितिन और वंशिका दिवाकर, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हिमलता और टिम्पल, डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबीय, तन्मय, बेबी अनिष्का और राधिका, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, फरदीन, सुहान अरजान और अयान अब्बासी, जेल रोड रायगढ़ से भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म उमराव जान में। गीतकार हैं शहरयार और संगीत है खय्याम का।

महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला, गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेक और मीका विरक, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव, शाइना और निवान, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, राही श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश गवांडकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन गवांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवांडकर, सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन, खुशी और

सरिता, प्रिंस एकांश कवांडकर, मदलापुर मुंबई से सिद्धांत प्रणीता, अर्जुन कवांडकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवांडकर, सुमित गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, चांदनी चौक गणेश पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, खुशी और रौनक सेन, देवीकुंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार निवानी, संगीता निवानी, आकाश, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा, सीता सागर, आयुषी हनी और परिवार के सभी सदस्य, कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू, वंदना, आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी को फिल्म सावन की घटा में सुनिए। गीत लिखा है SH बिहारी ने और संगीत है OP नैयर का।

द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश, तारनी सूरज सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, दरसिवा से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता अर्चना अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म आम्रपाली में। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन का है। फरमाइश करते हैं वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे ललिता नारायण खर्चे गणेश कार्तिक संजना परी मालती स्वाति प्रयाग चौधरी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा बाटापारा दतरंगी से

0: लता मंगेशकर के गाये फिल्म आम्रपाली के इस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजेश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमरीका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही,

0: बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातियों भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
0: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साड़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन दीव और राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से हो रहा है। दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। देर रात नॉकआउट चरण में 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में पराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। मोरक्को और ब्राजील ने भी अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today had a telephonic conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. Prime Minister Narendra Modi today interacted with the various secretaries to several ministries at Seva Teerth in New Delhi. The discussion focused on two key themes. The first was deregulation and other reforms for ease of doing business and ease of living, while the second was promoting Atmanirbharta. During the meeting, the Prime Minister stressed the importance of adopting a whole-of-government approach and breaking departmental silos, highlighting

0: And that's the end of the news bulletin.
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि की 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त

होती है। अपनी कल की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में सुबह 5:51 पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।